सुप्रभात, हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की वैशाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है।

0: दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
2: ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। प्रत्येक को कुछ न कुछ करने के लिए ही परवरदिगार ने बनाया है। उन्हीं में मैं भी हूं। उसकी मदद से मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति ही तो है। कुछ विलक्षण गुरुओं और साथियों के माध्यम से ईश्वर ने मुझ पर यह कृपा की और जब मैं इन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करता हूं तो मैं उसकी महिमा का ही गुणगान कर रहा होता हूं। ये सब रॉकेट और मिसाइलें उसी के काम हैं जो कलाम नाम के एक छोटे से व्यक्ति के माध्यम से खुदा ने कराए हैं। इसलिए भारत के कई कोटि जनों को कभी भी छोटा या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। हम सब अपने भीतर दैवीय शक्ति लेकर जन्मे हैं। हम सब के भीतर ईश्वर का तेज छिपा है। हमारी कोशिश इस तेज पुंज को पंख देने की रहनी चाहिए जिससे ये चारों ओर अच्छाइयां एवं प्रकाश फैला सके। श्वार्टर्स हाई स्कूल के मेरे एक शिक्षक आया दुरै सोलोमन उन उत्सुक छात्रों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक थे जिनके समक्ष उस समय संभावनाओं और विकल्पों की अनिश्चितता थी। आया दुरै सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें तीन प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए, इच्छा, आस्था और उम्मीदें। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफी आकर्षित था। मैं सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ान भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसे ही उड़ाने भरूंगा। और वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। जीवन में खुशी, संतुष्टि और सफलता हमारे सही चुनाव पर निर्भर करती है। अपनी प्रगति को परखना बड़ा मुश्किल होता है। जीवन के इम्तिहान में पर्चा भी खुद बनाना होता है और उत्तर भी खुद ही लिखने होते हैं, यहां तक कि उन्हें जांचना भी खुद ही को होता है। जब आप स्वयं अपनी इच्छा एवं जिम्मेदारी से कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तब आप एक इंसान बन जाते हैं। तीन बड़े वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष, रक्षा शोध एवं परमाणु ऊर्जा में मुझे काम करने का महान अवसर मिला है। इन तीनों प्रतिष्ठानों में एक जो खास बात है वो ये कि अपने मिशनों में काम के दौरान इन वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को असफलता का डर कभी भी नहीं लगा। असफलता के साथ उनके भीतर सफलता के बीज भी रहे हैं। इसी से कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी सामने आई है। मैं पूरे उत्साह से उम्मीद और प्रार्थना करता हूं अंततोगत्वा हमारा राष्ट्र एक मजबूत, खुशहाल और विकसित राष्ट्र जरूर बनेगा।
1: अभी आप अब्दुल कलाम के विचार ईश्वर की सृष्टि में परचिंतन सुन रहे थे। वाचन स्वर प्रेम कुमार सडाना के थे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 107.5 MHz पर। लीजिए अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनिए। वंदना कार्यक्रम में सर्वप्रथम मातृभूमि को करते हैं नमन इस देशभक्ति रचना के साथ।

भक्ति संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की ये अगली भक्ति रचना।

ईश्वर कहते हैं, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं तेरा विश्वास हूँ। भक्ति संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से।

आध्यात्म एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन में प्रेम, शांति, खुशी और विवेक की शक्ति प्रदान करता है। ये जीवन को जीने का एक व्यावहारिक तरीका है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली और अंतिम भक्तिमय प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का 13वां केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

संत असंत लक्षण की व्याख्या करते हुए श्री राम भरत से कहते हैं, संतों के मन में कोई कामना नहीं होती, उनका हृदय शांति, वैराग्य, विनय और सरलता का आगार होता है। उनमें सबके लिए प्रीतिभाव और धर्म के लिए प्रेरक शक्ति होती है। वे कभी इंद्रियों के निग्रह, नियम तथा नीति के मार्ग से विचलित नहीं होते। संतों के विपरीत असंतों के हृदय में सदा संताप का निवास होता है। उन्हें दूसरों की सुख समृद्धि से ईर्ष्या होती है, पर निंदा में उन्हें अपार सुख मिलता है। काम, क्रोध, लोभ तथा मोह उनके विशेष लक्षण होते हैं। उनका तन और मन निर्दयता, कपट, कुटिलता और पाप के घर होते हैं। जो उनकी भलाई करता है वे उसे भी क्षति पहुंचाते हैं। अतः भूलकर भी उनकी संगति में नहीं पड़ना चाहिए। झूठ ही उनका लेना देना, भोजन, ओढ़ना और बिछौना होता है। माता पिता, गुरुजन तथा पूजनीय व्यक्तियों के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं होता। हे भाई, इसी कारण मैं असंतों के लिए काल रूप हूं और उनके कार्यकलाप का उचित फलाफल देता हूं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 10 बजे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका।

सवेरे 9:10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले श्री राममूर्ति श्रीधर से बातचीत। रात्रि 8 बजे श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला में।

शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:45 पर पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत प्रसारित किया जाएगा। शाम 7 किसान साथी कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत सुनेंगे हेलो लोक मंजरी।

सवेरे 7:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों के मोती। सवेरे 7:30 पर शैल संगीत के अंतर्गत सुनिएगा किर्तू के गाए जौनसारी लोकगीत।

नमस्कार, देहरादून कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा सवेरे 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रसारित किया जाएगा सवेरे 10:02 पर। सवेरे 10:35 पर लोक संगीत के अंतर्गत सुनिएगा विनोद कुमार से रागणी।

दोपहर 12:30 पर महिला जगत कार्यक्रम के अंतर्गत बहने सुनेंगी समाज सेवा में महिला सशक्तिकरण, इस विषय पर तस्लीमा कोसर से सुनीता भट्ट की बातचीत। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। सैनिक साथी सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, समय रहेगा दोपहर 2:30।

गाने नए तराने आप सुनेंगे दोपहर 3:25 पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत शाम 4:02 पर पंडित डी के दातार से सुनिएगा। वायलिन वादन।

0: दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल RN रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर

0: restoring normal shipping through the Strait of Hormuz. Israel and Lebanon will resume negotiations with 2 days of intensive talks facilitated by the U.S. on May 14th and May 15th. U.S. State Department said delegations from both countries will meet in order to form a comprehensive peace and security agreement that substantively addresses the core concerns of both the countries. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 7:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतों के मोती। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है प्यार किया है प्यार करेंगे से। गीत के बोल लिखे हैं एसएच बिहारी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाजें हैं शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की।

गीतों के मोती कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, सोनू निगम के स्वर में। फिल्म का नाम है क्या यही प्यार है, संगीत साजिद वाजिद का है और गीत लिखा है जलीस शेरवानी ने।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों के मोती। ये आकाशवाणी का 13 केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और कुंभ मेला 2027 से जुड़े कार्यों के लिए 1,096 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। भारत सरकार द्वारा जारी PGI रैंकिंग 2024-25 में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए देश भर में 15वां स्थान हासिल किया। टिहरी जिले के जाखड़ीधार विकास खंड स्थित पाली गांव को अखरोट ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा और मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर उन्हें तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और कुंभ मेला 2027 से जुड़े कार्यों के लिए 1,096 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में पुल और पार्किंग निर्माण, शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि जारी करना, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के वेतन भुगतान के कार्य भी शामिल हैं। इसके अलावा हरिद्वार में सड़क नवीनीकरण, जंक्शन सुधार और करण के साथ ही रोड स्वीपिंग मशीनों की आपूर्ति से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। भारत सरकार द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI रैंकिंग 2024-25 में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए देशभर में 15वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष राज्य 24वें स्थान पर था। राज्य को आकांक्षी 1 श्रेणी से आगे बढ़कर प्रचेष्टा 3 श्रेणी में स्थान मिला है। एक रिपोर्ट।
3: विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसे राज्य सरकार की नीतियों, शिक्षकों की मेहनत और विभागीय निगरानी का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किए जा रहे सुधार अब परिणाम देने लगे हैं। राज्य ने विभिन्न सूचकांकों में कुल 584.5 अंक प्राप्त किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। समानता एवं समावेशन, शासन, पहुँच, आधारभूत संरचना, शिक्षक प्रशिक्षण और लर्निंग आउटकम्स जैसे क्षेत्रों में राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं और डिजिटल शिक्षा को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में राज्य की रैंकिंग में और सुधार हो सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से हिना।
2: सचिव संस्कृत शिक्षा, जनगणना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक कुमार ने चमोली कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं, CM हेल्पलाइन, जनगणना, जल जीवन मिशन, स्वरोजगार, सड़क, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। सचिव ने अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के साथ संस्कृत भाषा में भी नाम पट्टिकाएं लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनगणना कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय से 1 सप्ताह पहले कार्य पूरा करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में होम स्टे योजना को प्रभावी बनाने, स्वरोजगार योजनाओं में तेजी लाने और जन समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया गया। सचिव ने जल जीवन मिशन, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंच सकें। अल्मोड़ा जिले के मोलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में 5,91,00,000 रुपए से अधिक के प्रस्ताव को तकनीकी समीक्षा के बाद आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ आर राजेश कुमार ने की। बैठक में बताया गया कि पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परियोजना में विशेष निर्माण तकनीकों की आवश्यकता होगी। अधिकारियों ने जानकारी दी कि क्षेत्र में बढ़ते वाहनों के कारण पार्किंग की समस्या लगातार गंभीर हो रही है। बैठक में परियोजना स्थल के ड्रोन सर्वे और परीक्षण की जानकारी भी दी गई, जिसमें चयनित स्थान को पार्किंग निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया। डॉ आर राजेश कुमार ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े मामलों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि लंबित पत्रावलियां एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएं, ताकि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्टेडियम में उच्चीकृत क्रिकेट मैदान का लोकार्पण कर इसे जनपद वासियों को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद करते हुए उनके साथ क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेल गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाते हुए नशा मुक्त अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल सुविधाओं को मजबूत करने और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
2: टिहरी जिले के जाकड़ीधार विकासखंड स्थित पाली गांव को अखरोट ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने ग्रामीणों द्वारा बंजर खेतों में लगाए गए अखरोट के पौधों और विकसित किए गए बगीचों को गांववासियों को समर्पित करते हुए ये घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास लोगों को बंजर हो रही भूमि को फिर से बागवानी और कृषि के उपयोग में लाने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं प्रभारी जिलाधिकारी कृषि विज्ञान डॉ आलोक ने बताया कि गांव को अखरोट ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए किसानों को अखरोट की प्रजातियों और उर्वरक प्रबंधन की जानकारी दी गई है।
4: कि कौन सी प्रजाति लगानी है, किस तरह से उसका उर्वरक प्रबंधन करना है, उसके संबंधित जानकारी दी गई थी वैज्ञानिक जानकारी। साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सघन उर्वरक इसके संबंध में जागरूकता अभियान में उसमें हमने ये जानकारी दी है कि किसानों को उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारी जमीन की उर्वरता क्षमता भी बनी रहे और साथ में हमारी जो खेती की लागत है उसमें कमी आए और हमारा उत्पादन और साथ साथ में आर्थिकी बढ़े।
2: मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में राज्य प्रगति के तहत विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर उन्हें तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में नैनीताल और नरेंद्रनगर की सीवरेज तथा एसटीपी परियोजनाओं, हल्द्वानी काठगोदाम जल आपूर्ति योजना और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों का शीघ्र समाधान कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा की और कहा कि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विभाग बैंक समन्वय मजबूत करे। उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं का हर 5 साल में मूल्यांकन कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में मिशन एप्पल योजना की समीक्षा के दौरान क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने, किसानों को बेहतर सहायता उपलब्ध कराने और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया। चमोली जिले के गौड़ा गांव के भनाली तोक में आकाशीय बिजली गिरने से मारी गई बकरियों के पशुपालकों को जिला प्रशासन ने राहत राशि वितरित की है। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तथा जिला उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने प्रभावित पशुपालकों को सहायता राशि के चेक प्रदान किए। गौरतलब है कि 4 मई को आकाशीय बिजली गिरने से 30 पशुपालकों की 413 बकरियों की मौत हो गई थी। घटना के बाद जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देश पर वन विभाग और तहसील प्रशासन ने जांच कर रिपोर्ट तैयार की थी। अब एक नजर समाचार पत्र की सुर्खियों पर। हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की प्रक्रिया पर अधिकतर समाचार

0: पत्रों की नजर है। अमर उजाला लिखता है, सुवेंद्र अधिकारी बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे, ताजपोशी आज। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शुभेंद्र संभालेंगे बंगाल में सत्ता। प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरी पर अमर उजाला ने लिखा है, योजनाओं के लिए 1,096 करोड़ की वित्तीय मंजूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, शहरी निकायों, पंचायतों और कुंभ के लिए सीएम ने दिए 1,096 करोड़। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और कुंभ मेला 2027 से जुड़े कार्यों के लिए 1,096 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। भारत सरकार द्वारा जारी पीजीआई रैंकिंग 2024-25 में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए देश भर में 15वां स्थान हासिल किया। टिहरी जिले के जाखणीधार विकासखंड स्थित पाली गांव को अखरोट ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर उन्हें तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107.5 MHz पर। सवेरे के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शैल संगीत के अंतर्गत किर्तू के गाए चौनसारी लोकगीत।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: शैल संगीत के अंतर्गत इस समय आप सुन रहे हैं कीर्तु के गाए चुनसारी लोकगीत।

शैल संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय आप सुन रहे हैं कीर्तु के गाए जौनसारी लोकगीत। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में कार्यक्रम का ये अगला जौनसारी लोकगीत।

अभी आप किर्तु के गाए चौनसारी लोकगीत शैल संगीत के अंतर्गत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के 13 केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 8 बजने वाले हैं।

0: ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीपन दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
3: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय

0: ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: Exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

चलो हंसने की कोई वजह हम ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, चलो जमीन पे कहीं हम सदा ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं। और अंधेरी रात की सुबह ढूंढते ढूंढते हम आ गए हैं आपके लिए कार्यक्रम नमस्कार देहरादून लेकर। नमस्कार देहरादून के सभी श्रोताओं को संगीता जम्वाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम बहुत कुछ अचानक भूल जाते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता है कि मोबाइल ऑफिस में छूट गया, दूध रखा था, उबाल आने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी और आप भूल गए कि दूध आपने गैस पर चढ़ा रखा था और वो गिर गया। कितनी ही बार कितनी ही चीज़ें श्रोताओं ऐसी होती हैं जो पहले नहीं होती थी। जैसे कि आपको याद होगा फ़ोन नंबर्स हमें मुँह ज़ुबानी याद रहते थे, और अब मुझे लगता है अपने नंबर को भी अगर आपने नया नंबर बदला है तो उसको भी किसी को बताने के लिए एक ना एक बार अपने मोबाइल पर फिर से अपने ही नंबर को कन्फर्म करना पड़ता है ना। जी हाँ श्रोताओ, इंटरनेट मोबाइल टेक्नोलॉजी की जो ये स्पीडी एडवांसमेंट जो हुआ है उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है, लेकिन उससे हमें हल्का सा मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हम सभी को कहीं ना कहीं क्यों ना क्यों होती जा रही है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है ना। फिलहाल आप गौर कीजिए इस गीत पर जो कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से आपकी रेडियो सेट तक पहुँच रहा है।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। और श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए चाय की चुस्कियों के साथ अखबारों की सुर्खियां। प्रदेश में बेरोजगारों के लिए समूह कह की भर्तियों का पिटारा खुल गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 14 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है, जिनमें 2,390 पदों पर नौकरी का मौका मिलेगा। प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 1,096 करोड़ की वित्तीय मंजूरी। पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती के लिए 13 मई से आवेदन शुरू। वीकेंड पर लगने वाले जाम को देखते हुए पहली बार आशारोड़ी से मसूरी तक 5 सुपर जोन, 10 जोन और 18 सेक्टर बनाए गए हैं। 9 और 10 मई के 2 दिन के वीकेंड के दौरान शहर में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। और अब मौसम। उत्तराखंड में लौटा पुराना पैटर्न, गर्मी बढ़ते ही राहत की बौछार। पहाड़ से मैदान तक मंडरा रहे बादल, पश्चिमी विक्षोभ के अति सक्रिय होने से पहाड़ों पर वर्षा, आंधी की चेतावनी। देहरादून में आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये थी अखबारों की सुर्खियां और अब लीजिए सुनिए इतिहास में आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक प्रभावशाली शासक थे और उन्होंने कम से कम 6 बार अकबर को बादशाह मानकर मेवाड़ में राज चलाने की पेशकश ठुकरा दी थी। महाराणा प्रताप ने सन 1576 में मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में उनके शौर्य को आज भी याद किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट था और उनके भाले का वजन 80 किलोग्राम होता था। आज ही के दिन सन 1874 में मुंबई में घोड़े द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा शुरू हुई थी। ये सुविधा मुंबई के 2 रूट्स पर ही उपलब्ध थी। शुरुआत में इसका किराया 15 पैसे रखा गया था, लेकिन इस सेवा के लोकप्रिय होने के बाद इस किराए को घटाकर 10 पैसे कर दिया गया था।

माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले दो लोगों में से एक तेंजिंग नोर्गे का निधन आज ही के दिन वर्ष 1986 में हुआ था। तेंजिंग नोर्गे को अपने जन्म की तारीख पता नहीं थी और इसलिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के दिन को ही वे अपने जन्मदिन के रूप में मनाने लगे। और आज वर्ष 1836 में डायोप्टर और मोनोयर चार्ट बनाने वाले आई स्पेशलिस्ट फर्डिनेंड मोनोयर का जन्म हुआ था। श्रोताओ, डायोप्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आंखों की देखने की क्षमता को मापा जाता है। आप अक्सर आंखों की जांच के लिए जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपको सबसे पहले अलग अलग साइज में अक्षरों का एक चार्ट दिखाया जाता है, जिसे पढ़ने के बाद डॉक्टर आपकी आंखों का टेस्ट करते हैं। इसे ही डायोप्टर कहते हैं। तो श्रोताओं, ये थी इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमने आपके साथ साझा की। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। श्रोताओ, आज हम याद कर रहे हैं भारत के उस महान व्यक्तित्व को जिन्होंने लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक किया और अंग्रेजों के सामने भारतीयों की आवाज को मजबूती से रखा। जी हाँ, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले को हम आज याद कर रहे हैं। आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। भारत में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। उनका मानना था कि भारत में राजनीतिक बदलाव तभी आएगा जब देश में एक ऐसी शिक्षित पीढ़ी तैयार होगी जो देश के प्रति एक नागरिक के कर्तव्य को समझती होगी। आज उनकी जयंती पर आकाशवाणी देहरादून की पूरी टीम की ओर से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

श्रोताओ, आज हम याद कर रहे हैं एक मखमली आवाज के जादूगर को। जी हाँ, प्रसिद्ध गायक और गजल सम्राट तलत महमूद साहब को, जिनकी विशिष्ट गायकी ने हर दिल पर अपनी छाप छोड़ी। तलत महमूद का जन्म 24 फरवरी सन 1924 को हुआ था। 16 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने गाना शुरू किया। शिकस्त, दाग, वारिस, दिले नादान जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। आज उनकी पुण्यतिथि है। आकाशवाणी देहरादून की पूरी टीम की ओर से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आपको सुनाते हैं उन्हीं की आवाज में फिल्म छाया का ये गीत, जिसमें उनका साथ दे रही हैं लता मंगेशकर।

0: कहते हैं ना श्रोताओं कि सिर्फ सांस चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी तो जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ हमने इस नए दिन की शुरुआत तो कर दी है। सवेरे के 8:57 इस समय हो रहे हैं, तो श्रोताओं क्यों ना आपको सुनाएं कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

और अब श्रोताओ वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का, तो अब संगीता सेमवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.5 MHz पर। सवेरे के 9 बजे लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है

शमशाद बेगम, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। संगीत नौशाद का है। गीत की रचना शकील बंदायूनी ने की है।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

सीआईडी फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 9:10 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।

हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत नूरी फिल्म से है, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। संगीत खय्याम का है और गीतकार हैं जान निसार अख्तर।

सदाबहार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। लीजिए सुनिए आंधी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

सदाबहार फिल्म संगीत के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए फिल्म कुदरत का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में। संगीत आर डी बर्मन का है और शब्द रचना है मसरूफ सुल्तानपुरी की।

जोली फिल्म का लीजिए गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। संगीत राजेश रोशन का है।

0: अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: सदाबहार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। और अब विजय सुनिए फिल्म अभिमान का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत SD बर्मन का है और शब्दों के बोल लिखे हैं मसरूर सुल्तानपुरी ने।

दिल अपना और प्रीत पराई। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत शंकर जयकिशन का है, शब्द रचना है शैलेंद्र की।

सदाबहार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के 13 केंद्र से, और अब डीजे सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म राजा और रंग का ये गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 10 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के विकास के लिए कुल 165 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लागत की 45 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2 की 2024-25 की रिपोर्ट में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में 15वां स्थान प्राप्त किया। केदारनाथ धाम में दर्शनार्थियों की संख्या 4 लाख पार हो गई है। 4,01,748 श्रद्धालुओं ने अब तक बाबा केदार के दर्शन किए। DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर हथियारों की मारक क्षमता और सटीकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ओडिशा के तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। हंता वायरस मामलों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, मंत्रालय सतर्क है, भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के

0: लिए जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय किए जा रहे हैं। जनरल अनिल चौहान के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किए गए। चमोली में भद्रेश्वर कृषक उत्पादक संगठन की ओर से शुरू की गई सब्जी विपणन योजना के तहत स्थानीय किसानों की उपज अब सीधे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को भेजी जा सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया अध्याय है। चमोली के गौड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मारी गई बकरियों के 30 स्वामियों को जिला प्रशासन ने 16,52,000 रुपये की राहत राशि प्रदान की और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने जिले के किसानों को सशक्त करने के उद्देश्य से पाली गांव को अखरोट ग्राम के रूप में विकसित करने की घोषणा की। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 10:02 हुए, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम और मैं हूं आपका आरजे चेतन। एंग्जायटी इंसान के लिए घातक है। ये मस्तिष्क को चोट पहुंचा दे सकती है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोगों की जिंदगी जैसी हो गई है, उसमें एंग्जायटी का होना बहुत आम बात है। रिश्ते में विश्वास की कमी, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, असुरक्षित महसूस करना, लड़ाई झगड़े, गलत व्यवहार, अनियमितता, समाज से दूर रहना, अपनी ही जिंदगी में लीन रहना, ये सब बेचैनी के कारण है। एंग्जायटी तो हर किसी को होती है, परंतु इसे बीमारी के तौर पर पहचानना मुश्किल है। अगर कोई विशेष नकारात्मक विचार या परेशानी बहुत लंबे वक्त तक बनी रहे और उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने लगे तो ये वाकई खतरनाक है। एंग्जायटी अवसाद, निराशा व दुख से जन्म लेती है। जब हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वह हमारे दुख का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार नजरअंदाज किए जाने पर अवसाद एंग्जायटी का रूप ले सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। यह घबराहट के दौर पैनिक अटैक होते हैं। एंग्जायटी के दौर में व्यक्ति को हर समय चिंता, डर व घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी या जी मचलने की समस्या भी महसूस होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो आप साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। जब भी कोई विचार अपने निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे एंग्जायटी कहते हैं। विचार हमेशा एक निश्चित स्तर तक ही किया जाना चाहिए। सीमा से अधिक विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक कोई भी विचार आपको परेशान न करे तब तक बस सामान्य है, परंतु जब कोई विचार या सोच निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तब यह चिंता का विषय है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। एंग्जायटी के सामान्य लक्षण ये है दोस्तों: बेवजह की चिंता करना, हृदय गति में बढ़ोतरी होना, छाती में खिंचाव महसूस होना, सांस फूलना, लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बातचीत करने से डरना, लिफ्ट वगैरह में जाने का डर कि वापस नहीं निकल पाएंगे, जुनून की हद तक सफाई करना, बार बार चीजों को सही करते रहना, जीवन से निराश हो जाना, ये सोचने कि आप मरने वाले हैं या कोई आपको मार देगा, पुरानी बातों को याद करके बेचैन होना, मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाना, फालतू विचारों में बढ़ोतरी होना, बिना कारण के बेचैनी महसूस करना, गैर जरूरी चीजों के प्रति बहुत लगाव होना,

जल्दी निराश हो जाना, किसी चीज के लिए अनावश्यक आग्रह करना आदि। दोस्तों, इस एंग्जाइटी के कई प्रकार हैं, जैसे सामान्य एंग्जाइटी, अनियंत्रित जुनूनी प्रकार, सामाजिक चिंता प्रकार, डर या फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, घबराहट। डियर फ्रेंड्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट द रीजंस फॉर एंग्जाइटी। ज्यादा चिंता करने लगना, छोटी से छोटी बात को ज्यादा सोचना, और ऐसा आपकी जिंदगी में बार बार होना एंग्जाइटी का ही लक्षण है। इसके चलते आप खुद को महत्वपूर्ण कामों को अच्छे से नहीं कर पाते। तनावपूर्ण घटनाएं, कार्य का बोझ, तनाव, अपने किसी प्रिय व्यक्ति का निधन अथवा प्रेमिका से ब्रेकअप जैसी अविश्वसनीय घटनाएं आदि। जिन व्यक्ति के परिवार में मानसिक विकारों से जुड़ी समस्याएं होती रहती है, उन्हें चिंता विकार की समस्या जल्दी हो सकती है, जैसे ओसीडी विकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, थायराइड की बीमारी, दमा, डायबिटीज या हृदय रोग आदि। अवसाद से पीड़ित लोग भी एंग्जाइटी की चपेट में आ सकते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा हो, उसकी कार्यक्षमता में गिरावट आने लगती है। इससे कामकाज से जुड़ा तनाव बढ़ने लगता है और फिर एंग्जाइटी का जन्म होता है। पीड़ा, गम, मायूसी, उदासी व तकलीफों को भूलने के लिए बहुत से लोग शराब, नशीली दवाएं और दूसरे नशे का सहारा लेने लगते हैं। यकीन मानो, कभी भी ये चीजें एंग्जाइटी का इलाज नहीं हो सकता है। नशे का इस्तेमाल समस्याओं को और बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को पूर्णतः के साथ काम करने की आदत होती है, लेकिन जब यह पूर्णतः की जिद सनक बन जाए तो यह एंग्जाइटी के अधीन आ जाते हैं। यही जिद उन लोगों को बिना वजह की घबराहट और चिंता को जन्म देती है। जब कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसका सहानुभूति तांत्रिक तंत्र बहुत तेज काम करने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और मुंह सूखना शुरू हो जाता है। घबराहट हो जाना, ज्यादा कुछ सोचने पर असहजता और घबराहट होने लगती है, जो कि एंग्जाइटी का ही एक लक्षण है। ये बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे पहले कि ये बड़े, डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जब हमें ज्यादा थकान महसूस होने लगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सामान्य फीलिंग है या किसी चिंता की वजह से हो रहा है। यदि इस थकान के कारण सिरदर्द या घबराहट हो तो ये एंग्जाइटी का एक लक्षण है। ज्यादा चिंता करने से नींद नहीं आती और तनाव बढ़ने लगता है। शोध से पता चला है कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां होती है और चिंता से याददाश्त पर भी असर पड़ता है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। वो बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, जिससे उनके सोशल लाइफ पर असर पड़ता है। मांसपेशियों में तनाव रहने लगता है। व्यक्ति को चिंता के दौर पड़ने लगते हैं। वो खुद को हर जगह असुरक्षित पाता है। एंग्जाइटी का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति सही से सो नहीं पाता, नींद पूरी तरीके से नहीं ले पाता है। नींद में सोते हुए गिर जाना या आधी रात में जाग जाना, ये सब भी एंग्जाइटी के लक्षण है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोगों को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और पसीना आने लगता है। जिन लोगों को ज्यादा बेचैनी होती है, वो सामाजिक स्थितियों से डरते रहते हैं। उन्हें समाज में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को लगता है कि समाज उन्हें और उनकी बातों को अहमियत नहीं देती है। एंग्जाइटी से पीड़ित इंसान कभी भी संतुष्ट का अनुभव नहीं कर पाता है। उसे सदा दुख का एहसास होता रहता है और वो संतुष्ट जीवन का आनंद लेने में असक्षम होता है। व्यक्ति को चिंता किसी भी चीज से किसी भी समय हो सकती है, लेकिन अगर सही समय पर उसका इलाज न किया जाए तो यह अवसाद का रूप ले सकती है और पीड़ित व्यक्ति को घबराहट और चिंता के दौरे पड़ने लगते हैं। हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, परंतु इस समस्या की गंभीरता को कम नहीं समझना चाहिए। अगर एंग्जाइटी के एक भी लक्षण से आप, आपके परिवार का कोई व्यक्ति या जान पहचान का कोई इंसान पीड़ित है, तो सबसे अच्छा यही है कि इलाज के लिए आप किसी अच्छे चिकित्सक, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की मदद लें। एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट मेडिकेशन और काउंसलिंग से किया जा सकता है। एंग्जाइटी की समस्या होने पर उसका हल ये नहीं है कि आप उसे अंतिम स्तर मानकर बैठ जाए। हिम्मत करके समस्या का सामना करें। एक ना एक दिन ये एंग्जाइटी आपसे जरूर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का लम्हे कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।

0: आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया था डेविड फिल्म के गीत से, जिसे गाया था रेखा भारद्वाज ने। संगीत मिकी मैक्लेरी का था। और अब विजय सुनिए फिल्म धूम 2 में सुनिधि चौहान को। संगीत प्रीतम का है और गीत लिखा है समीर ने।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

बंटी और बबली फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 10:30 हुए, डीजे सुनिए प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलवे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर हथियारों की मारक क्षमता और सटीकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उड़ीसा के तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। टीएआरए को हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से इसे डिजाइन और विकसित किया है। ये अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। विकास सह उत्पादन साझेदारों और अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से इस किट का निर्माण किया गया है, जिसका उत्पादन कार्य भी शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ

सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने मां चंडी देवी मंदिर पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर मार्ग और साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मंदिर समिति और संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दर्शन व्यवस्था सुचारू रखने और मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के आई कार्ड जारी करने और उन्हें वर्दी में तैनात रखने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। श्रद्धालुओं ने प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर संतोष जताया। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर के आसपास फैले कूड़े कचरे को लेकर वन विभाग को सफाई कराने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण रोकने और दुकानदारों को साफ सफाई बनाए रखने तथा कूड़ादान रखने के निर्देश भी दिए गए। चारधाम यात्रा को देखते हुए हरिद्वार जिले में सीवरेज कार्य के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य तेज कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसियां दिन रात कार्य कर रही हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों, व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सड़कों की मरम्मत जल्द पूरी की जाए। महात्मा गांधी नरेगा में उत्तराखंड ने देश में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ग्राम विकास विभाग ने ये जानकारी दी। ग्राम विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने ग्राम विकास विभाग की बैठक कर कई योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जानकारी दी गई कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 99% भुगतान करते हुए प्रदेश ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस दौरान ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयास के उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाए। इस दौरान बैठक में जानकारी दी गई कि साल 2025-26 में हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड के कुल 3.01 करोड़ के उत्पादों की बिक्री की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 290 करोड़, 10 लाख और जी राम योजना के लिए 705 करोड़ 25 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में देहरादून के रेसकोर्स में निर्माण किए जा रहे व्यावसायिक बहुमंजिला को प्राधिकरण की टीम ने सील करते हुए कहा कि बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि MDDA की टीम लगातार ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए है। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति निर्माण करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर का सुनियोजित विकास MDDA की प्राथमिकता है और किसी भी व्यक्ति को नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। श्री बर्निया ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और भविष्य की प्लानिंग को देखते हुए नियमों का पालन बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है और अगले CDS का पदभार ग्रहण करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। वे वर्तमान में सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उपप्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत विनोद कुमार की गाई रागणी। ढोलक पर आपके साथ संगत कर रहे हैं प्रदीप कुमार, नक्काड़ा पर हैं मोतीराम, हारमोनियम पर हैं तेलू राम।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: लोक संगीत के अंतर्गत इस समय आप सुन रहे हैं विनोद कुमार की गायी रागड़ी।

0: अभी आप लोक संगीत के अंतर्गत विनोद कुमार की गाई रागिनी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।
3: कैसा है जनाब का,
4: क्या ख्याल है आपका,

यो फैसला न कर अभी सिक्का उछाल के, पहले जवाब दे मेरे हर एक सवाल के। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का आपकी मनपसंद कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में बहुत बहुत स्वागत है। और हर दिन की तरह आज भी हम आपको आपकी फरमाइश के गीत सुनवाएंगे। अभी आपने ये गीत सुना आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल सुर में। फिल्म का नाम था चलती क्या नाम गाड़ी। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया की फरमाइश हम तक पहुंची थी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। साथ ही फरमाइश हमें मिली है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह श्रीमती महेश्वरी देवी जी सोनू मोनू राहुल रश्मि प्रियंका सृष्टि बन्नी आरुष शौर्य और दिनेश की। और फरमाइश हम तक पहुंची है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ दिग्दर्शन और कविता गौड़ की। आपकी फरमाइश पे हम सभी ने कार्यक्रम में ये पहला गीत सुना। और हम अपने उन श्रोताओं को भी कहना चाहेंगे जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश से, अगर आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 7088000731। आपको लिख भेजना है अपनी फरमाइश के गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपना पूरा पता। चलिए जी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फरमाइशी गीत, एक और फरमाइशी गीत आप तक पहुंचाते हैं। आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे संगीता घटे साक्षी घटे जयश्री मेहत्रे अंजलि करवा बाला साहेब करवा राम निवास अग्रवाल धनंजय टवोल और पी बी कुल थे। फरमाइश हम तक पहुंची है कच्छ गुजरात से गंगा वणकर गोविंद वणकर प्रीति जूली गीता महिमा विशाल विकास विजय विराट रमेश महेश और जयंती की। फरमाइश हम तक पहुंची है मजनू का टीला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक माही मलिक की। फरमाइश हम तक पहुंची है शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी नाजरा इदरीसी नईम इदरीसी नदीम इदरीसी और असद बाबू की। और फरमाइश हमसे जिन्होंने की है आप हैं, लेकिन आपने नाम नहीं लिखा, कासगंज यूपी से, और आपका नाम इसमें क्योंकि नहीं लिखा हुआ तो मैं किस तरह से आपका नाम यहाँ से लूँ। तो आप अगली बार जब मैसेज करें तो अपना नाम ज़रूर लिखें। ज़िला अमरोहा नई बस्ती से आप हैं बहारुल हसन सिद्दीकी मोहम्मद आलम सिद्दीकी मोहम्मद सिफान सिद्दीकी मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी अनाबिया सिद्दीकी बिटिया लिशा सिद्दीकी शकील सिद्दीकी फ़हीम सिद्दीकी मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। आप सबकी फरमाइश पर लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म चमेली से।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है धामणगांव गांव महाराष्ट्र से भागवत देठी पाटिल, लक्ष्मी देठी पाटिल, समर दादा देठी पाटिल और कुमारी सानिका देठी पाटिल। बर्फगांव नादुरा से शिवाजी उगले, राहुल उगले। साथ ही फरमाइश हम तक पहुंची है भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी। आप हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से। फरमाइश हम तक पहुंची है गांव खारियां ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया की। फरमाइश हमसे जिन्होंने की है इस गीत की, आप हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानहर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। साथ ही फरमाइश हम तक पहुंची है मलोद कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, विवान मिगलानी, वीर सिंह लहते की। और फरमाइश हम तक पहुंची है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरान, फारिया और ताहिरा की। और पहुंची है फरमाइश हम तक ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। फरमाइश करता है दहीगांव नांदुरा से धौड़ू भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा कोमल, समाधान भातुरकर। फरमाइश हम तक पहुंची है मोहम्मद वक्कार फरीदी की, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन प्रवीण, रोची प्रवीण, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर की। आप हैं मोहल्ला हलवा इन शेरकोट जिला बिजनौर से। और फरमाइश हम तक पहुंची है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ की। फरमाइश लिख भेजी है मानपुर साहिब जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान की। और फरमाइश पहुंची है एक बार फिर से वारसी क्लब सिंधौली बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेखी। और करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान की। आप सबकी फरमाइश पे आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत, फिल्म है चांदनी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: इस संदेश के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आज कार्यक्रम में आपकी दोस्त होस्ट भारती और हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम की। जी हां, आपकी फरमाइश के गीत और हम उन्हें यहां से आपके लिए साझा करेंगे। फरमाइश हम तक पहुंची है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब की मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना, यश मंसूरी की। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और तरुण यादव की फरमाइश पहुंची है। साथ ही गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नास, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी की फरमाइश हम तक पहुंची है। और फरमाइश हम तक पहुंची है मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह की। साथ ही फरमाइश हम तक पहुंची है हैदराबाद बीएन रेड्डी नगर से मोनिका बालू, विनय कुमार जी की। और फरमाइश करता है भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद। साथ ही फरमाइश हम तक पहुंची है शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल की। फरमाइश हमें मिली है मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी कुमकुम, ओम कुमार सुरलकर। साथ ही फरमाइश हम तक पहुंची है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और शबनम बानो की। साथ ही जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी और फातमा नाच की। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा की। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से आप हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। फरमाइश हम तक पहुंची है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता की।

फरमाइश करता है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट अंकित कांगड़ा। और साथ ही फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित की। आप सब की फरमाइश पर आ जाइए, सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए एक और व्हाट्सएप फरमाइश। आपकी फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में। आप हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामरे, करुणा मीना, अश्विनी विपुल कामड़े, रमा रावत पौड़ी गढ़वाल से, शेरवारी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना आलिया अंसारी, सीएम रोड निजामाबाद तेलंगाना से शेख अब्दुल अली, निगार प्रवीण, हफसानम, समूरा नमीन, मुनज्जा महीम, आयजा मनाल, मोहम्मद मिसबाउल्ला, मोहम्मद उजेफा अजलान। और फरमाइश हम तक पहुंची है मनकारा मंदिर BDA कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह की। फरमाइश हम तक पहुंची है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन प्रवीण, माहिरा नूर की। फरमाइश हम तक पहुंची है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया की। आप हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से। फरमाइश हम तक पहुंची है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू की। और फरमाइश करता है दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम शाक्य, अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से। फरमाइश हम तक पहुंची है गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत और मोहम्मद इंतजार की। और फरमाइश करता है हमारे श्रोता नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नोहानकर, निर्मला नोहानकर, विशाल नोहानकर, मलाकपुर से नारायण इंगले,

मंगला इंगले आशीष मोहरेकर, और फरमाइश करता है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। आप हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। एक और फरमाइशकर्ता हमारे श्रोता हैं ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद डांगी। और फरमाइश हमें भेजी है बिहार स्टेट डुमराव से राजवली अंसारी, बेगम शबनम राज और अस्मा राज ने, जेल रोड बक्सर से राज एसटी अंसारी, फातिमा राज और असलम राज ने। फरमाइश करता है हमारे श्रोता कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े अमरावती महाराष्ट्र से। और फरमाइश करता है आपका नाम आप हैं आप है करनाल से सुधीर नूतन, संदीप कुकलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर जी। आपसे एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि अपना नाम सबसे पहले फिल्म का गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपना पूरा पता। उसके बाद आपको जो भी निवेदन करना है आप उस तरह से निवेदन करें, क्योंकि जितना समय हम आपके नाम को पढ़ने में, सोचने और समझने में लगाएंगे, इतनी देर में एक दो और श्रोताओं के नाम हम कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोता हमारी बात को समझेंगे और हमें सहयोग भी करेंगे। और मेरा तो हमेशा से एक सुझाव भी रहता है कि जितनी अच्छा हो कि हम हिंदी में टाइप करें, तो उतनी सुविधा हमें आपका नाम अच्छी तरह से साफ उच्चारण करने में हमें आसानी होती है। तो आइए आप सबकी फरमाइश पे सुनते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक पहुंची है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार की। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी गर्वी की। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास और बेबी आयुषी श्रीवास। साथ ही हम तक पहुंची है फरमाइश, आप हैं फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पावा और GS राम गढ़िया। फरमाइश हम तक पहुंची है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल की। फरमाइश करता है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से आप हमने सुन रहे हैं महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल। फरमाइश हम तक पहुंची है जवाहर नगर दुर्ग से RC कांबड़े, और आपका नाम मैं पहले भी ले चुकी हूं। एक और फरमाइश हम तक पहुंची है, आप हैं ग्राम पुटपाक तेलंगाना से भवानी वेंकट, मास्टर मिथुन महादेव, आपकी फरमाइश हम तक पहुंची है और आपकी फरमाइश का गीत भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ और श्रोताओं को भी शामिल करना चाहेंगे। आप हैं M खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, बेबी अरीबा हबीबा, पटियाली रोड, गंज डुंडवारा, उत्तर प्रदेश से, और साथ ही सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। प्रोग्राम सुन रहे हैं मलोट पंजाब आदर्श नगर से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। आप सबकी फरमाइश पर हम कार्यक्रम का एक और गीत आपको सुनवाएंगे। साथ ही फरमाइश चंदन नगर सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग की हमें मिली है, और फरमाइश हमें मिली है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी, प्रगति नाचानी, बाबू भाई और भारती देवी की। साथ ही फरमाइश करता है हमारे श्रोता जमशेदपुर झारखंड से सुपाही साही, गांव से देवेंद्र ताती, रागेश ताती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेंद्र जी। आप सबकी फरमाइश पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम का एक और गीत।

करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल महेश्वरी प्रवालिका विष्णुवर्धन और विग्नेश की फरमाइश हम तक पहुंची है। फरमाइश लिखी है उत्तम नगर राजापुरी से महादेव सोनी और दीपक सोनी ने, सरगुजा मेनपाट से विनोद थापा, पूजा रानी और विजय थापा ने, छत्तीसगढ़ से जानवी डोमिन, यामिनी और रोहित डोम ने, और डोंडी लोहारा से फर्जी हरिशंकर बेलदार और फर्जू प्रभारानी बेलदार, जेल रोड रायगढ़ से उमाराज और जगदीश राज की फरमाइश हमें मिली है। और फरमाइश करता है मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल, ग्राम जखण गांव अहमदनगर से। फरमाइश हम तक पहुंची है जलालाबाद शामली यूपी से राशिद मंसूरी, आयान मंसूरी और जीशान मंसूरी की। और फरमाइश हम तक पहुंची है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा जी की। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। साथ ही फरमाइश जसपुर रोड दूलापुर से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और अलशिफा प्रवीण की। फरमाइश हम तक पहुंची है परी महल काशगंज से आबाद खान, नवील खान, अल्फा खान, एम असलम सैफी, इल्मा खान और मास्टर जाहिद अली की। फरमाइश करता है हमारे श्रोता वनस्थलीपुरम हैदराबाद तेलंगाना से दूरनाला बालाजी, श्रीमती रेणुका बद्री, हरणी लोकेश और आप सबकी फरमाइश पर हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं। दूरापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा मानवी।

तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, साथ ही फरमाइश है रायपुर अने जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन की, साथ ही फरमाइश करता है धूलिया महाराष्ट्र से अशोक कवाड़े, आदित्य कवाड़े, दरियापुर भाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, मधुकर येले, फरमाइश करता है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, अनुराग मोहन, फरमाइश करता है हमारे श्रोता गंज डुंडवारा से समशूल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी और फरमाइश करता है तेलंगाना स्टेट करीमनगर से लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय, साई किरण और फरमाइश करता हमारे श्रोता ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। साथ ही फरमाइश करता है हमारे श्रोता गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर और साथ ही गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबंद। फरमाइशकर्ता हमारे श्रोता हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम में एक खूबसूरत गीत।

बेमिसाल फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना। और आइए बढ़ते हैं एक और फरमाइश की ओर। आप हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी काना, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई, जिला झालावाड़ा, राजस्थान से। साथ ही फरमाइश हम तक पहुंची है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन की। फरमाइश करता है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। फरमाइश करता है सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग। साथ ही फरमाइश करता है हमारे श्रोता गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइन हसन, अक्षा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीम हसन। और हमारे श्रोता हैं फाजिल का पंजाब खेड़ा परिवार से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और पूरा का पूरा खेड़ा परिवार। और फरमाइश करता है हमारे श्रोता पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक। कैथल से हमें मैसेज किया है मधु नायक ने। और साथ ही हमारे श्रोता हैं आप हैं वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। हमारे श्रोता जिन्होंने हमें मैसेज किया है आप हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा विहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। साथ ही फरमाइश करता हमारे श्रोता जो हमें हर रोज फरमाइश करते हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। साथ ही फरमाइश करता है हमारे श्रोता नरेंद्र सुराणा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फारबिसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार विमल और नवरतन हाता बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव, दीवांशु और डब्लू जी। साथ ही हमारे फरमाइश करता है देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला निवासी सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला चोपड़ा, दिनेश चोपड़ा, तन्नू नानू, राधिका रानी गुप्ता, अंशिल गुप्ता, स्मिता रानी गुप्ता, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहुजा, आर एस आहुजा, रजत आहुजा, सोनिया आहुजा, तनिषा आहुजा, सीमा द्वार से पूरी की पूरी चावला फैमिली। साथ ही लालपुर मरो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निम्मी पम्मी ध्रुव, सिया हरबेता ध्रुव और निशांत ध्रुव। फरमाइश करता है हमारे साथी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। फरमाइश करता है हमारे श्रोता करणवीर हाउस भुंचो कैंचियां बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमिन और अभिजोत। फरमाइश करता है रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अनय अनाया और ईशु बाबा। शीतला चौक खंडवा से ही विशाल सिंह विवेक सिंह हमें लिख रहे हैं फरमाइश अपनी। और साथ ही हमारे फरमाइश करता है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। श्रोताओं आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म महबूबा के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिकेट परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और NDA शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल SN राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है।

0: इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Mr. Suvendu Adhikari was sworn in as the first BJP Chief Minister of West Bengal today at a ceremony at Brigade Parade Ground in Kolkata. 5 cabinet ministers also took oath along with the Chief Minister. The Governor, R. N. Ravi, administered the oath of office and secrecy to the ministers. The cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Kshudi Ram Tudu.
2: Ami Shubhendu Adhikari, Ishwarer name shopot koritechi je, bidhi dara sthapito, Bharater Sangbidhaner proti, Ami okritrim nishtha o anugotto poshon koribo. Ami ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh were also present with several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states on the occasion. Earlier, Prime Minister held a roadshow before reaching the brigade ground. Rabindra Jayanti is being celebrated today on Pochisho Boishak, marking the 165th birth anniversary of Rabindranath Tagore. Cultural functions are held globally with major celebrations at Shantiniketan, Vishwabharati University and throughout the West Bengal and Bangladesh, featuring Rabindra Sangeet, poetry, dance and drama. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have offered tributes to Gurudev Rabindranath Tagore on the occasion of Pochisho Boishak. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. IUML, headed by Professor Khader Mohideen, has said that his party has not given a letter of support to Tamira Vetri Kadagam. In another surprise move

0: AMMK party leader TTV Dinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamraj, the lone MLA elected from Mannargudi, to make AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy as the Chief Minister. The government has appointed Lieutenant General N.S. Raja Subramani as the next Chief of Defence Staff, CDS. Ministry of Defence said Lieutenant General Subramani will also serve as the Secretary, Department of Military Affairs, with effect from the date of assumption of charge and until further orders. He will assume office after General Anil Chauhan completes his tenure on the 30th of this month. The government has appointed Vice Admiral Krishna Swaminathan as the next Chief of the Naval Staff. Ministry of Defence said that Vice Admiral Swaminathan is currently serving as the Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command. He will succeed Admiral Dinesh Kumar Tripathi, who retires on the 31st of this month. The two-day Indian Ocean Dialogue IOD10 with the theme of the Indian Ocean region in a transforming world concluded yesterday in New Delhi. In a statement, the Ministry of External Affairs said the dialogue brought together senior officials, policymakers, scholars and experts from Indian Ocean Rim Association member states and dialogue partners to deliberate on key regional developments and emerging challenges in the Indian Ocean region. The Ministry of External Affairs organized the dialogue in collaboration with the Indian Council of World Affairs and the Indian Ocean Rim Association Secretariat. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Atal Pension Yojana have completed 11 years of providing social security cover to citizens across the country. Ministry of Finance said that these schemes were envisioned to extend affordable financial protection to all, particularly the underserved and vulnerable sections of society. Two new suspected cases of hantavirus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts race to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi last night. Today, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 12:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलवे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। पीजीआई रैंकिंग में उत्तराखंड ने कुल 584.5 अंक प्राप्त करते हुए देशभर में 15वां स्थान हासिल किया है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। अब तक बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे 4 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री। चमोली के ज्योतिर्मठ में सब्जी विपणन योजना के तहत स्थानीय किसानों के उत्पाद अब ITBP तक पहुंचाए जाएंगे। देश के विद्युत क्षेत्र की नियामकीय व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी और भविष्य के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने IIT रुड़की में सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया। उत्तराखंड ग्रामीण विकास विभाग ने कहा केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चयनित सीमांत गांवों के संतृप्तिकरण के बाद अन्य सीमांत गांवों को भी इस योजना में शामिल करने की तैयारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि अगले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका ने चीन और हांगकांग समेत 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका का दावा है कि इनमें ईरान के साथ गैरकानूनी व्यापार करने वाली कंपनियां शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने DRDO के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली के अंतर्गत सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। और सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने समाज को नए विचारों, रचनात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास से समृद्ध किया, इसलिए उन्हें श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ याद किया जाता है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: श्रोताओं, 12:12 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शान-ए-आलम और साथियों की गाई कव्वाली।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शाने आलम और साथियों की गाई कव्वाली। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं बहनों को सीमा जखमुला का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस प्रकार से यह दिवस साल में दो बार मनाया जाता है। हर साल लाखों पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए एक देश से दूसरे देश तक उड़ान भरते हैं। कारण होता है प्रतिकूल मौसम से बचाव, भोजन और प्रजनन के लिए सुरक्षित वातावरण की तलाश। प्रवास करते ये पक्षी प्रकृति की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, ये हमारे पर्यावरण को भी संतुलित बनाए रखते हैं। जैसे कि पक्षियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और फलों के बीजों का संचलन होता है और जैव विविधता को विस्तार मिलता है। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के कीटों के अनियंत्रित वृद्धि को ये नियंत्रित करते हैं और इस तरह से ये जैव विविधता को सुरक्षित रखने का काम भी करते हैं। हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन पक्षियों के लिए खतरा है पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनहीनता। प्रदूषित वातावरण, जंगलों की अनियंत्रित कटाई, जल स्रोतों का नष्ट होना, जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूल परिस्थितियाँ, शिकारियों द्वारा पक्षियों को मारे जाने से पक्षियों का जीवन संकट में पड़ता जा रहा है। कई पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। आवश्यकता है पर्यावरण और पक्षियों और जीवों के प्रति संवेदनशील बनने की। हम अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, पक्षियों के प्राकृतिक आवास

0: श्रोताओ, समाज सेवा से किस तरह महिला सशक्तिकरण हो सकता है, इस विषय पर लीजिए सुनते हैं समाज सेविका तस्नीमा कौसर से सुनीता भट्ट की ये बातचीत। समाज सेवा केवल कार्य नहीं बल्कि मानवता की सच्ची पहचान है। आज हमारे साथ है तस्नीमा कौसर जी। तस्नीमा जी, आप बताइए कि आपने समाज का क्षेत्र ही क्यों चुना?
1: सुनीता जी, मेरा बचपन से ही मैं एक सपना देखा करती थी, क्योंकि मैं देखती थी कि जैसे महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता आ रहा है आज तक, तो वो कहीं ना कहीं बचपन से मेरे दिमाग में था। और मैं सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक समाज सेविका के रूप में ही आऊंगी।
0: अच्छा, समाज सेवा में कोई ऐसा अनुभव जो सबसे यादगार रहा हो आपके लिए?
1: बिल्कुल सुनीता जी, मैं बचपन में एक मर्तबा अपने वालिद मोहतरम के साथ एक जगह गई थी, और वो भी एक समाज सुधारक के रूप में है, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं खैर अभी इस वक्त में। तो जब वहाँ पर पापा जाया करते थे और उनकी परेशानियों को देखा करते थे, तो वो कोशिश करते थे कि वो उनको पूरा करें।

0: जैसे एजुकेशन देना, जैसे रोजगार देना, तो ये चीज़ मैं उनसे देखती थी और मैं उनकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। मुझे लगा कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अपने पापा के ही कदमों पे चलूंगी।
1: अरे वाह, मतलब ये आपके पापा से आपको असर हुआ है जो।
0: जी
1: तो तस्लीमा जी, आप बताइए कि आपके साथ कैसे लोग जुड़े हैं, मतलब महिलाएं, बच्चे या युवा?
0: मेरे साथ सुनीता जी अधिकतर महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और मैं आपकी जानकारी में ये बात डालना चाहती हूँ कि मेरे साथ ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो विडो महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं,
1: अच्छा,
0: या फिर जिनका कोई नहीं है वो जुड़ी हुई हैं,
1: बहुत अच्छी बात।
0: और हम कोशिश करते हैं कि हम काम करें और ताकि वो अपनी अर्निंग अपनी मेहनत से कर सकें।
1: अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा पुण्य का काम भी कर
0: बहुत
1: रही हैं
0: बहुत
1: साथ साथ
0: शुक्रिया।
1: में। तो आप समाज सेवा में क्या क्या कार्य करती हैं और जरूरतमंदों तक आप कैसे पहुंच पाती हैं?
0: सुनीता जी, हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम में सबसे पहले अपनी टीम को सिखाया कि आप अलग अलग जिस जिस एरिया में रहती हैं वहाँ पर देखिए आपके मतलब जो महिलाएं हैं उनमें क्या हुनर है, क्या होता है। अधिकतर महिलाओं में हुनर तो होता है
1: हाँ
0: बट वो उस हुनर को बाहर निकाल नहीं पाती हैं,
1: हाँ बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: वो होता है कॉन्फिडेंस।
1: बिल्कुल
0: वो
1: सही कह रहे हैं।
0: कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो सबसे पहला जो वर्क है हमारा वो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस लेवल पर हम लोग काम करते हैं, जब वो उस कॉन्फिडेंस के लेवल के ऊपर जब काम हमारा आना शुरू हो जाता है तब हम उनके हुनर को बाहर निकाल कर लेके आते हैं, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, कढ़ाई
1: हाँ
0: करना, सिलाई करना, मतलब तरह तरह की चीज़ें जो वो करती हैं उस हुनर को हम लोग बाहर निकालते हैं।
1: अरे वाह, ये तो देखो आप इतना अच्छा काम करती हैं। अक्सर क्या होता है कि महिलाओं में हुनर तो बहुत होता है लेकिन वो बेचारी उभार नहीं पाती हैं, या घर का माहौल नहीं होता है, या समाज उनको दबा देता है,
0: बेशक
1: लेकिन आप उनको उनके हुनर को उभारती हैं, है
0: जी
1: ना। तो तस्नीमा जी, आप ये भी बताइए कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और क्या सुझाव देंगी?
0: मैं सुनीता जी सबसे पहला सुझाव महिलाओं को यही देना चाहूंगी कि एक जो डर होता है समाज में निकलने का डर होता है ना, उस डर को आपसे सबसे पहला जो लड़ना है आपको उस डर से लड़ना है।
1: बिल्कुल।
0: जब आप उस डर से लड़ पाएंगी तभी आप आगे कदम बढ़ा पाएंगी। तो हमें डरना नहीं है और हमारे अंदर जो हुनर है उस हुनर को हमें पहचानना है ताकि हम आगे काम कर सके, अपने बच्चों की परवरिश कर सके, एक अच्छा फ्यूचर हम अपने बच्चों को दे सके।
1: तस्लीमा जी, आप शहर और ग्रामीण इलाकों में दोनों जगह कार्य करती होंगी, तो आप बताइए कि दोनों जगह की समस्याएं अलग-अलग होती हैं या सेम ही होती हैं?
0: क्या होता है कि आप जानती हैं कि जैसे शहर और ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, दोनों ही सुनने में भी अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं में भी काफ़ी अंतर होता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, महिलाएं ज़्यादातर जो जो होती है वो घर में रहती हैं, घर का मतलब घर से बाहर नहीं निकलती है, तो उनके अंदर हुनर तो बहुत होता है।
1: हाँ
0: और शहर की जो महिलाएं होती हैं अधिकतर पढ़ी लिखी होती हैं, बट जैसे कि आप जानती हैं कि जैसा दौर चल रहा है फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और महिलाओं के अंदर हुनर तो है बट वो उसको यूज़ नहीं कर पा रही हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। और जब हम उन लोगों से मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से जब हम मिलते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनके हुनर को बाहर निकाल करके लेकर के आएं ताकि वो उस हुनर को पहचाने। सबसे पहला है कॉन्फिडेंस की कमी, तो ये सबसे बड़ा फर्क है दोनों शहर और ग्रामीण क्षेत्र में।
1: हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जरूरी नहीं है कि महिला अगर शहर में रह रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स उनको भी आ रही हैं। देखिए
0: जी
1: ना, जॉब भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, इसके बावजूद भी अगर घर से हमें समर्थन नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कतें आती
0: बहुत
1: हैं। तो
0: दिक्कत है।
1: आप तो ये महिलाओं के लिए विशेष कार्य कर रही हैं जो बहुत ही सराहनीय है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी आप।
1: तस्लीमा जी, महिलाओं की समस्या को आप कैसे समझ पाती हैं?
0: मैं एक महिला हूँ और आप भी एक महिला हैं,
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो गुफ्तगू करने से अंदाज़ा हो जाता है कि
1: हाँ।
0: महिला को क्या चाहिए, क्योंकि एक महिला जो महिला से बात कर सकती है वो शायद किसी और से बात ना कर सके।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमें पता चलता है टीम के ज़रिए या मेरे ज़रिए या किसी के ज़रिए, तो हम उनके घर जाते हैं, उनकी परेशानी को पूछते हैं कि क्या

0: परेशानी है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत की में बताया था कि मेरे साथ ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो विडो महिलाएं
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना।
1: हाँ
0: तो जब उनके बारे में पता चलता है, उनकी समस्या जो ज़्यादातर जो समस्या आती है, किसी के दो बच्चे हैं, किसी की एक बेटी है, किसी के दो बेटे हैं, किसी के तीन बच्चे हैं, ठीक है। उनकी एजुकेशन हो गई, उनकी मतलब खान पान, और जैसे कि ज़्यादातर जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं सुनीता जी, तो उनकी स्कूलिंग है,
1: हाँ
0: और घर में सिर्फ एक वही जिम्मेदार थे जो इस दुनिया में नहीं रहे,
1: बिल्कुल
0: और फिर उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मदर के ऊपर आ जाती है। अब काम ऐसा करना है कि महिला अपने घर को भी देख सके और अपने परिवार को भी देख सके, तो हम कहीं ना कहीं उसी हिसाब से उनको वर्क देते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, वो डोर टू डोर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि घर घर से जैसे कूड़ा उठता है, ठीक है, तो उसका जो कलेक्शन होता है, ठीक है, वो कलेक्शन महिलाओं को दिया जाता है। उसमें से
1: अच्छा
0: वो इसलिए कि वो पार्ट टाइम अपना काम कर सकें।
1: अच्छा
0: ये है कि जैसे अपने वो सारा दिन तो फील्ड में नहीं रह सकती, क्योंकि उनको अपनी गृहस्थी भी देखनी है, तो उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप सुबह 7 बजे से 3 बजे तक रहेंगी, या आपको लगातार 5 बजे तक रहना, इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। वो पहले अपने बच्चों को देखे, अपना घरवार देखे, उसके बाद जो उनको वक्त मिलता है उस वक्त में वो फील्ड में आए, अपना कलेक्शन करें और अपनी ज़रूरियात को पूरा करें।
1: यानी आपने पूरी तरह से उनको फ्रीडम दे रखी है, अपनी सुविधा के अनुसार वो कार्य कर सकती
0: जी
1: हैं।
0: सुनीता जी,
1: तो सिनेमा जी, आपने जब संस्था शुरू की होगी तो बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, कुछ बताइए ताकि हमारी महिलाओं को प्रेरणा मिल सके।
0: जी सुनीता जी, मुझे खूब याद आ रहा है कि 2014 में जब हम लोगों ने ये संस्था बनाने का सोचा था, तब हमारे सामने काफी चैलेंजेस आए थे। लोगों ने कहा कि ये महिलाएं क्या काम कर पाएंगी, और ये तो सिर्फ 2-4 महीने चलेंगी, उसके बाद में ये लोग रुक जाएंगे। और काफ़ी मतलब परिवार वालों ने भी रोका, मतलब मेरे परिवार वालों ने तो खैर सपोर्ट किया, अदरवाइज जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी, तो काफ़ी महिलाएं रुकी, किसी ने मारपीट किया, किसी ने कुछ किया, महिलाओं को साथ में नहीं जुड़ने दिया।
1: ओहो
0: और सबसे बड़ी तो चैलेंज यही था कि एक महिला को घर से नहीं
1: बाहर
0: निकलने
1: निकलने
0: दिया,
1: का।
0: हाँ नहीं देते थे, काफ़ी परेशानी का सामना किया। जब धीरे धीरे धीरे धीरे एक कहते हैं ना कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है संघर्ष तो पहले करना है, तभी हम आगे जाकर के कामयाब होते हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना किया, उसके बाद में फिर लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, वाकई में ये बहुत मेहनती महिलाएं हैं और आगे ये काम करेंगी।
1: तो उनका मतलब देखो, उन्होंने इतनी हिम्मत से काम किया है, डरी नहीं है, तो उनको दुनिया भी मान गई
0: दुनिया
1: है ना।
0: भी मान
1: तो
0: गई,
1: झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए कहते हैं
0: बेशक
1: ना,
0: सुनीता जी,
1: है ना,
0: बेशक
1: मेहनत तो करनी पड़ती है।
0: बेशक।
1: तो तस्लीमा जी, अच्छी समाज सेविका में क्या क्या गुण होने चाहिए?
0: अच्छी समाज सेविका में सुनीता जी, सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरी महिला को समझ सके,
1: जी जी
0: क्योंकि हमारे जो व्यवहार होता है ना, वो
1: जी
0: व्यवहार, मेरा अपना मानना ये है कि व्यवहार ही आपको दूर करता है और व्यवहार ही आपको करीब करता
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल, कहते हैं ना, व्यवहार से हम दूसरों को भी अपना बना लेते हैं,
0: बना लेते
1: और
0: हैं।
1: व्यवहार सही नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं,
0: बेशक
1: है
0: बेशक,
1: ना। तो
0: बिल्कुल
1: आपने बिल्कुल
0: दुरुस्त
1: सही
0: बात
1: कहा है कि
0: कही,
1: व्यवहार बहुत जरूरी
0: बहुत ज़रूरी है, और
1: है
0: मैं सोचती हूँ यही हमारी ताकत
1: ना। हाँ बिल्कुल। तस्लीमा जी, हमने सुना है कि आप लेखिका भी हैं, तो क्या कुछ
0: है।
1: सुनाएंगे आप?
0: जी, बिल्कुल
1: अपनी
0: बिल्कुल।
1: पसंद का कुछ भी सुनाइए।
0: अच्छा, वैसे मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप उसको सुने। कुछ इस तरीके से है कि जमाने का पाला पड़ा वक्त से,
1: वाह।
0: कहीं कोई जीता भला वक्त से, गरज है न कोई गिला वक्त से, मेरा जो हुआ वो हुआ वक्त से।
1: अरे वाह।
0: हयाते गुरेजा न पाई कभी, मुकद्दर में जो था मिला वक्त से, रगों में मेरी जहरे गम घुल गया, मुदाबा न इसका हुआ वक्त से। टपकता रहा खून अरमानों का, नहीं मुझको कोई मिला वक्त से।

0: तो तस्लीमा जी, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप इसी तरह भविष्य में समाज सेवा करती रहें। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: समाज सेवा से महिला सशक्तिकरण, अभी आपने समाज सेविका तस्नीमा कौशल से सुनीता भट्ट की ये भेंट वार्ता सुनी। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे संबंध सभी से अच्छे रहें, इसीलिए हम अपने मन और इच्छा के विरुद्ध दूसरों की हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं, इस डर के कारण कि कहीं सामने वाले को बुरा न लग जाए या कहीं वह हमें गलत ना समझ बैठे। लेकिन हर हाँ सही नहीं होती और हर ना भी गलत नहीं होता। आपकी हाँ और ना समय और आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दूसरों को खुश रखने के लिए आप हर काम को करने की जिम्मेदारी बिना सोचे समझे जब ले लेते हैं, तो आपको सामना करना पड़ता है थकान, मानसिक तनाव और परेशानियों का। आपकी मेहनत और अच्छाई का फायदा तो दूसरे लोग को मिलता है, लेकिन नुकसान आपको उठाना पड़ता है। कोई ऐसी बात जो आपके सिद्धांतों के विरुद्ध हो, आपकी क्षमता से बाहर हो या समय के अनुकूल ना हो, तो उसके लिए विनम्रता के साथ ना कहना सीखें। यदि आपको लगता है कि आपके ना कहने से आप अभद्र समझे जाएंगे, तो आपकी हर बात के लिए हाँ कहने की ये आदत आप पर जिम्मेदारी और काम का ही बोझ डालेगी ना, तो जिससे आप और आपका परिवार प्रभावित होगा। हर बात के लिए हाँ बोलकर आप सामने वाले को अपने काम के प्रति लाप्रभावी बना रहे होते हैं। सब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए विनम्रता पूर्वक ना कहना अभद्रता नहीं है। अपने जीवन पर आपका अपना अधिकार है। यदि आप अपनी भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करेंगे, तभी तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। इसलिए एक संतुलित जीवन व्यतीत करने के लिए ना कहना भी सीखिए। और लीजिए, अब सुनते हैं यह महत्वपूर्ण संदेश।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027, आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: और लीजिए, अब बात करते हैं बालों की। अगर आप बालों को सीधा रखने के लिए या कर्ली करने के लिए हीट टूल्स का इस्तेमाल करती हैं तो हीट प्रोटेक्टेंट जरूर लगाएं। तेज धूप से बचाव के लिए बालों को कवर करके चलें। रोज थोड़ा बहुत बाल गिरना तो सामान्य बात है, लेकिन बाल यदि ज़्यादा झड़ रहे हों तो स्ट्रेस कम लें, नींद अच्छी लें, डैंड्रफ से दूर रखें और विटामिन डी, B12 और आयरन की कमी शरीर में बिल्कुल ना होने दें। और लीजिए, अब सुनते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। श्रोताओं, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से

0: जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 1:05 होने को हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईआईटी रुड़की में सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया। चमोली जिले में स्थानीय किसानों की उपज अब सीधे आईटीबीपी को भेजी जाएगी। ज्योतिर्मठ के बड़गांव के काश्तकारों के समूह से सब्जी के विपणन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। और राजधानी देहरादून के गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय स्थित जिला दिव्यांग व पुनर्वास केंद्र से दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिल रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे अन्य सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईआईटी रुड़की में सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया। ये केंद्र फोरम ऑफ रेगुलेटर्स और आईआईटी रुड़की की संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य देश के विद्युत क्षेत्र के नियामकीय व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और भविष्य के अनुरूप बनाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ती बिजली मांग, नवीनीकरणीय और ऊर्जा के तेजी से विस्तार, डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग और ऊर्जा बाजारों में हो रहे बदलावों को देखते हुए मजबूत नियामकीय ढांचे की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि ये देश में इस प्रकार का दूसरा केंद्र है। इससे पहले आईआईटी दिल्ली में भी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा चुका है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग एवं फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के अध्यक्ष जिष्णु बरुआ ने बताया कि ये केंद्र देश में नियामकीय क्षमता निर्माण का प्रमुख संस्थान बनेगा।

0: और उच्च गुणवत्ता वाले शोध व ज्ञान संसाधनों के माध्यम से भारत की ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि ये केंद्र अकादमिक जगत, नीति निर्माताओं, उद्योग और नियामकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जिससे ऊर्जा संक्रमण और अवसंरचना प्रशासन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान में मदद मिलेगी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में छापेमारी अभियान चलाया। अपर जिलाधिकारी विवेक राय और उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने शहर के विभिन्न मोटर ड्राइविंग स्कूलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दो मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में कई अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद अपर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से मोटर ड्राइविंग स्कूल को बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बिना उचित प्रशिक्षण के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: जो भी ऐसे मोटी ट्रेनिंग स्कूल पाए गए हैं, उसको तत्काल प्रभाव से उनको नोटिस दे करके उनका जो है सस्पेंड कर दिया गया है। उनके यहाँ प्रक्रिया तभी अब आगे चलेगी जब उनके द्वारा सारी व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाएगी। आप लोगों के चैनल के माध्यम से जिन तक आवाज मेरी पहुंच रही है, उनको मैं आग्रह करना चाहूंगा कि RTO ऑफिस में हमारे ऑफिसर्स पर्याप्त संख्या में है। कोई समस्या आती है उनसे मिलें, बिचौलियों से सावधान रहें, उनसे न मिलें।
0: भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून शाखा कार्यालय की ओर से देहरादून में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 150 से अधिक ज्वेलर्स ने भाग लिया। इस दौरान BIS के निदेशक व प्रमुख हेमंत आड़े ने BIS हॉलमार्किंग योजना में हुए नवीनतम विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं अब BIS केयर ऐप के माध्यम से हॉलमार्क आभूषणों का विवरण, आभूषण का वजन और आभूषण का फोटो भी सत्यापित कर सकते हैं, जिससे पारदर्शी और उपभोक्ता संरक्षण को और अधिक मजबूती मिलेगी।
2: भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा कार्यालय ने ज्वेलर्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सैकड़ों ज्वेलर्स शामिल हुए और उन्हें हॉलमार्किंग, गोल्ड हॉलमार्किंग, स्वर्ण हॉलमार्किंग के विषय में जानकारी दी गई और उनकी जो परेशानियां हैं हॉलमार्किंग के संबंध में उस पर हमने चर्चा की। और जो सिल्वर हॉलमार्किंग जो मैंडेटरी होने जा रहे, अनिवार्य होने जा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की गई।
0: कार्यक्रम में BIS अधिकारियों और ज्वेलर्स के बीच संवादात्मक चर्चा के दौरान हॉलमार्किंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और उपभोक्ता हितैषी बनाने पर विचार विमर्श किया गया।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: चमोली जिले में स्थानीय किसानों की उपज अब सीधे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP को भेजी जाएगी। जिले के काश्तकारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तराखंड और औद्यानिक परिषद और ITBP के बीच गत 1 अप्रैल को स्थानीय काश्तकारों से सब्जी खरीद के लिए अनुबंध किया गया। एक
4: समझौते के तहत ज्योतिर्मठ के बाड़ा गांव के काश्तकारों के समूह से सब्जी विपणन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने पहली खेप लेकर जा रहे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 50 किलोग्राम मटर, 8 किलोग्राम लहसुन, 50 किलोग्राम राई, 5 किलोग्राम धनिया और 5 किलोग्राम चुकंदर की आपूर्ति की गई, जिससे काश्तकारों को लगभग 9,000 रुपए की आय प्राप्त हुई है। स्थानीय काश्तकार मोहन सिंह कमदी और सुखदेव सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार और औद्यानिक परिषद की यह पहल किसानों की आय मजबूत करने में सिद्ध होगी। ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक सोमेश भंडारी ने बताया कि समझौते के तहत क्षेत्र के कृषक संगठनों को सब्जी विपणन व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है, जिससे स्थानीय किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इस व्यवस्था से स्थानीय किसानों को अपनी उपज का सीधा बाजार उपलब्ध होगा। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही उन्हें विपणन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
0: राजधानी देहरादून के गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय स्थित जिला दिव्यांग व पुनर्वास केंद्र से दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिल रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि दिव्यांग व पुनर्वास केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र में अब तक 600 से अधिक UDID कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि 600 नए दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और 250 प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया जाया।
5: जनपद देहरादून में पहली बार DM महोदय के निर्देशों के क्रम में गांधी शताब्दी में हमको 4 कमरे मिले हैं जिला दिव्यांग

0: पुनर्वास केंद्र संचालन के लिए। डीडीआरसी का मुख्य कार्य दिव्यांग लोगों की सहायता करना और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित कराना है। एक वर्ष में जब से हमारा कार्यशाला डीडीआरसी चला है, एक वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 600 नवीन दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बने हैं और 250 नवीनीकृत हुए हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र।
1: प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना है। राज्य ने पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ सीएस तोमर ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश आंधी और गर्जन के आसार हैं।
2: हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं हमारे को लगभग जो है सारे पर्वतीय जो हमारे जिले वहाँ देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों में जो है ये जो है हल्की फुल्की कहीं पे हो सकता है। बाकी फिर 12 और 13 तारीख में जो ऊपर के हमारे 5 नॉर्थ के जो जनपद है वहाँ पे हमको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पर देखने को मिल सकती है 12 और 13 तारीख में। बाकी जगह पे जो है कहीं कहीं देखने को मिल सकती है हल्की मध्यम दर्जे की बारिश और 13 और 14 तारीख को भी लगभग सिमिलर सिचुएशन रहेगी। वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईआईटी रुड़की में सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया। चमोली जिले में स्थानीय किसानों की उपज अब सीधे आईटीबीपी को भेजी जाएगी। ज्योतिर्मठ के बड़ा गांव के काश्तकारों के समूह से सब्जी के विपणन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया और राजधानी देहरादून के गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय स्थित जिला दिव्यांग व पुनर्वास केंद्र से दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिल रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 1:15 का समय। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

3 ETS इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों की आवाज में। आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल को, फिल्म है एक्शन रीप्ले।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और निकिता गांधी का युगल स्वर। फिल्म का नाम है राब्ता।

0: निकिता गांधी और अरिजीत सिंह के गाए फिल्म राबता के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 होने को है। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की विशेष प्रस्तुति।
1: नमस्कार, मैं मुदिता आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं आज के इस खास कार्यक्रम में। खास इसलिए क्योंकि कल मदर्स डे है और माँ की हम सब की जिंदगी में एक खास जगह है।
2: माँ को लोग भगवान का दर्जा देते हैं और मदर्स डे आते ही उनके त्याग और बलिदान की बातें करने लगते हैं। माँ ऐसी होती भी हैं, बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा होता है उनके अंदर, लेकिन एक माँ को हम यही समेट देते हैं, भूल जाते हैं कि सारे रिश्तों से परे वो खुद भी एक इंसान है, उनकी भी अपनी खुशियां हैं, गम हैं, इच्छाएं हैं, अपनी एक जिंदगी है। आप भी मदर्स डे के दिन या साल में किसी भी आम दिन अपनी माँ और साथ ही अपने आसपास और माओं पर नजर डालिएगा, उनके चेहरों को ध्यान से देखिएगा तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से न जी पाने की तड़प आपको दिखाई देगी। हालांकि वो पूरी ताकत लगा देंगी कि ये परत कभी ना दिखे। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक ऐसी मेहमान जो एक माँ हैं, बल्कि अब नानी भी हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर जिन्होंने अपने सारे रिश्ते नातों के साथ ही अपने लिए भी जीना सीखा और उम्र के साथ आने वाली हर उस चुनौती को, जिसकी वजह से लोग उम्रदराज होने से डरते हैं, उन सबको इन्होंने बहुत छोटा बना दिया है। एक्टिव एजिंग का बहुत बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने रखा है आशु जैन, एक ऐसी माँ जिन्होंने जिंदगी की दूसरी पारी को बहुत अलग अंदाज में लिया है। 53 साल की उम्र में आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की, कंटेंट क्रिएशन से शुरुआत की और 54 साल की उम्र में फिटनेस का अपना सफर शुरू किया। 57 साल की उम्र में टीवी पर एक रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के तौर पर डेब्यू किया और 58 साल की उम्र में पिछले महीने हायरॉक्स बेंगलुरु में अपने आयु वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया और एक हाइब्रिड एथलीट के तौर पर अपना सफर शुरू किया। आशु जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हम सुनते हैं आकाशवाणी पर, और वहाँ पर आके उस माहौल को देखना और उसमें सम्मिलित एक होता है हमारे अंदर एक छवि होती है कि कैसे रिकॉर्डिंग होती होगी, तो मुझे ये बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है देखकर, इसका पार्ट बनकर।
2: तो सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हायरॉक्स में शानदार प्रदर्शन के लिए।
3: थैंक यू।
2: आपका ये जो सफर है आज बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये सफर शुरू कहाँ से हुआ।
3: प्लान नहीं था, मुझे लगता है सबसे पहले तो अगर फिटनेस स्टार्ट कहाँ हुई, मेरी बीमारियों से शुरू हुई। मुझे तब फिटनेस का नहीं था, मुझे हेल्दी होना था, बीमारियों से निवारण चाहिए था मुझे क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम आ गई थी। वॉक से शुरुआत हुई धीरे धीरे, तो एक तो ना मुझे आदत पड़ी खुद को टाइम देने का, और वो कोविड का टाइम था, घर पर सारे बच्चे थे, और जब मैं घर से बाहर निकलती थी ना कहीं वो किचन से भी बाहर निकलती थी क्योंकि घर में बच्चे हैं घर पे और मैं दिख रही हूँ, तो मुझे देखकर चाय याद आती थी या कुछ आज कुछ अच्छा खाने का मन है वो याद आता था। तो स्टार्ट तो वहाँ से हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब अपने अंदर चेंजेस दिखे मुझे, खाली वेट का नहीं, क्योंकि यूजली जब हम स्टार्ट करते हैं, चलो एक तो बीपी हो गया, एक मेरा वेट कम हुआ, पर उससे ज़्यादा मुझे अपने एनर्जी लेवल में फ़र्क महसूस हुआ। दूसरा, बॉडी में जो लोअर बैक में गर्दन में दर्द रहता था वो सब दर्द दूर हो गए, तो वो एक ऐसा लग रहा था एक नई सी लाइफ है। तो बस वहाँ से स्टार्ट हुई, फिर एक एक करके बढ़ता गया, जिम गई, दौड़ना शुरू किया तो मैराथन्स हुए, और क्योंकि जिम में माहौल ऐसा था, धीरे धीरे करके फिर वो रियलिटी शो हुआ। उसके बाद ना क्या होता है कि आपको सोचना नहीं पड़ता, आप वो दिशा पकड़ लेते हो।
2: अच्छा, अभी आपने जिम की बात की कि आपने जिम भी शुरू किया। जिम में अमूमन हमें कम उम्र के लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो जब आप पहली बार जिम गई तो कैसा महसूस हुआ? क्या कभी लगा कि नहीं भाई ये जगह नहीं है हमारे लिए?
3: एक तो ना मेरा थोड़ा इसमें ट्रांजिशन टाइम था क्योंकि मैंने घर पे ही बॉडी वेट एक्सरसाइजेस ऑनलाइन सीखनी शुरू करी, यूट्यूब पे देख के करना शुरू किया। जब गई तो हर चीज़ बहुत नई भी नहीं थी, लेकिन जिम का एक माहौल अलग होता है, तो शुरू में हाँ लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था, खुद को लग रहा था कि मैं यहाँ पर अजूबा हूँ, लेकिन फिर आप देखते हो आसपास, स्ट्रगल तो सभी कर रहे होते हैं, वजन ही तो अलग होता है किसी के हाथ में, मतलब किसी के हाथ में 25 किलो, किसी के हाथ में 10 किलो, मेरे हाथ में शायद पहले 2.5 किलो था, 5 किलो था, उतना ही तो फर्क होता है, बाकी तो सबकी जर्नी सेम ही होती है, सब एक जैसे लगते हैं। तो फायदा ये होता है कि आप दूसरों को देख के आप प्रभावित भी होते हो, सबकी कहानियां होती हैं कि मैं आने से पहले ये थी, तो वो आपको प्रेरित भी करता है। तो एक बार लगता है, उसके बाद नहीं लगता, फिर आपको लोग गाइड भी करते हैं आपके, उनके जो सवाल होते हैं कई बार, और दोनों तरफ से हुआ, क्योंकि जब मैं गई थी मेरे अंदर जब चेंज देखते थे वो लोग, घर जाके अपनी माओ से भी वही एक्सपेक्ट करते थे, तो आई थिंक वो चेंज दोनों तरफ होता है फिर।
2: बिल्कुल होता है। अभी आपने शुरुआत की बात की कि आपके लिए शुरुआत आसान रही, आप क्योंकि शायद उस माइंडसेट में थी पहले से, लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि लोगों के लिए वो शुरुआत बहुत मुश्किल होती है, हाउ टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, वो एक कहीं एक झिझक आ जाती है, काफ़ी लोग वहीं पे हिम्मत हार जाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखो इस चीज़ में मैं कहूँगी बच्चों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हिचक होती है, जो कभी जिम नहीं गया उसको वो माहौल ही बहुत अलग लगेगा। तो मेरे से कई बार कई लोग पूछते हैं कि हमारी माँ शुरू नहीं करती, पापा शुरू नहीं करते, कैसे कराएं, तो मैं कहती हूँ अपने साथ जिम लेके जाओ, उनको ना शुरू में ढाढ़स बंधेगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमें कोई बताने वाला है, बस मेरे को लगता है अगर एक महीना भी ऐसे हो जाए फिर धीरे धीरे उस माहौल में सब ढल जाते हैं। तो वो उस शुरुआत में मुझे लगता है बच्चों ने अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करा ना तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बच्चे या फिर अगर कोई दोस्त हैं जो ऑलरेडी जिम जा रहे हैं, किसी का साथ पकड़ लो तो वो एक ट्रांजिशन में हेल्प मिल जाती है।
2: अभी आप क्योंकि बच्चों की बात कर रही हैं तो हम पहले जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है।
3: मेरे मम्मी हैं, मेरे हस्बैंड के साथ मैं रहती हूँ, और मेरे तीन बच्चे हैं, तो तीनों हमारे साथ नहीं रहते क्योंकि उनकी काम ऐसा है कि अलग अलग शहरों में है, और एक मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई है, बेटे की अभी नहीं हुई है।
2: तो क्या आपका जो परिवार के बाकी लोग हैं क्या वो भी आपकी तरह फिटनेस को लेके इतने ही पैशनेट हैं?
3: नहीं, मुझे लगता है जब यंग होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो यूथ होती है, क्योंकि आपकी मशीनरी नहीं है, फॉरगिविंग होती है कि आप कुछ भी खा रहे हो कुछ भी कर रहे हो आप ठीक होते हो। और मेरे हस्बैंड उनको देख देख के बीच बीच में बुखार चढ़ता है, लेकिन अभी ऐसा है पटरी पे गाड़ी चढ़ती है उतरती है, वो स्टेज चल रही है, कंसिस्टेंट अभी तक नहीं है। बच्चों में हाँ मुझे अब चेंज दिख रहा है, खासतौर पर हायरॉक्स में जब मेरे साथ गए थे तो वहाँ जाके उनको बहुत प्रेरणा मिली है, और वो कह रहे हैं कि अब हम भी जिम ज्वाइन करेंगे और कंसिस्टेंटली करेंगे। मेरी मदर को भी मैंने कुछ पेजेस दिखाए, इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, जहाँ पर किसी ने 70 साल में शुरू किया, अब वो 80 साल के हैं और इतने फिट हैं। मम्मी का थोड़ा अलग किस्सा था, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने देखा और फिर बोला कुछ भी कर ले, झुरियाँ तो गई नहीं इनकी। तो मुझे लगता है कि फिटनेस और यूथफुलनेस में फ़र्क होता है, मतलब आप ठीक है जब आप वर्कआउट करते हो तो आप जिस तरह से चलते हो उन सब में फ़र्क आ जाता है, आपकी बॉडी का पॉस्चर चेंज होता है, लेकिन एजिंग अपनी जगह है, आपको चश्मा भी चढ़ेगा, बाल भी सफ़ेद होंगे, रिंकल्स भी आएंगी, वो अपनी जगह है। तो आई थिंक वो एक कन्फ्यूजन होता है कि एंटी एजिंग है भी जिमिंग कहीं ना कहीं, और कहीं कहीं नहीं भी है। वो एक्सेप्टेंस आई थिंक मेरी मदर को वो लगा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर झुरिया नहीं गई तो बेकार है।
2: आपने बात की अपनी माँ की और साथ ही अपनी बेटियों की, तो उन दोनों से आपका रिश्ता कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है और अपनी माँ के साथ कैसा है?
3: मुझे लगता है जब मैं छोटी थी तो पेरेंटिंग डिफरेंट थी, इन द सेंस कि बहुत आज्ञाकारी बच्चे होते थे और वही एक्सपेक्टेशन थी, हमने शायद ही कभी बहस करी होगी। अब कभी कभी मैं अपनी माँ से बहस करती हूँ तो वो उनको बुरा लगता है, उनको लगता है मैंने कोई ना कोई सीमा लांघी है, जबकि बच्चे आई थिंक हम क्योंकि उनको शुरू से बोलते हैं कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो, कुछ माहौल ऐसा है कि अब तो मुझे लगता ही नहीं कि वो मेरे बच्चे हैं, बराबर के लगते हैं, और कभी कभी तो लगते हैं कि मैं बच्चा और मेरे बड़े, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा निर्देश रोज़ दिए जा रहे होते हैं कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए। बट आई स्टिल प्रेफर आजकल का टाइम, क्योंकि आपस में ना बॉन्डिंग अच्छी है, मेरी माँ के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो माँ बेटी का रिश्ता है, शेयरिंग कम है, जो शेयरिंग है मेरी अपनी बहन से ज़्यादा है। तो बच्चों और मेरे बीच में मुझे लगता है वो गैप कम है, क्योंकि हम जब बात करते हैं, क्योंकि बीच में वो नहीं है कि मैं बड़ी तुम छोटे, कहीं ना कहीं एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे मैं डिस्कशन की बात कर रही हूँ, तो कुछ टॉपिक्स ऑब्वियसली वो मुझसे नहीं डिस्कस करेंगे, बट मेजरली आई थिंक ये एक बेटर ट्रेंड है, शायद यही रीज़न है कि आज जो मेरी जर्नी है उसमें, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तब से मैं उनसे बातें करती थी, तो उनको एटलीस्ट ये पता था कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ पीड़ा है, मुझे बहुत था कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपना करियर छोड़ दिया, तो जब मौका आया उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी कि अब हम पढ़ चुके हैं ना, अब आप जाओ। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब वो मुझे, मैं उनसे बात ही नहीं करूँगी तो मुझे समझेंगे कैसे। तो दोनों तरफ से ये बात है, कुछ बातें ऐसी थी जो उनको मुझे बुरी लगती थी, तो एक पॉइंट के बाद उन्होंने खुल के मुझसे बात करना शुरू किया। तो जब उन्होंने बात करनी शुरू करी तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी गलती का भी एहसास हुआ, मैंने वो गलती मानी, तो उससे हमारा रिश्ता बेटर ही हुआ है। तो आई थिंक ये एक फ़र्क है जनरेशन्स में कि माँ बाप और बच्चों के बीच में रिश्ते में कुछ चेंज तो आया है।
2: ये तो जब तक बच्चे घर में साथ में रहते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई, उनके दोस्त, और एक समय बाद अपनी नौकरी और परिवार हो जाता है। कई बार वे दूसरे शहरों या विदेश में भी बस जाते हैं, दूसरी ओर माँ बाप के पास कोई व्यस्तता ही नहीं होती, बहुत सारा खाली टाइम होता है और वो बच्चों की कमी ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। आपके सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि एन एम्प्टी नेस्ट गिव्स यू रूम टू स्प्रेड आउट योर ओन विंग्स, यानी एक खाली घर आपको अपने सपनों को पंख लगाने का मौका देता है। बहुत ही पॉजिटिव सोच है ये, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
3: क्योंकि शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम यही कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, बस सपने देख रहे होते हैं। अगर आपकी बॉडी बेसिक फिटनेस कम से कम हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो मेरा वो टाइम था कि जब मैंने फिटनेस के साथ साथ डांस करना शुरू किया, मैंने हाइक्स पे जाना शुरू किया, जो शायद मैंने सपने भी नहीं देखे थे वो सब करना शुरू किया। और वो एक, बच्चे बड़े एक्साइट होते थे क्योंकि बच्चे जब फ़ोन करते थे कहते थे, पहले पता हम पूछते थे मम्मी आपकी तबीयत कैसी है, अब हम पूछते हैं माँ और क्या चल रहा है, और क्या नया कर रही हो। तो आई थिंक उनमें भी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि जिस तरीके से मैं उनसे पूछती हूँ कि और बेटा क्या चल रहा है लाइफ में, कैसा चल रहा है, तो उनके पास भी मेरे लिए यही सवाल होता है। और अभी रिसेंटली मेरे बेटे ने एक चीज़ बोली थी कि मम्मा पता है पेरेंट्स सबसे बड़ा गिफ्ट अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, उनकी खुद की हेल्थ, क्योंकि हम आपसे दूर हैं और हमें आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं आज हम कल बात करें, आज मैं बहुत बिजी हूँ। तो आई थिंक वो चीज़ जो है ना कि बच्चे ही बिजी नहीं, खुद के लिए भी, ये तो एक, क्योंकि इसके पहले जब हम बचपन की बात करती हूँ, बचपन में हम कहीं ना कहीं आगे की लाइफ के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा, मुझे वैसे तो वो लगता था कि व्यंग होता है कि जब लोग कहते हैं ना कि पचपन पे बचपन है ना, पर ये इतनी सही बात है क्योंकि ये जो पचपन पे दूसरा बचपन है ये हमारा तैयारी का टाइम है आगे की लाइफ का, कि हम आगे क्या करेंगे। एक टाइम होता है जब आप आजीविका की सोचते हो, वो आजीविका से जीने की तरफ बढ़ना, तब हम इतने व्यस्त होते हैं कि हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता कि हम, हमारे मन में क्या क्या इच्छाएं थी। ये तो गोल्डन पीरियड है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर दी, ठीक है, आप फाइनेंशियली भी मोर और लेस आप एक एक मुकाम तक पहुंच जाते हो, आपके बच्चे आपकी बिगेस्ट सपोर्ट बन चुके होते हैं इस टाइम तक। इस टाइम पर आपको ये एक मौका है अपनी लाइफ जीने का। तो यही कहती हूँ कि एम्प्टी नेस्ट को हम बड़े, मैंने देखा है माएँ बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं, ये देख ही नहीं रही कि वो कितना सुनहरा मौका है अब अपनी लाइफ जीने का। शुरू से हम कहते हैं बच्चों को ना अपने पैरों पर खड़ा करना है, आप खड़े हो गए तो हम अफसोस किस बात का कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। हमने सोचा था कि वो अगर अलग जा रहे हैं इसका मतलब अपने आप जीने लायक हमने उनको बना दिया, अब उसको सेलिब्रेट करते हैं अपने आप अपने पंख फैला के उड़ने के लिए।
2: अशोक जी, हम अभी बार बार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इस उम्र में आपने ये सब कुछ किया है, तो उम्र शरीर पर बहुत असर डालती है। हम कितना भी क्यों न कहें कि एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि एज इज अ रियल चैलेंज। उम्र के साथ आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बदलती हैं। महिलाओं में चुनौती और बड़ी हो जाती है क्योंकि बहुत से हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, खासकर मेनोपॉज के दौरान तो हार्मोन्स रोलर कोस्टर की तरह होते हैं। ये चुनौतियां आपके सामने भी आई होंगी, आपने कैसे डील किया?
3: इनिशियली तो मुझे समझ ही नहीं आया, एक तो ना मेनोपॉज के बारे में कोई बात नहीं होती, मेरी खुद की माँ ने भी मुझसे कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करी। और जब वज़न बढ़ना शुरू हुआ, जब मेरे को एनर्जी लेस फील होता था और बहुत इमोशनल फील होता था, मतलब हर किसी में अलग अलग ढंग से आता है, मेरे को तो रोना बहुत आता था, और जब मैं किसी से बात भी करती थी तो हाँ अब तो हो गई, मतलब एक्सेप्टेंस ही एक तरीका था जैसे लोग डील कर रहे थे। फिर उसके बाद जब मेरा बीपी बढ़ा और डॉक्टर ने मुझे बोला आजीवन अब दवाई खानी पड़ेगी, वहाँ मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। और थोड़ा बहुत क्योंकि पढ़ा था तो इतना तो था कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो मैंने डॉक्टर से यही बोला कि जो आप कहोगे लाइफ में चेंज करने का मैं करूँगी, पर मुझे पूरी ज़िंदगी दवाई नहीं खानी है, तो इसी हिसाब से उन्होंने मुझे डोजेज बताई और बोला कि वॉक करो और खाने में ये खाओ ये नहीं खाओ, सिंपल जैसे होता है। पर मैंने उसको गांठ में बांध के वो चीज़ करना शुरू किया। शुरू में मैं आधा घंटा वॉक करती थी, धीरे धीरे मैं 3 घंटा वॉक पे आ गई, 3 घंटे में 15 किलोमीटर चल लेती थी। तो बीमारियां तो सब चली ही गई, और साथ में वो 3 घंटा खुद को देने में क्या आनंद आता है ये रियलाइज हो गया। फिर मैंने और चीज़ें धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करनी शुरू करी, और साथ में एक चीज़ में क्लैरिटी आई कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही दवाई है इस उम्र में, जबकि हमारे खासकर इंडियन सोसाइटी की बात करूं तो सिवाय वॉक और योगा के कुछ भी एक एज के बाद उसको ठीक ही नहीं माना जाता। जब मैं पहली बार एक बार जब अपनी सास के सामने कर रही थी, और एक मैं फ़ोन पे करती थी, तब फ़ोन लगाया और सामने कर रही थी, मैं वो देखती रही और बोली कि एक उम्र के बाद ज़्यादा उछल कूद करने से ना हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि मम्मा ये सब करती रहूँगी ना तो मेरी हड्डियाँ नहीं टूटेंगी, क्योंकि हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, आपके हॉर्मोन्स काफ़ी हद तक आपकी मसल्स कंट्रोल करती हैं, सब चीज़ का तो एक तरीके से एक ही इलाज है। और मैं सबको बोलती हूँ कि आपने बचपन में ठीक है आप पढ़ रहे थे टाइम नहीं था, बट 30s ऑनवर्ड्स खासकर औरतों के लिए जितना ज़रूरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, उतनी ही ज़्यादा आगे चलकर फिजिकल इंडिपेंडेंस के लिए अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। आप योगा करो, पिलाटेस करो, वॉक करो, लेकिन जिम कम से कम हफ्ते में 3 दिन नॉन नेगोशिएबल।
2: एक बात आशु जी जो आमतौर पर देखने को मिलती है कि अभी क्योंकि हम घर की बात कर रहे हैं कि महिलाएं घर में सबका ध्यान रखती हैं लेकिन खुद को और खुद के स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दे पाती हैं, घर की जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। कई बार आपके साथ भी यह होता होगा कि आपके वर्कआउट का समय है और उसी समय घर का कोई काम आ गया, आपके जिम का टाइम है और तभी कोई मेहमान आ गया, कैसे इन परिस्थितियों से डील करती हैं आप?
3: आई थिंक मैं बहुत क्लियरली एक प्रायोरिटी मैंने सेट करी हुई है कि अगर कोई मेहमान भी आता है तो मैं उनके साथ टाइम बिताती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि कल सुबह मुझे इतने से इतने बजे तक जिम जाना है तो आप मैनेज कर लेना, और कोई नहीं माइंड करता। और बच्चों के साथ तो अब ये हो गया है तो बच्चे बोलते हैं अच्छा आप जिम जा रही हो हम भी साथ चलेंगे। जब शुरू में मैं वॉक पे जाती भी थी ना तो क्या था, एक सुबह के टाइम में खासतौर पर मेरा बिजी टाइम होता था कि मैं बच्चों को खाना बना के दे रही हूँ या चाय दे रही हूँ व्हाटएवर, तो जब मैंने जाना बच्चे ना निकल रही हूँ और तभी बच्चे बोल रहे हैं मम्मा पोहा बना सकती हो, मैं वॉक पे जा रही थी, अच्छा ठीक है फिर हम अभी कॉर्नफ्लेक्स खा लेंगे, वापस आओगी तो पोहा बना देना। तो वो एक चेंज वो बहुत जल्दी आ जाता है, बस कमी होती है कि हम ही नहीं बोलते क्योंकि हमें गिल्ट आता है कि शायद हम सेल्फिश हो रहे हैं अगर हम ये इतना आउट ऑफ द वे जाके सबके लिए नहीं कर रहे हैं। एक और चीज आपको बताती हूँ कि जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था बच्चों के लिए तो वो चीज सबको बहुत नॉर्मल लगा, किसी ने मुझसे सवाल ही नहीं पूछा क्योंकि तब मैं वो एक माँ की परिभाषा को पूरा कर रही थी। मैं एक आइडियल माँ थी, मदर इंडिया टाइप, जो कि अपना पूरा सेक्रीफाइस करके ही बच्चों को पालती है। फिर मैंने जब पीएचडी पूरी हुई और मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूंगी, मैंने फिटनेस की तरफ और कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, इतने सवाल पूछे गए मुझसे कि पीएचडी करके अब तुम ये कर रही हो, मतलब बच्चे पालने के लिए छोड़ूं तो जायज है और अगर शौक पूरा करने के लिए तो उस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक फर्क है और कहीं ना कहीं आपको ही ये बताना होगा मैं ये कर रही हूं। उसके बाद सब चीज़ अब वैसा होता है कि आप एक्सेप्टेबल हो जाते हो, लोग आपको वैसे स्वीकार करने लगते हैं, आपकी फैमिली में भी आपको ऐसे स्वीकार करने लगते हैं। तो एक बार बोलना तो पड़ेगा ना, कमी है कि हम बोलते ही नहीं हैं।
2: जी ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी बात आपने बोली कि खुद बोलना ज़रूरी है, खुद को समझना और खुद को समझाना भी ज़रूरी है हमारे लिए। आप अपनी पीएचडी के बारे में अभी बता रही थी, आपने पीएचडी की आईआईटी दिल्ली से, वो भी 53 साल की उम्र में। तो पहली बात तो कि पीएचडी करने का ख्याल उस उम्र में कैसे आया, और दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि जब आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी होगी या जब आप

0: नौकरी कर रही थी, उसके छोड़ने में और पीएचडी करने के बीच का जो गैप था, उस बीच में दुनिया बदल चुकी थी। तो वो कैसे आपने कोप अप किया?
1: मैंने पढ़ाई जब मेरी बीटेक खत्म हुई थी वो 89 में ख़त्म हुई थी, और उसके 22 साल बाद मैंने शुरू करी थी एमटेक। वो 22 साल का जो गैप था, पूरी दुनिया बदल चुकी थी। मुझे जो बीटेक में ही पढ़ा था वो भी भूल चुकी थी मैं काफ़ी हद तक। मैंने एंट्रेंस के लिए तैयारी करी थी और एंट्रेंस करके आ तो गई, लेकिन जब पढ़ते थे काफ़ी चीज़ें मुझे साफ होती थी। तो एक चीज़ छोड़ी मैंने, शर्म, कि जो चीज़ नहीं आ रही बेशर्मी से पूछ लो, कोई मजाक नहीं बनता। ये हमारे दिमाग में होता है, खास तौर पे मुझे लगता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी, क्योंकि एक तो बच्चों के सामने ना हम ज्ञानदाता बने होते हैं, हमेशा उनको निर्देश ही दे रहे होते हैं, बेटा मुझे पता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, और ऑल ऑफ अ सडन हम वो हैं कि जिन्हें हम लॉस्ट फील कर रहे हैं, हमें नहीं आता कुछ। तो वो ईगो छोड़ी, ईगो छोड़ के मैंने पूछना शुरू करा, चाहे अपने आसपास के बच्चों के साथ या प्रोफेसर्स के रूम में जाके गूगल करके। तो मुझे सबसे ज़्यादा तो मुश्किल लगा था कि बहुत ज़्यादा, जैसे जब मैंने बीटेक करी थी उस टाइम में कंप्यूटर्स जस्ट आए आए थे, जब एमटेक करने गई तो बच्चा बच्चा उस चीज़ से फेमिलियर था। वहाँ अपग्रेड करने में मुझे उसमें एक कल्चरल शॉक कहूंगी, क्योंकि कल्चर ही बदल चुका था। लेकिन उसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि सिवाय उस ईगो को लेट गो करना कि मैं इस उम्र में मुझे चीज़ें नहीं आती, और कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे बच्चों के साथ वो भी एक अच्छा रहा, क्योंकि जब मैं जाके उनसे अपने फेलियर्स डिस्कस करती थी तो कहीं ना कहीं लगता है हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही हैं, जिनको कोई चीज़ आएगी और कोई चीज़ें नहीं भी आएंगी। तो उससे चीज़ें बेटर हुई, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैं उनसे ही पूछती थी जाके, ये बताओ जरा कैसे करना है, तो हमेशा हम बच्चों को बता रहे होते हैं और यहाँ मैं पूछ रही थी उनसे। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक हर पेरेंट्स को ही एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर चीज़ में परफेक्ट नहीं है, और दिखाने में कोई इसमें हानि नहीं है।
0: बिल्कुल कोई हानि नहीं है, क्योंकि हम बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पेरेंट्स।
1: हाँ
0: पेरेंट्स में जाहिर सी बात है कि दो लोग शामिल होते हैं हम, लेकिन ज़्यादातर माँ के बारे में बात करते हैं, पिता के बारे में बात कम होती है। तो आपके अपने पिता का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल रहा है, और जब आप अपने बच्चों के पिता यानी अपने पति को देखती हैं तो वहाँ क्या फ़र्क नज़र आता है आपको?
1: मुझे फर्क से ज्यादा समानताएं दिखती हैं। जैसे मेरे फादर मेरी मदर को उस टाइम भी बहुत हेल्प किया करते थे, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली सेटअप था हमारा, तो ऑफिस जाने से पहले कोई सब्जी काटती, मम्मी से पूछ लिया, तो उस तरह से हमने बहुत नॉर्मली देखा है कि पापा करते थे। एंड मेरे हस्बैंड भी समहाउ मतलब मेरे को काफ़ी हेल्प करते थे, चाहे बच्चों के साथ, जैसे अगर मैं किचन में ही काम कर रही हूँ, जब खाना बना के बाहर निकलती थी वो बच्चों को खाना खिला चुके होते थे। तो कई बार ये छोटी छोटी हेल्प्स ना बहुत हेल्प कर देती हैं, मतलब एक तरीके से हमारी डिमार्केशन थी कि बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लेकिन पूरा सपोर्ट के साथ। नॉट ओनली दैट, मुझे लगता है कि जैसे पढ़ाई में मैं शायद अपने हस्बैंड से ज़्यादा अच्छी थी, उस चीज़ को स्वीकार करना, अपनी ईगो को बीच में ना रखना, मतलब मेल ईगो कई बार ऐसे अलाउ नहीं करती कि उनकी वाइफ उनसे ज़्यादा पढ़ ले। मेरे हस्बैंड ही कमा रहे थे, और उन्होंने मतलब एमटेक की तो पढ़ाई मेरी फंड भी करी है, चलो पीएचडी में तो आपको फेलोशिप मिलती है, कोई खर्चा नहीं होता, बट जब तीन बच्चों की आप पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हो, और मेरे लिए तो वो शौक था ना, मतलब ऐसा नहीं था कि नेसेसिटी इतनी बड़ी थी, उन्होंने तब भी करा और बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। और कोई उनसे पूछता था कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो बोलते हैं पहले मैं ना सबका बताता हूँ, मेरी वाइफ ये कर रही है और मेरे तीनों बच्चे ये कर रहे हैं। उनकी जो प्राइड थी वो, आई थिंक वो बहुत प्रेशियस होती है, ना केवल बच्चों के लिए, वो हमारे लिए भी। एक और चीज़ नॉर्मलाइज करी कि मेल हो या फीमेल, दोनों की घर के तरफ अपने दायित्व होते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, मैं 22 साल तो घर में ही रह के बच्चे पाले हैं मैंने, फिर भी हर संडे को मैं कहती थी आज मैं देर से उठूंगी, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के साथ मिलके जो मर्जी बनाते थे, चाहे खीरे टमाटर की सैंडविच और कॉर्नफ्लेक्स का ही ब्रेकफास्ट होता था उस दिन, वो पूरा मुझे आराम देते थे। ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे बच्चों ने भी करी हैं। जब मैं एमटेक कर रही थी, एक बार मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम आफ्टरनून में था, सुबह उठ के लास्ट मिनट प्रिपरेशन होती है ना, जब टाइम नहीं होता किसी चीज़ की, बेटा आया मेरे पास, वो आई थिंक 6th क्लास में था, उसने बोला मम्मा भूख लग रही है, तो मैंने कहा कि बेटा आज प्लीज़ कुछ भी कर ले, आज मैं अभी पढ़ रही हूँ। खटर पटर की आवाज़ आ रही थी किचन में, मैं अपने रट्टे मार रही थी, वो आया टेढ़ा मेढ़ा से एक पराठा बना के कि माँ मैंने अपने लिए बनाया और आपके लिए भी बनाया है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी बनाना शुरू किया कि अरे बेटा बना रहा है इतना छोटा सा और मैं नहीं बना सकता, तो वो पूरी फैमिली के लिए ट्रेंड सेटर होता है। प्लस आई थिंक हम कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स जो रख लेते हैं, ये औरतों का काम है या आदमियों का काम है, वो हमारे घर में बहुत पहले ही खत्म कर दिया था, पहले मेरे फादर ने और फिर रही सही कसर मेरे हस्बैंड ने पूरी कर दी।
0: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, और मुझे लगता है हमारे जो श्रोता भी ये सुन रहे हैं उन

0: हफ्ते में पहले 3 दिन से ज्यादा जिम नहीं जाती थी, आजकल मैं 4 दिन जाती हूँ क्योंकि रिकवरी के लिए टाइम देना होता है। और कितना आपको पुश करना है आपकी एज को मद्देनजर रखते हुए, ये आपका ट्रेनर ही बता सकता है। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ कि अच्छा ये सप्लीमेंट मैं ले लूँ, जैसे मैं अभी हायरॉक्स में जा रही थी और किसी हमारे उसमें यंग किसी बच्चे ने जो हायरॉक्स में जा रहे थे उन्होंने बोला कि वो एक कैफीन का कुछ वो लेते हैं जिससे एनर्जाइज फील करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा तो एक मिनट सोच के उन्होंने बोला नहीं आपके लिए नहीं है क्योंकि आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है। और अगर मैं कभी बोलती हूँ मैं नहीं कर पाऊंगी मैं बहुत थक रही हूँ, तो बोले आप ही नहीं हम भी थक रहे हैं। मतलब कहाँ उसको आपकी उम्र के हिसाब से सॉफ्ट होना है कहाँ पर नहीं वो हमें नहीं बता, आपका ट्रेनर बता पाएंगे। और साथ में जैसे अब वो मेरे बहुत कॉन्शियस है इस चीज़ को कि स्मार्ट वॉच से अपनी हार्ट रेट मॉनिटर करो हमेशा, क्योंकि पुश तो करना है अपने आप को लेकिन उस लिमिट तक जहाँ तक हम अपने आप को हार्म ना करें। तो इस उम्र में मैं हर किसी को बोलती हूँ जिम जाओ, लेकिन पर्सनल ट्रेनिंग वो आप ज़रूर लो, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग में आपको पता है कि आप अपने आप को पुश करोगे लेकिन उतना नहीं कि अपने आप को हार्म करो।
1: एक बात जो मैं पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो जिम और ट्रेनर का खर्च शायद नहीं उठा सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिना जिम जाए और बिना ट्रेनर के भी खुद को फिट रखा जा सकता है?
0: बिल्कुल, मैंने शुरू के 2 साल तो वैसे ही किया था, तो मैंने ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं जो कि काफ़ी सस्ती पड़ती हैं, और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस में प्लैंक्स हो गए के, लंजेस हो गए, बर्पीज हो गए, तो इसके सिंपलर वर्जन भी होते हैं जो होते हैं ना कि बिगनर लेवल के, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। अब यूट्यूब पे तो कोई खर्चा भी नहीं है, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। जुम्बा मैंने 1-1.5 साल तो यूट्यूब पे देखकर ही करा था, अगेन कोई खर्चा नहीं है। मैं वहाँ रुकी नहीं, मैं आगे बढ़ गई क्योंकि मैं जिम की तरफ चली गई। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना गुड लेवल ऑफ लिविंग के लिए जो फिटनेस चाहिए वो बिना खर्चे के बिल्कुल आ सकता है। यूट्यूब है, टीवी है, अदरवाइज जो ग्रुप क्लासेस होती हैं जूम पे या इंस्टा लाइव पे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी लिविंग में आप जिम चले जाइए, जिम जाके वहाँ किसी बच्चे को ही पकड़ लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। अगर बोलो कि बेटा हाँ मुझे आज लेग डे कराना है तो बेसिक से तो वो शुरू करा ही देगा, इतना तो हो जाता है। आप में विलिंगनेस चाहिए कि मुझे करना है, रास्ते निकल जाते हैं।
1: अभी थोड़ी देर पहले आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बात कर रही थी, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है और कितनी जरूरी है?
0: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली हमारी मसल्स के लिए होता है, मसल्स को, क्योंकि एक एज के साथ मसल्स वीक होती चली जाती हैं, तो उनको ना हम चैलेंज करते हैं, उनकी लिमिट को पुश करते हैं। जब लिमिट पुश करते हैं तो वो टूटती हैं मसल्स, और जो दोबारा बनती हैं, और दोबारा बनने के लिए आपको प्रोटीन भी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट लोगे आप, ये नहीं कि रोज आप चले गए सेम चीज़ कर रहे हो तो आपकी मसल दोबारा बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ों का जब आप ध्यान देते हो तो जो दूसरी मसल्स आएंगी पहले से ज़्यादा मजबूत आएंगी, फिर आप वही प्रोसेस हमेशा करते जाते हो। अब आप वर्कआउट करोगे अगली बार लगेगा ये तो बहुत आराम से आपसे डंबल उठ रहा है, तो थोड़ा हायर वेट का आप डंबल लोगे, तो ऐसे कर करके आपकी मसल स्ट्रांग होती चली जाती हैं, तो वो होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
1: अच्छा आशु जी, पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से लोगों में जिम के नाम पर एक डर भी दिखाई देता है, आपका क्या कहना है इस बारे में?
0: मैं भी ऐसे रील्स भी देखी हैं जिसमें कोई वर्कआउट करते हुए किसी की आकस्मिक डेथ हो गई, मतलब ऐसे दिखाते हैं ना कि हार्ट अटैक आ गया एकदम से। तो जब मैंने हायरॉक्स का शुरू किया था बहुत कमेंट्स आते थे और मुझे लोग ऐसे एग्जाम्पल्स देते थे, तो मेरे जो कोच हैं लखविंदर सिंह, तो मैंने उनसे पूछा था क्या ऐसा कोई खतरा है मुझ पर, तो उन्होंने बोला कि पहले बताओ आपको कोई बीमारी है, मैंने कहा नहीं, क्या आपने जिम अचानक से शुरू किया है, मैंने कहा नहीं मेरे को 2 साल हो गए हैं, आप ढंग का खाती हो, आप अल्कोहल नहीं लेती, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो हम कहते हैं ना हेल्थ के लिए जो जो चीज़ें होती हैं, और दूसरा हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए स्मार्ट वॉच ऐसे उन्होंने मुझे सजेस्ट करी है कि वो सब आप मॉनिटर करते रहो कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा क्रॉस ना करे, तो कोई आपको खतरा नहीं है। जब मैं इवन रियलिटी शो में गई थी तो उसके बाद हुआ मेरे साथ कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, पैर पे मेरे इंजरी हुई उस सीढ़ी से गिरकर हुई, लेकिन वही कि जिम ज़्यादा करते हैं देखा पैर टूटा, मेरे राइट पैर में एक रॉड डली हुई है क्योंकि 2 जगह फ्रैक्चर हुआ था, ये हुआ था मेरा तब मेरे जिमिंग से कोई लेना देना नहीं था, तब उसी पैर में मेरा पैर भी टूटा, लेकिन अब मैं दौड़ रही हूँ सब कुछ कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि एक बेसिक फिटनेस उस एक्सीडेंट से पहले भी थी और उसके बाद भी अपने ऊपर काम किया, नहीं तो बहुत लोग मैंने देखा है कि पैर में रॉड डला वो सारी जिंदगी लंगड़ा कर ही चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। तो वो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, जिम में भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिमिंग छोड़ दें। खाने से बदहजमी भी हो जाती है कई बार कि हम खाना पीना बंद कर देते हैं, वो तो जीने के लिए ज़रूरी है ना। मैं एक्सरसाइज को सेम कैटेगरी में रखती हूँ, जीने के लिए ज़रूरी।
1: और अंत में आशु जी, मदर्स डे पर आप आकाशवाणी के हमारे श्रोताओं को क्या

0: संदेश देना चाहेंगी, खासकर अपनी उम्र की माओं के लिए और नई उम्र के माओं के लिए भी?
1: माओं के लिए मेरा एक संदेश है कि अच्छी माँ वो होती है जो खुश होती है, और खुश होने के लिए अपनी इच्छाओं पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सैक्रिफाइस करके और हम करते जाएंगे कि परिवार के लिए, हम अंदर से खुश नहीं होंगे। खुश माँ इज़ द बेस्ट माँ।
0: बिल्कुल। तो आशु जी, स्टूडियो में आने और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आशु जैन जी से इस बात के बाद ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 50 की उम्र बुढ़ापे की दस्तक नहीं है, बल्कि लाइफ बिगिंस एट 50। दरअसल ये वो उम्र है जब आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं। तो आज मदर्स डे पर हर माँ के लिए, बल्कि हर उम्रदराज इंसान के लिए यही संदेश है कि खुद को और खुद की सेहत को प्राथमिकता दीजिए। आपका शरीर ही अंतिम समय तक आपके साथ रहेगा और आपको जिंदगी उसी के भरोसे गुजारनी है। बस इसी संदेश के साथ मुझे यानी मुदिता और आकाशवाणी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की विशेष प्रस्तुति FM 100.5 MHz पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप अंग्रेजी और हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Subendu Adhikari becomes the first BJP Chief Minister of West Bengal, takes oath along with 5 cabinet ministers. Political stalemate continues for government formation in Tamil Nadu as TVK yet to reach the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. And now the news in detail. BJP Legislature Party leader Subendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Ground in Kolkata.
4: Ami Subendu Adhikari Ishwarer name shopot koritechi je bidhi dara sthapito Bharater Sangbidhaner proti ami okritrim nishtha o anugotto poshon koribo. Ami Bharater sarbhoumotto o akhandota rokkha koribo.
3: 5 cabinet ministers also took oath along with the chief minister. The cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu.
5: Today is 25 Boishakh, an auspicious day, birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Thakur, which is celebrated across the state. This day has been selected for the swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nobin, and other leaders of the Bharatiya Janata Party present in the swearing-in ceremony. The program started with floral tribute to Kobi Guru Rabindranath Thakur. Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Subendu Adhikari and other dignitaries paid respect to Kobi Guru. Kollan Laha reporting from Kolkata.
3: Prime Minister Narendra Modi took the blessing of 97-year-old Makhan Lal Sarkar, one of the senior most state leaders during the BJP's initial days, at the swearing-in ceremony. In a grand gesture, PM Modi hugged and touched his feet. Sarkar was the aide of Shyama Prasad Mukherjee, the founder of Bharatiya Jan Sangh. BJP has won 207 seats in the 2026 West Bengal Assembly elections, while Trinamool Congress secured 80 seats after ruling the state for 15 years. Speaking to media after taking oath as the Chief Minister, Subendu Adhikari said that political party based on the ideals of Dr. Shyama Prasad Mukherjee doesn't need any certification. He added that those who are still discussing the results, may they be guided by wisdom. He further said that West Bengal has been damaged a lot in education, culture, and there is a huge responsibility on the BJP to rebuild it.
6: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए।

0: Cubs made 147 for the loss of 2 wickets in 14.2 overs. Finn Allen delivered a jaw-dropping batting masterclass to power Kolkata Knight Riders to a commanding 8-wicket victory over Delhi Capitals. Two new suspected cases of hantavirus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts race to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Shubhendu Adhikari becomes the first BJP Chief Minister of West Bengal, takes oath along with 5 cabinet ministers. Political stalemate continues for government formation in Tamil Nadu as TVK yet to reach the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा अब समाचार विस्तार से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई एक रिपोर्ट
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ अनुगत्य पोषण करिब आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष अग्निमित्रा पॉल अशोक कीर्तनिया खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी बधाई दी उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया
4: आज का

0: बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले जो

0: विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
3: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने

0: अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए

सैनिक साथियों जय हिंद। मैं हूं आपकी दोस्त भारती आनंद और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम है सैनिकों के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर सपूत की जिसकी बहादुरी, साहस और देशभक्ति हमेशा हम भारतीयों के दिलों में जीवित रहेगी। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला देशभक्ति गीत। अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म है भुज।

सैनिक साथियों, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है कैप्टन मनोज पांडे को, कारगिल युद्ध के उस नायक को जिन्होंने देश हित में अपने प्राणों की परवाह तक नहीं की। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था। बचपन से ही बेहद साहसी, अनुशासित और आत्मविश्वासी थे मनोज कुमार पांडे। उनके परिवार ने हमेशा उन्हें देश सेवा और ईमानदारी की सीख दी। देश की सेवा करना उनका एकमात्र सपना नहीं था, बल्कि उनके जीवन जीने का लक्ष्य था, और उन्होंने अपने साहस से उसे सच भी कर दिखाया।

श्रोताओं, जब भी भारत के वीर सैनिकों का नाम लिया जाता है तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे को बड़े सम्मान और गर्व से याद किया जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देशभक्त केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से, बलिदान से साबित होता है। कहा जाता है कि जब उन्होंने सेना में भर्ती के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू दिया तब उनसे पूछा गया कि वे सेना में क्यों आना चाहते हैं। उन्होंने बिना झिझक जवाब दिया, मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। वाकई श्रोताओं, उन्होंने अपना ये सपना भी पूरा कर दिखाया।

मनोज कुमार पांडे ने अपनी पढ़ाई सैनिक स्कूल लखनऊ से की। इसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में उनका चयन हो गया। सेना की कठिन ट्रेनिंग के दौरान भी वो हमेशा अपने साथियों के बीच ऊर्जा और नेतृत्व के लिए पहचाने जाते। बाद में उन्हें भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला और आप जानते हैं कि गोरखा सैनिक पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी और अनुशासन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने भी इस परंपरा को पूरी शान से निभाया।

3 जुलाई 1999 की वो रात, खालुबार की पहाड़ियों पर लड़ाई अपने चरम पर थी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे दुश्मनों के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने अकेले ही कई दुश्मनों को मार गिराया और महत्वपूर्ण बंकरों पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसी दौरान वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए। अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया। श्रोताओं, कैप्टन मनोज कुमार पांडे केवल एक सैनिक नहीं थे, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयों से डरना नहीं है। सच्चा साहस वही है जो देश और कर्तव्य के लिए हर चुनौती का सामना करे। आज भी जब कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, तब देश उनके इस बलिदान को याद करता है। उनके शब्द और उनका साहस आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।

श्रोताओं, कारगिल का युद्ध केवल जमीन की लड़ाई नहीं था, बल्कि देश के सम्मान की लड़ाई था। और देश के सम्मान के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी आवाज आज भी उन पहाड़ियों पर गूंजती है, छोड़ना मत। वाकई श्रोताओं, जब भी हम सैनिकों की बात करते हैं, मन, आत्मा, हृदय गदगद हो उठती है। आइए हम सब मिलकर इस अमर वीर सपूत को श्रद्धांजलि देते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वाले का यही बाकी निशान होगा।

सैनिक साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल ठीक 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए एक नई कहानी के साथ। अब कार्यक्रम संपन्न करने की भारतीय आनंद

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, 3 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं, एक और देशगान आप तक पहुंचा रहे हैं जिसे लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक ने।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:10 का समय हुआ है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने नए तराने।

गाने नए तराने, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल, गणेश चंदन सिबे, मुस्तबा अजीज नाजा, अल्तमश फरीदी और फरहान साबरी के स्वरों में। फिल्म का नाम है बाजीराव मस्तानी।

0: अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं लीजिए सुनिए भावेश जोशी सुपर हीरो फिल्म का ये गीत, दिव्या कुमार, प्रगति जोशी और आरोही महात्रे के स्वरों में।

श्रेया घोषाल, नक्कास अजीज के युगल स्वर में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम भारत। लीजिए अब सुनिए अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल को।

ये आवाजें थी अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की फिल्म का नाम बेशर्म। लीजिए अब सुनिए नीरज श्रीधर और साथियों की आवाज में फिल्म भूल भुलैया का ये गीत। समीर की शब्द रचना को संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गाने नए तराने, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान, तुलसी कुमार और साथियों की आवाज़ में। लीजिए अब सुनिए विशाल ददलानी और साथियों को प्राची जलोनी की शब्द रचना को आवाजी है विशाल शेखर के संगीत ने सजाया है। आवाज़ विशाल ददलानी साथियों की है, फिल्म है बागी 3।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 3:50 का समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गाने नए तराने। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में मिथुन का लिखा और संगीत बद्ध किया गीत। फिल्म का नाम है राधे श्याम।

गाने नए तराने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत तुलसी कुमार और केके की आवाज में नीलेश मिश्रा की शब्द रचना को संगीत से सजाया प्रीतम ने फिल्म का नाम रेडी।

0: गाने नए तराने फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में शाम के 4 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार का गठन। भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन किए। यात्रा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। चारधाम यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार जिले में यातायात पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने नैनीताल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान एक चिकित्सक के अनुपस्थित पाए जाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर कार्यालय के नवीनीकृत परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि NIC के आधुनिकीकरण से प्रशासनिक सेवाओं में तेजी आएगी। टिहरी जिले के अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने चंबा धनौल्टी मोटरमार्ग

0: परकाणा ताल के पास वाहनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन ने सरकारी खाद्यान्न से भरे दो वाहनों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा और तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों वादों का निस्तारण किया गया। हरिद्वार से शुरू हुई विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा टिहरी जिले में पहुंची। इस अवसर पर अंजनी सेन, रोड धार और मलिहथा सहित कई स्थानों पर श्रद्धालु ने डोली का भव्य स्वागत किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं 4000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 4:02 हुए हैं। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित डी के दातार का वायलिन वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग यमन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे पंडित डी के दातार का वायलिन वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग यमन। श्रोताओं, इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 4:30 का समय हुआ है। फिल्म संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक कलाकार।

एक कलाकार सुन रहे सभी श्रोताओं को प्रणाम नमस्कार। भारती आनंद की ओर से श्रोताओं, किसी भी फिल्मी गीत की सफलता केवल उसके बोल या संगीत पर ही निर्भर नहीं होती, बल्कि आवाज़ पर भी निर्भर करती है। आवाज़ ही गीतों में भावनाएं भरती हैं और श्रोताओं के दिलों तक उस गीत को पहुंचाती है। भारती

सिनेमा में पार्श्व गायन यानी प्लेबैक सिंगिंग की जो परंपरा है उसने संगीत को नई पहचान दी। यूं तो कलाकार पर्दे पर अभिनय करते रहे, लेकिन जब गायक ने उन्हें अपनी आवाज़ दी तो कई गायकों की आवाज़ उस खास अभिनेता की पहचान बन गई। आज हम ऐसी ही आवाज़ के बारे में आपसे बातचीत करेंगे और वो आज के इस कार्यक्रम के कलाकार भी होंगे, लेकिन सबसे पहले उन्हीं पर फिल्माया ये गीत सुनते हैं। उनकी आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम सुजाता।

श्रोताओं, इस मधुर आवाज को सुनकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हिंदी सिनेमा का वो महान कलाकार जिसकी आवाज में दर्द था, मोहब्बत थी और अद्भुत मिठास भी। जी हाँ, वो थे तलत महमूद।

तलत महमूद के साथ ये आवाज थी मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम आदमी। श्रोताओं, तलत महमूद को लोग एक बेहतरीन गायक के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कई फिल्मों में

अभिनय भी किया था। उनकी पहली चर्चित फिल्मों में शामिल थी आरजू। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, दिले नादान, डाक बाबू, वारिस, रफ्तार, दिवाली की रात, एक गांव की कहानी, सोनी की चिड़िया। हालांकि अभिनय में उन्हें उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली जितनी दर्शकों को पसंद आती थी, बल्कि उनके संगीत में, उनके आवाज़ में, उनके गीतों ने उन्हें सफलता के ऊंचे शिखर तक पहुंचाया।

0: तलत महमूद और मोहम्मद रफ़ी के साथ साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम बारिश। श्रोताओं, 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में जन्मे तलत महमूद ने अपने करियर की शुरुआत गायकी से की। उनकी मखमली आवाज़ ने जल्द ही संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बना ली। उनकी असली पहचान उनकी गायकी थी, क्योंकि उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि हर गीत सीधे दिल में उतर जाता। उन्होंने अपने समय के दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया, मदन मोहन, नौशाद और एसटी बर्मन, और इस जोड़ी ने बहुत ही कमाल का गीत संगीत हमें दिया।
1: Chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola, chola

श्रोताओं, तलत महमूद की गायकी की सबसे बड़ी खासियत थी सादगी और एहसास। यही वजह है कि आज भी उनकी गजलें और गीत उतनी ही लोकप्रिय हैं। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 9 मई 1998 को मुंबई में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है और जिंदा रहेगी।

श्रोताओं, आज हमने बात की पार्श्व गायक और अभिनेता तलत महमूद की। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर ठीक 4:30 पर मिलेंगे एक और कलाकार के साथ। और अभी कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप तक पहुंचा रहे हैं तलत महमूद और शमशाद बेगम के युगल सुर में। फिल्म है बाबुल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। आज के कलाकार पार्श्व गायक और अभिनेता तलत महबूब। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव OTT और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की

0: सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाक के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव M.A. बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल के तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृत पत्रिका और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर यानी शाम 5:10 पर सुनिएगा युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा शाम 5:45 पर, जिसके अंतर्गत सुनिएगा गढ़वाली कुमाऊनी फिल्म अभिनेत्री अंकिता परिहार से विनय ध्यानी की बातचीत। किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7 बजे, जिसके अंतर्गत आज सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।

आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद का समय रहेगा शाम 7:50 पर। सुनिएगा कार्यक्रम आपका पत्र मिला, रात्रि 8 बजे। प्रस्तुति रमेश चंद्रा और कल्पना पंकज की रहेगी। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा विविध कलाकारों की आवाज में भजन।

कल रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट, और कल रात्रि 10 बजे सुनिएगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कल प्रातः 7:30 पर शैल संगीत के अंतर्गत सुनिएगा द्वारिका प्रसाद की आवाज में गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा कल प्रातः 8:30 पर।

कल प्रातः 9 बजे सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर रिश्तों की मिठास आकाशवाणी के साथ। विचार आपके, गीत हमारे, परिकल्पना मंजुला नेगी की रहेगी। कल दोपहर 12:12 पर आप सुनेंगे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। सुनिएगा बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंडल कल दोपहर 12:30 पर। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

एक और नया दिन, एक और नई शाम लेकर हाजिर हैं युवाओं का कार्यक्रम खास। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विनायक तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस युववाणी कार्यक्रम में। उम्मीद है दोस्तों आपके आज की ये शाम काफी अच्छे से बीत रही होगी। तो चलिए दोस्तों आपके शाम को और खूबसूरत बनाते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस कमाल के गीत को सुनते हुए, जिसको हमने लिया है फिल्म एनिमल से और जिसे आवाज दी है राघव चैतन्य और प्रीतम ने।

दोस्तों, आज का दौर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। कॉलेज एडमिशन हो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना हो, किसी कंपनी में जॉब के लिए रिज्यूमे भेजना हो, प्रोफेसर से बात करनी हो या किसी ऑफिशियल जानकारी के लिए संपर्क ही क्यों ना करना हो, हर जगह ईमेल की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ ईमेल आईडी होना काफ़ी है? नहीं दोस्तों, सही तरीके से ईमेल लिखना भी एक महत्वपूर्ण स्किल है। दोस्तों, आज कई युवा सोशल मीडिया पर तो बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल ईमेल लिखने की तो वहां अक्सर गलती हो जाती है। कई बार लोग सब्जेक्ट खाली छोड़ देते हैं, कई बार हाय लिखकर पूरा मैसेज भेज देते हैं, और कई बार भाषा इतनी अनौपचारिक होती है कि सामने वाले पर गलत प्रभाव पड़ जाता है। याद रखिए दोस्तों, आपका ईमेल आपकी डिजिटल पर्सनैलिटी को दिखाता है। कई कंपनियां और संस्थान आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ईमेल के जरिए ही जज कर लेती हैं। अगर आपका ईमेल साफ, प्रोफेशनल और व्यवस्थित हो तो सामने वाले पर आपका प्रभाव काफी अच्छा पड़ता है। अब सवाल यह है कि अच्छा ईमेल आखिर होता कैसा है? दोस्तों, एक प्रोफेशनल ईमेल के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, जैसे कि सबसे पहले और सबसे जरूरी सब्जेक्ट लाइन। ये सबसे पहला हिस्सा होता है सामने वाला जो पढ़ता है, इसलिए सब्जेक्ट छोटा, स्पष्ट और विषय से जुड़ा होना चाहिए, जैसे एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप या रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट गाइडेंस। सब्जेक्ट देखकर ही सामने वाले को पता लग जाना चाहिए कि ईमेल किस बारे में है। दूसरी जरूरी चीज है दोस्तों, प्रॉपर ग्रीटिंग। ईमेल की शुरुआत हमेशा विनम्र तरीके से करें, जैसे कि डियर सर, मैडम, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर या हेलो टीम। दोस्तों ध्यान रखिए, हे, हाय, बडी जैसी भाषा ऑफिशियल ईमेल में सही नहीं मानी जाती। तीसरी जरूरी चीज है दोस्तों, क्लियर एंड शॉर्ट कंटेंट। ईमेल में अपनी बात सीधे और साफ तरीके से लिखें। बहुत लंबे पैराग्राफ्स लिखने से सामने वाला बोर हो सकता है। याद रखिए, प्रोफेशनल ईमेल्स आर शॉर्ट, क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल। और चौथी और आखिरी चीज है दोस्तों, क्लोजिंग लाइन। ईमेल खत्म करते समय धन्यवाद जरूर लिखें, जैसे कि थैंक यू, रिगार्ड्स, बेस्ट विशेज, और उसके नीचे अपना नाम और जरूरी जानकारी लिखें। कई लोग तो इसमें सिग्नेचर भी ऐड करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ईमेल राइटिंग के बारे में हमने बहुत बात कर ली, लेकिन इन बातों बातों के बीच क्यों ना ले लिया जाए एक ब्रेक और सुन लिया जाए एक बहुत ही बेहतरीन गीत धुरंधर फिल्म से। तो आइए सुनते हैं।

दोस्तों, शहजाद अली, सुभादीप दास और शाहिर लुधियानवी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। और दोस्तों, इस म्यूजिकल ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ईमेल राइटिंग की। दोस्तों, बात करते हैं ईमेल में ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ की, सीसी और बीसीसी। दोस्तों, ये वो दो ऑप्शन हैं जो आपको मेल करते समय रिसिपिएंट के नीचे दिखते हैं। कई युवा इन दोनों के बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों, सीसी यानी कि कार्बन कॉपी। जब आप किसी व्यक्ति को सिर्फ जानकारी के लिए ईमेल में शामिल करना चाहते हैं, तब सीसी का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा जाता है उसका नाम बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता। ये फीचर खासकर तब उपयोगी होता है दोस्तों, जब आप एक ही ईमेल कई लोगों को भेजना चाहते हैं और उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन रखना चाहते हैं। दोस्तों, आज हर क्षेत्र में, चाहे वो मीडिया हो, आईटी हो, सरकारी नौकरी, बिजनेस, रिसर्च, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, हर जगह ईमेल कम्युनिकेशन की अहम भूमिका है। अगर आपकी ईमेल राइटिंग अच्छी है तो आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होती है, इंटरव्यू और इंटर्नशिप के मौके बढ़ते हैं और आपके करियर में आगे बढ़ने की संभावना भी कई ज्यादा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आता है कि ईमेल राइटिंग स्किल्स को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, कुछ आसान तरीके आपको फॉलो करने होते हैं, जैसे कि रोज प्रोफेशनल ईमेल्स पढ़िए, छोटे छोटे ऑफिशियल मेल लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतरीन हो सके, ग्रामरली जैसे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। सेंड करने से पहले दोस्तों, हमेशा ईमेल दोबारा जरूर पढ़ें और रिवीजन करें, हमेशा प्रोफेशनल भाषा का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में ईमेल सिर्फ एक मैसेज नहीं रह गया बल्कि आपकी प्रोफेशनल पहचान बन चुकी है। एक अच्छी ईमेल आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है, इसलिए आज से ही अपनी ईमेल राइटिंग स्किल्स पर काम करना शुरू कीजिए, जो कि हमने आपको टिप्स बताई, क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की बेहतर करियर की नींव बनती है। तो दोस्तों, बहुत प्रोफेशनल बात कर ली, चलिए अब थोड़ी म्यूजिकल टॉक भी कर लेते हैं। आइए सुनते हैं केके का आवाज में ये बहुत ही बेहतरीन गीत।

दोस्तों, आज युवाओं की जिंदगी में बाइक और कार सिर्फ एक साधन नहीं रह गए, बल्कि जरूरत और जिम्मेदारी दोनों बन चुकी हैं। कॉलेज जाना हो, ऑफिस पहुंचना हो, दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करनी हो, या रोजमर्रा के काम ही क्यों ना करनी हो, गाड़ी हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अक्सर हम गाड़ी चलाना तो सीख लेते हैं, पर उसकी सही देखभाल यानी कि मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते। याद रखिए दोस्तों, अच्छी तरह मेंटेन्ड गाड़ी ना सिर्फ ज्यादा समय तक चलती है, बल्कि आपकी सेफ्टी और पैसे दोनों बचाती है। सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए तो बात आती है सर्विसिंग की। कई युवा तब तक गाड़ी सर्विस सेंटर नहीं ले जाते जब तक कोई बड़ी दिक्कत ना आ जाए, लेकिन ये आदत आगे चलकर भारी खर्चे पर बदल सकती है। दोस्तों, समय समय पर सर्विसिंग करवाने से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहती है, माइलेज भी अच्छा मिलता है और अचानक ब्रेक डाउन होने की संभावना भी कई गुना कम हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी सबसे जरूरी चीज की, जो कि है इंजन ऑयल की। दोस्तों, इंजन ऑयल गाड़ी के इंजन के लिए बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे शरीर के लिए खून। अगर समय पर ऑयल चेंज नहीं होगा तो इंजन पर दबाव बढ़ेगा और उसकी लाइफ भी कम होती चली जाएगी। इसलिए तय किलोमीटर या समय के अनुसार इंजन ऑयल बदलवाना जरूरी है। इसके लिए आप अपने यूजर मैनुअल को भी रेफर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही ऑयल इस्तेमाल करें। दोस्तों, गाड़ी की सफाई भी मेंटेनेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई लोग सिर्फ बाहर से गाड़ी धो लेते हैं, लेकिन अंदर की सफाई पर ध्यान नहीं देते। धूल, मिट्टी और गंदगी धीरे धीरे धीरे गाड़ी के पार्ट्स को नुकसान पहुंचाती रहती है। नियमित सफाई से दोस्तों गाड़ी नई जैसी तो दिखती है, जंग लगने की संभावना भी कई गुना कम हो जाती है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

तो ऑटोमेटिकली बेहतर बन ही जाता है। दोस्तों, गलत टायर प्रेशर आपकी सेफ्टी और माइलेज दोनों को प्रभावित कर सकता है। अगर टायर में हवा कम या ज़्यादा हो तो ब्रेकिंग पर असर पड़ता है, टायर्स जल्दी घिसते हैं और एक्सीडेंट का खतरा भी कई गुना बढ़ सकता है। इसलिए समय समय पर टायर प्रेशर और टायर कंडीशन ज़रूर चेक करें। इसके लिए आप पेट्रोल पंप में भी फ्री में टायर की हवा चेक करा सकते हैं। दोस्तों, ड्राइविंग हैबिट्स भी सबसे ज़रूरी मायने रखती है। तेज़ एक्सेलरेशन, अचानक से ब्रेक लगाना और लगातार रफ या रैश ड्राइविंग करना, ये आदतें गाड़ी के इंजन और ब्रेक्स दोनों को नुकसान पहुंचाती है, साथ ही साथ आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। स्मूथ ड्राइविंग ना सिर्फ सुरक्षित होती है बल्कि फ्यूल भी बचाती है, जिससे माइलेज ऑटोमेटिकली अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए व्हीकल मेंटेनेंस या गाड़ी की मेंटेनेंस करना सिर्फ जानकारी नहीं रहेगी बल्कि एक जिम्मेदारी भी बन चुकी है, क्योंकि ये डेली यूज़ की चीज़ बन चुकी है। अगर आप अपनी गाड़ी का सही से ध्यान रखते हैं तो आपका सफ़र सुरक्षित रहेगा, खर्च कम होता रहेगा और आपकी गाड़ी लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में भी रहेगी, जिससे उसकी रीसेल वैल्यू भी बढ़ेगी। याद रखिए दोस्तों, गाड़ी की छोटी छोटी देखभाल बड़े खर्चों से बचा सकती है। फिलहाल दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको सत्यमेव जयते 2 फिल्म से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज के समय में विदेश यात्रा सिर्फ एक सपना नहीं रहा। कई युवा पढ़ाई, नौकरी, रिसर्च, ट्रैवलिंग, इंटर्नशिप्स और घूमने फिरने के लिए विदेश जा रहे हैं। लेकिन विदेश यात्रा जितनी रोमांचक होती है, उतनी ही जरूरी होती है उसकी तैयारी या प्लानिंग। अगर प्लानिंग अच्छी हो तो यात्रा आसान, सुरक्षित और बजट फ्रेंडली बन सकती है। इसलिए अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, विदेश यात्रा में जाने से पहले कुछ ज़रूरी टिप्स की। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पासपोर्ट और वीज़ा की। दोस्तों, पासपोर्ट आपकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान होता है। विदेश यात्रा की पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ ही पासपोर्ट है। यात्रा की योजना बनाने से पहले अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी ज़रूर चेक कर लें। कई देशों में कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी ज़रूरी होती है। इसके साथ ही वीज़ा की जानकारी भी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। हर देश के वीज़ा रूल्स अलग अलग होते हैं। कुछ देशों में टूरिस्ट वीज़ा, कुछ देशों में स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जिस देश में आप जाना चाहते हैं उसके ऑफिशियल रूल्स पहले से समझ लेना बेहतर होता है। दोस्तों, एडवांस बुकिंग पैसा बचा सकती है। कई बार लोग आखिरी समय में फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं जिससे खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप पहले से प्लानिंग करें और एडवांस में एयर टिकट्स बुक कर लें तो अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उस देश के बारे में बेसिक जानकारी लेने की। दोस्तों, जिस भी देश में आप जाना चाहते हैं वहाँ की ज्योग्राफी, मौसम, कल्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और लोकल रूल्स की बेसिक जानकारी तो होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए अगर किसी देश में बहुत ठंड पड़ती है और आप बिना तैयारी के वहाँ पहुँच जाते हैं तो परेशानी हो सकती है। आज तो YouTube ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स और टूरिज्म वेबसाइट से काफ़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, नेटिव लैंग्वेज की थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत काम आती है और साथ ही ज़रूरी भी बन जाता है। हर देश में अंग्रेज़ी उतनी आसानी से नहीं बोली जाती। ऐसे में अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज के कुछ बेसिक वर्ड्स जैसे कि हेलो, हाय, थैंक यू, वेलकम आ जाएं तो कम्युनिकेशन काफ़ी आसान हो जाता है। दोस्तों, सेफ्टी का ध्यान रखना तो सबसे ज़रूरी होता है। विदेश यात्रा के दौरान अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट की फोटोकॉपी और डिजिटल कॉपी रखें। पासपोर्ट और वॉलेट सुरक्षित रखें। अननोन लोगों पर जल्दी से भरोसा करने से बचें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास ज़रूर रखें। इसके अलावा इंटरनेशनल रोमिंग, इंटरनेट एक्सेस और ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सबसे ज़रूरी चीज़ की बात करें तो वो होता है बजट मैनेजमेंट। बजट मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है। विदेश यात्रा में करेंसी एक्सचेंज रेट्स और डेली एक्सपेंसेस का अंदाज़ा होना तो चाहिए ही। हर खर्च को सोच समझ कर प्लान करें ताकि यात्रा इंजॉयबल भी रहे और फाइनेंशियल बर्डन भी ना बने। दोस्तों, विदेश यात्रा सिर्फ घूमने का अनुभव नहीं होती बल्कि नई संस्कृति, नए लोगों और नई सोच को समझने का मौका भी देती है। अगर तैयारी अच्छी हो तो आपकी यात्रा सुरक्षित, आरामदायक और यादगार बन जाती है। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, स्मार्ट ट्रैवलर वही है जो यात्रा से पहले सही जानकारी और सही प्लानिंग करता है। तो चलिए दोस्तों, प्लानिंग करते हुए मूड को करते हैं फ्रेश सुन के ये गीत बेनी दयाल की आवाज़ में।

दोस्तों आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं खत लिखकर। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल देहरादून और हमारा पिन कोड है 248001। साथ ही दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com और साथ ही आप अपने विचार हमको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। दोस्तों इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें। मैं विनायक तिवारी मिलूंगा आपसे फिर युववाणी कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाणी, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर शाम के 5:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

नमस्कार, सेवा सौली ग्राम जगत कार्यक्रम सुन वाला हमारा सभ्य सुन धरो तय पर दगड़िया शांति बिंजोला त्रपटी। उम्मीद करनु छो आप लोग अपरा पर डेरो मा राजी खुशी वेला अपनों का दगड़। हमारे ते सदनी भगवान बद्र की दारजी से प्रार्थना रांध कि आप लोग राजी खुशी रहया, निर्वगी रहया, स्वस्थ रहया। आजक कार्यक्रम बाबत आप तक बता दिन कि आजक कार्यक्रम मा आप तक सुनौला पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता गढ़वली कुमाऊनी फिल्म अभिनेत्री अंकिता परिहारा दगड़ हमर दगड़िया विनय ध्यानी की छुई बत। यहाँ के अलावा रंत रविवार भी आप सुनेला, आप अग दगड़ छुई बत्ती भी हूंद रहा बीच बीच में, और द्वि बन के समाचार आप रोज ही सुनदन। एक बेर आप हिंदी में सुनदन और एक बेर आप गढ़वल में सुन दिन। कुल मिले एक बनो मतलब च कि कार्यक्रम ग्राम जगत अपने आप में एक सगत कार्यक्रम च, तो हमारू दगड़ बनाए के रखिया भारे टक लगे एक सुनरा रेडियो। और शुरुआत करना चाह कार्यक्रम की घंडियाल देवता का ये सुंदर सी गीत से, जैत स्वर्दियों च जितेंद्र पंवार को।

0: चरणु मां शवल गांदू कुलदेव घंड्याल। ये स्वर छाया जितेंद्र पंवार को आपन सुंदर सी घंड्याल देवता को गीत सुन उम्मीद आनंद होला आपते। और अब जनके मन पहले आप बताए छा कि पूर्व प्रसारित एक भेंटवार्ता हमार कार्यक्रम में लई छ, तो आप सुनना गढ़वाली कुमाऊनी फिल्म अभिनेत्री अंकिता परिहारा दगड़ हमर दगड़ विनय ध्यान की छुईबत त लिया सुना।
1: तो बंधु नमस्कार, मैं छो विनय ध्यानी और आज कार्यक्रम में हमर दगड़ मेहमान छन फिल्मी दुनिया बटे के। ओहो, आप सोचण बट गयो कई फिल्मी दुनिया बटे अपन उत्तराखंड का जो गढ़वाली कुमाऊनी सिनेमा च वक बटे की हमर दगड़ अभिनेत्री सुश्री अंकिता परिहार छन। अंकिता जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग।
2: नमस्कार।
1: खूब चन राजी खुश है?
2: बहुत भल।
1: बिगरेली मुखड़ी है तो जब बोले जान ना कि हीरोइन छन तो होनो चु भाई है ना बिगरेली मुखड़ी और वही छन छना आपक हैंसी। अच्छा, ये सफर कन मां शुरू करी आपन की मिल अभिनय का क्षेत्र में जान?
2: यो सफर एक बहुत रोमांचक कहानी छू, तो पहली में अपन बार में कुछ बतून चानू। मेर जो पढ़ाई छू कॉन्वेंट स्कूल बटी है, मैं बीकॉम करने वाली छी, तो मीन देखो कि संगीत एक क्षेत्र हूँ और मेरे आवाज ले ठीक ठाक छी, तो मीनू बीकॉम फॉर्म फाड़ बेर बीए करो।
1: अच्छा,
2: संगीत लीजिए।
1: अच्छा,
2: तो तस तो मेर एंट्री है। फिर मीन एमए करो, तो हिंदुस्तानी वोकल में मके 5 साल शिक्षा ली मीन।
1: अरे वाह।
2: तभी बाद मी जो कॉलेज में पढ़ने छी वह मीन बीए

0: लेवल ले जा। मैंने कहा ठीक है, प्रिंसिपल से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गर्वल बात छू और तुम जाओ और आ जाए नौकरी में वापस। मैंने कहा ठीक छू। मैं गई और जब 20-25 दिन मैंने वो कैमरा दगर डायरेक्टर और डीओपी दगर बिताई, तब मके असली मकसद पता चलो कि जस नाट्य शास्त्र में लिखी छू कि जो अभिनय छू उस नृत्य और गायन और वादन का मिश्रण छू। मेरे बचपन बड़ी ट्रेनिंग ले तसी हो कि डांस ले सीखी, कथक ले सीखी, फिर हिंदुस्तानी वोकल में लाएगी, फिर वी गायन लीजिए हमको हारमोनियम तबला ले चाहे, तो ट्रेनिंग ही अच्छी। और फिर मुझे पता चलो कि मेरे असली मकसद अभिनय छू और तब बटी मीन आप होते मैं झोंकते।
1: क्या बात, बहुत सुंदर यात्रा आपकी और हम आप तो बहुत बहुत शुभकामना देवला। लेकिन एक बात एक माँ हम जरूर बोलला कि अभिनय की यात्रा पर ऐथर चर्चा करला, लेकिन आपन बोल छो कि संगीत की शिक्षा ले और अभिनय का दगड़ भी ये बहुत जरूरी छे कि सुरीलू तो होनी चाहिए। एक गीत कोई अपन फिल्म को हो चाहे कोई भी गीत आप तब 2-4 लाइन आप हम तो जरूर सुने तो जरा सुई गौतम भी रसायण आ जाए है ना।
0: ठीक छू, तो मेरी जो पहली फिल्म थी डेब्यू फिल्म माटी पहचान वीक एक हरेला गीत थी।
1: अच्छा,
0: हरेला पर्वक और वो बहुत भल गीत थी तो मैं कोशिश करूँ।
1: स्वागत
0: जी।

0: जागी
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, सुरमा छे छिन्न और कंदरुण तबे भल लगण। हमारा
0: धन्यवाद।
1: सुंदर अभी ये बात हम किताब परिहार का दगड़े हमारे यूं छुई बतों तो सुनना छिन रसियाण भी लेना होला। जो मुख्य बात छ आपक दगड़ा छुई बत का न को यी छ कि गढ़वली कुमाऊनी फिल्मों में हमार जो आज की नारी छ पहाड़ की महिला छ वही तो आप कख देख दे वो उनकी को तस्वीर समझ में आनी छ।
0: ये लीजिए, मैं द्वि बात बोलूं, जिस हर सिक्के द्वि पहलू होनी। पहली मैं भल बात बतूनी। आजकल चिली जो छन वो हमार इंडस्ट्री बटी जुड़नी, उनर भावना जुड़नी। वो यहाँ काम करण लीजिए भैर बैंगलोर दिल्ली और मुंबई बटी या रूनी और काम करनी, यो सबसे भल बात छू कि कम से कम काम हुनो और हमार युवा पीढ़ी हमार दगड़ जुड़नी। अब दूहर बात यो छू कि जस फिल्म आजकल बननी और जतू फिल्म ला मीन करी उमें बटी मेयर जो अनुभव छू कि जस ज्यादा से ज्यादा जो हम दिखानी फिल्म में उछन फिक्शन फैमिली ड्रामा। अब उमें क्या छू कि जो महिला छू ना वो ज्यादातर पीड़ित तरफ रह जाने, तो जो शैनी बैग छू वो लहगे तो डांड मारने है। ठीक छू, डांड मारन स्वाभाविक छू, पर हम साहसी छन, पहाड़ औरत बहुत साहसी छू, तो उनन के बहुत पीड़ित दिखन दिखन ना बहुत साल हैगी। अब समय बदलना, तो जस हम कोई मोटिवेशनल स्टोरी ले सकनी, हम कुछ ब्रेव स्टोरी ले सकनी कि कस हमार पहाड़ औरत साहसी छू, कस दिनचर्या में वो अपन योगदान देनी, कस वो एक प्रधान छू घरत जो निर्णय लेनी फैसला लेनी जीवन के संतुलित करनी, कस परिवार के संतुलित कर सकना। तो उस फिल्म आई बनन बाकी छन और मैं बहुत बहुत उम्मीद छू मके कि तसले फिल्म जरूर बन ली, और अगर मके कोई मौका मिलल तो मैं जरूर यस फिल्म बनू।
1: क्या बात, हम तो भी चेंज उम्मीद हां। एक बात छ कि जितना भी फिल्म का लोग छने जो से हमर बातचीत होंद उ बोलन यो छ कि सब पहाड़ की नारी का समण खैरी छन बिपदा छन दुख छ जनाब बना चिन्ह कि सगन ही तो कख रहे अब कख छे ना
0: बिल्कुल
1: है ना। तो अब हम नई तस्वीर भी समण में रखा। अच्छा, एक बात यह हुई कि ओणवल समय हो सकत आपक माध्यम से कुछ नई तस्वीर हम तय नई फिल्म महिला प्रधान फिल्म देखने को मिला ली। लेकिन एक बात जो एक पहले समय में छा है कि नौनियों थे खास करी कि हम ये क्षेत्र में जाने की उतनी खुली छूट नहीं दी ना। आपका अनुभव क्या रहे अब और ऐसा क्या होना चाहिए?
0: अब तो चली चांद में लहेगी, बस अब फिल्म में दिखोने लीजिए योर स्पेस रिगे नदर चली। आजकल के काम नहीं करनी, चल चली में के अंतर नहीं छू। अब यही हम उनके अपन सिनेमा द्वारा

0: दिखण छू, अब मिले इंतजार करनू, अब इंतजार जरा ठुल है जालो तो मी बनाए दुल फिल्म।
1: ठीक छे, ठीक छे। अच्छा, जो हमर गढ़वाल फिल्मों को निर्माण छे ना, वही का बाबत आपक क्या अनुभव छे कि उखमा भी वो जो एक सत्ता छे या वो जो एक पूरो क्या बोल देना क्रू, वही क्रू मा आप तो लगो छे कि हमर माता बहन भी आना छे ना, चाहे वो कोरियोग्राफर का तौर पर का देखना छे, कुछ भीड़ ज्यादा दिखेनी?
0: अरे बहुत भीड़ दिखने, अब सब मेकअप आर्टिस्ट ज्यादातर चिली हैगी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर चिली हैगी,
1: ठीक,
0: और सुशीला दी डायरेक्टर लेछन,
1: पुराना चन,
0: तो मतलब अब महिलाओं योगदान बढ़ने और भली भांति बहुत भल काम करने।
1: एक बात और, कुछ दिनों अपना माता बहनों का छोड़ बेटे की या ऊ छोटी नोनियों का छोड़ बेटे का आपसे वो भी जाना छन कि मैं भी बन जाऊं जरा, आजकल तो ये सोशल मीडिया में ककर का पहुंच गए ना मनो नहीं ना, लेकिन क्या सुरक्षा का बाबत आप कुछ भरोसा दिला सकते हैं ना कि चाहे वो सोशल मीडिया च चाहे वो सिनेमा च हमारी नौनी हमारी महिला कितना सुरक्षित छ?
0: ये लीजिए, मैं यो कुल की बात सिनेमा की नहीं छू, बात उत्तराखंड या कोई प्रांत तक नहीं छू, मेरे हिसाब से सुरक्षा हमार खुद की जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल ठीक,
0: अगर आप ठीक छन तो तुम्हारे लीजिए दुनी ठीक छू। मैं आज बहुत गर्व लियो बात को, उत्तराखंड इंडस्ट्री में मके इतु साल हैगी, मके कोई ले परेशानी नहीं है।
1: बहुत सुंदर।
0: सुरक्षा मजी अगर हम बात करूं तो यहाँ महिला बहुत बहुत सुरक्षित छन, और बस इतु मैं कौन चाहू कि जतु ले चेली चल ले। आजकल इंस्टाग्राम में यूट्यूब में अपन नई नई जो कंटेंट डालनी उनन के या जरूर कोशिश करन चाहें। देखो अगर तुम्हार घर गंद छू तो तुम कोला कि घर में गंदगी छू तस नहीं चलो ना, तुम आओ तुमले जिम्मेदार छा और तुम गंदगी साफ करो।
1: बिल्कुल,
0: तुमन के सब ऊ तुम्हारे हाथ खुद छन, तो तुम क्रिटिसाइज करो या अप्रिशिएट करो पर तुम वीक हिस्सा बनो।
1: क्या बात,
0: तो तुम आओ ऑडिशन दो और अपन जितुले पोटेंशियल छो वो उत्तराखंड लीजिए योगदान दे।
1: अंकिता पर यार सिर्फ सुंदर अभिनेत्री नीच भाई है, सुंदर विचारों वाल विचार अपन बात था ठोस तरीके से रखने वाल बात, बहुत सुंदर लग रहा। अच्छा एक बात और, गीत गवाई याल मिला आपने और महिला अभिनेत्री से हम एक किला की यो एक इन माध्यम से अभिनय को जखमा रेडियो नाटकों की और हमारा जो रूपक हुंदेन उखमा बहुत जबरदस्त एक विधा छे रेडियो नाटक की, तो वही हिसाब से हम आपसे जान चाहला कि आपक उस सबसे जबरदस्त दृश्य फिल्म को वो डायलॉग जो आपन जिकुड़ बेटे बोलो लू जो आप था पसंद छ, तो जरे से अगर वे अभिनय की भी एक छाप हमारा सुन द्वारा सुन सके तो कोई छोटू एक डायलॉग जे कुण हम फिल्म में डायलॉग ही बोल दो आप तो कोई याद आने
0: होए। जब पहली फिल्म थी डेब्यू फिल्म वो बहुत यादगार फिल्म छू मेरे लीजिए और वी वजल में आज यहाँ भैरो, तो वी के एक डायलॉग थी जहाँ जो मेर करेक्टर छी माधुरी वो अपन कॉलेज में एक भाषण देना छी और टॉपिक छी पलायन, तो वो तस स्टार्ट हो कि पलायन एक बहुत गंभीर समस्या छू, यो शब्द मके नाम छिना पे कचोरी नो, आज पहाड़ में अपन टूटी टाटी मकान देख बेर मेर बहुत पीड़ा हूँ तस कबेर कुछ डायलॉग छी, और अच्छा। और वो बुलान में मैं बहुत बार डार मारी
1: अच्छा।
0: तो मके ये याद छू कि
1: अंकिता रोकना मिला आपका, अब जितना सुंदर आप खिलखिलाए हंसना छन गजब छ, लेकिन क्या कभी गंभीर जो भूमिकाएं छन उनका प्रति भी आपक रुझान रहे या सिर्फ अपन यही तरीका यानी कुल मिलाकर आपके किरदार था ढूंढ दिन अंकिता के भीतर?
0: उसी में बतून चाहूं कि मैं बहुत हमेशा हस्ती खिलखिलाती रहती, लेकिन मेरे जो उसी स्वभाव छू उसी बहुत गंभीर छू, जतुले गंभीर करेक्टर छन या परिस्थिति छन उके पर्दा में धरण लीजिए, मैं कह मतलब बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हूँ किले की मैं बहुत ऑब्जर्वेंट छू लाइफ में, तो कहकर दुख दर्द में शामिल हूँ मैं बहुत भल लागू, तो उनके सुड़न उनके दिखन की कस डांड मारनी किले डांड मारनी कतू डांड मारनी और मतलब क्या वजल यो डांड मारनी, तो यो सोच सोच बेर इतु गंभीरता छू मेर उमें
1: की
0: सिनेमा में ज्यादा दिक्कत नहीं है।
1: क्या बात, यानी हर चुनौती का खातिर तैयार हर भूमिका का खातिर तैयार, तो अब तक को जो सफर छे वो बहुत शानदार रहे आपको।

0: जगतलाल डोगरा का स्वर मा आपन सुण्यो जौनसारी गीत और अब दगड़ियों एक खास छुई लगनो। वंदे मातरम का गौरवशाली 150 वर्ष हमन पूर करेलिन। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं च बल्कि देश की आत्मा को उद्घोष च। महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय न ये की रचना 1870 का दशक में कर छे जैते बाद में उनका उपन्यास आनंद मठ में जगह मिल। जबर यू गीत लिखे गए वे बेर भारत अंग्रेजों की दास्ता से जुझणु छ और ये गीतन वे बेरी देशवासियों का वास्ता संजीवनी को काम करे किले की ये गीत मां भारत की संस्कृति प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना को महिमा मंडन करयूं छ। आज का वैश्वीकरण का दौर मां वंदे मातरम गीत हम ते अपनी जड़ों से जुड़ सिखांद और हर भारतीय का भीतर आत्म गौरव एकता अखंडता और राष्ट्र प्रेम को संचार कर दू। यु गीत हम ते स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदानों की भी याद दिलान जो कि नई पीढ़ी का वास्ता राष्ट्र प्रेम को अमर संदेश च। ये अमर गीतक महान रचयिता हम बारंबार नमन कर दो। आकाशवाणी ने अपनी 90 वर्षों की यात्रा में ये गीतक माध्यम से जन जन ते जागरूक कर आकाशवाणी की इन यात्रा में 47 वर्ष बिटी हम ग्राम जगत में जुड़िया छवा दगुड़कना छवा त आवा सुन दो अपनी आकाशवाणी की 47 वर्षों की ये ग्राम जगत की यात्रा।
1: आठ जून 2026 अकुणी आकाशवाणी का 90 साल पूरा होने वाला छन। यूं 90 सालों में एक कार्यक्रम 47 साल बटी की लोकप्रियता को सबसे ऐंच पायदान पर रे और वो च उत्तराखंड की लोक भाषाओं को कार्यक्रम ग्राम जगत। 1978 में आकाशवाणी नजीबाबाद से शुरू हुई की यू कार्यक्रम आकाशवाणी पौड़ी अल्मोड़ा और देहरादून पहुंच गए। 60-70 का दशक में गढ़वाली कुमाऊनी संगीत दिल्ली और लखनऊ केंद्र बटे की उत्तराण कार्यक्रम का अंतर्गत प्रसारित होन शुरू हो गया था।

0: 47 साल बटेकी ग्राम जगत कार्यक्रम पूरी तौर पर बोली भाषा गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी मा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित करी की आज भी श्रोताओं का बीच पहली पसंद बन्यो छ।
1: खासकर आकाशवाणी का जो कार्यक्रम छ जो कि रीजनल कार्यक्रम छ जो हमारे लोग बहुत ज्यादा संपर्क में छ, प्रासंगिकता और साथ में ये की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई। या तो आपके ग्रामीण जगत कार्यक्रम से मैं ये बता दूं कि इन लोगों से गढ़वाली बोल सिखा देने सबसे
2: रेडियो की आज भी वही महत्व से जो आज से 3 दशक पीछे बिल्कुल जो दूरस्थ क्षेत्र से ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र वो आज भी रेडियो लोग वही उत्सुकता से सुनना जो पहले छे कि जनसंपर्क को साधन आज भी रेडियो थोक रेडियो की महत्ता आज भी वही चाहे वो जो समाचारों का क्षेत्र में हो चाहे वो जानकारी का क्षेत्र में हो चाहे संस्कृति संरक्षण का क्षेत्र में हो और आकाशवाणी देहरादून तो ये मामला में बहुत अच्छा प्रयास की।
0: कुजानी कितना लोक कलाकारों थे आकाशवाणी ने पहाड़ का जनमानस तक पहुँचाए की ऊँटे प्रसिद्धि दिले
3: जो भयों की होने होली वो कठराला अण मिल भयों को लोग ठटाला।
0: जीत सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी, गोपाल बाबू गोस्वामी, हीरा सिंह राणा, महेश तिवाड़ी, कपोत्री देवी, प्रीतम भरतवाण जना कतना ही नौ

0: गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी बोली भाषा का दगड़ ही लोक संस्कृति, लोक संगीत और लोक जीवन पर आधारित कार्यक्रम ग्राम जगत ना सिर्फ स्टूडियो में ही कार्यक्रमों को निर्माण नहीं करी, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र का सुदूरवर्ती गांव-गांव पहुंची की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम ग्राम जगत की सबसे बड़ी ताकत बनी।
1: स्कूल नांतिनो आज किलकारी कार्यक्रम प्रस्तुत करनी च हाई स्कूल सुनाऊ जो कि थराली ब्लॉक के एक स्कूल च।

0: बड़ी सुविधा कुछ नीचे फिर हॉस्पिटल तो छह लेकिन इतना सुविधा है हम तो बाहर ही जान पड़े और जो सुविधा भी होता धीरे धीरे लेकिन क्या करे पलायन ज्यादा हो गया गाँव में लोग भी कम छे यहाँ को सही सुविधा जागरूकता बिल्कुल कम हो गई।
1: आकाशवाणी का 90 साल और ग्राम जगत कार्यक्रम का 47 साल से ज्यादा को समय पहाड़ का गोंगों की छुई लगांदू हुंगरा पुरांदू ग्राम जगत इन्नी एथर बढ़नु छ।
2: त सुनदरो ई यात्रा का साक्षी आप भी छन जब बटे आप रेडियो सुनना छन जब बटे आप ये ग्राम जगत कार्यक्रम त सुनना छन तब बटे आप भी साक्षी बने आप तभी अपनी पुरानी याद आगे वेली कि हम वो बेर कन सुन दो छा के सुन दो छा जन कि हम तो अपने बचपन याद आंद कि ये धुन हमारी ये गाना हमार बचपन का सुनया छन। सुनदरो भोल एतवार आप अपने पसंद का गीत हमार आपक अनुरोध कार्यक्रम में सुन सकदन हर एतवार को हमार ये कार्यक्रम को प्रसारण होंद आपन के कन गीतक बोल लिखने न जो कि आप तो पसंद गीतांग को नौ लिखण अपन नौ लिखण और पता जख बटेन आप चिट्ठी पैटाणा छन और ये कार्यक्रम तो सुनना छन वख का अपन पता हम तो लिखी कन मेल पर पैटा दे और अगर आप हते लिखी चिट्ठी चाणा छन लिखण तो वह भी हम आप तक पता बता दें हमारे पता च कार्यक्रम ग्राम जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन च 248001 और ईमेल को पता च चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर आप हमको चिट्ठी पैटा सकते हैं। आप एक चिट्ठियों को हम तक सदनी जगवाल रहें किले कि आप एक चिट्ठी ये कार्यक्रम तक सफल बढ़ा दिन और बहुत बड़ी भूमिका निभा दिन हमारी ये लोक संस्कृति दी लोक भाषा का बचाण माँ लोक साहित्य का संरक्षण माँ लोक संगीत का संरक्षण माँ आप भी हमारे सहयोगी बनदन और आप भी हमारे उत्साह वर्धन कर देन आप एक चिट्ठियों को एक बहुत बड़ो क्या बोले जा कि ऊर्जा मिल दे आप एक चिट्ठियों तो आप हमको चिट्ठी जरूर लिखन और हाँ एक बात और हर भी पैरा कोणी अब हर बार ये बात रोज रोज ही छुई इले लगान पड़ दिन कि नहीं नहीं सुन दरा जुड़ना रहने रोज रेडियो में तो हम तो इले ही

रोज़ लगान पड़ दिन जो पुराना छिन उनको स्वागत छ, उनको हम बहुत आभार व्यक्त करदा जो हमारे नियमित सुंदर छन। पर जो नई छन उनको बुनाई कि हर भी प्यारा कुणी हमारे चिट्ठी पत्री कार्यक्रम होंद वे में आप हमारे कार्यक्रम की समीक्षा ले सकदन, कार्यक्रम का बाबत अपना सुझाव सलाह शिकायत भी भेज सकदन, और हफ्ता भर जो आप हमारे कार्यक्रम सुन दिन उनकी समीक्षा भी आप हमको पटे सकदन, केले कि आपे की समीक्षा हमको बहुत बड़ो महत्व रख दिन। तबारे आप एक हम चिट्ठियों को हम तय जगवा रांद सदनी रांद तो आप हमको चिट्ठी जरूर लिखा। और अब कार्यक्रम तय जरस अग्नि सरकाणा और सुन दो एक जरूरी रह बार।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सुन दरो ही सुने नापन जरूरी रंतर बार और भगत हुन चु मठमठ के की समाचारों को तो लिया सुना। उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
6: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में।
7: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। श्रद्धालुओं से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की खरीद करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने नैनीताल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टिहरी जिले में काणाताल के पास प्रशासन ने आवश्यक दस्तावेज न होने पर सरकारी खाद्यान्न से भरे दो वाहनों को सीज किया। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी सुलह समझौते के आधार पर कई वादों का निस्तारण। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। राज्यपाल ने धामों में यात्रा व्यवस्थाओं, विकास कार्यों और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने धामों में की गई यात्रा व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए जिला प्रशासन की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है और शासन प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं की खरीद करने का आग्रह भी किया।
8: मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, इस धाम के जो प्रोजेक्ट हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर पूरे पुजारी गण को, मैं पूरे अधिकारी गण को शाबाश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप संचालन करते हैं, यहाँ पर जिस तरीके के साथ में संचालन किया जा रहा है, मैं बिग कॉम्प्लीमेंट। मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे अत्यंत खुशी हुई है कि हमारे प्रोजेक्ट और चार धाम की इस यात्रा का संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। मेरा एक रिक्वेस्ट है हर एक तीर्थालु को कि आप हमारे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट है, आप हमको सेवा करने का अवसर दी।
7: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आज नैनीताल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एक चिकित्सक के अनुपस्थित पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के लिए निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित निगरानी की जाएगी ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रदेश में गत 27 वर्षों से निरंतर संचालित हो रही विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस साल भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रदेश भ्रमण पर है। हरिद्वार से शुरू हुई इस यात्रा के आज टिहरी जिले में पहुंचने पर अंजनीसैन, रोडधार और मलेथा सहित कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नेथानी ने कहा कि डोली यात्रा के माध्यम से न केवल धार्मिक चेतना को जागृत किया जा रहा है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने के अलावा पर्यटन और स्वरोजगार की संभावनाओं को भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
9: विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस समय 27वें वर्ष में उत्तराखंड के भ्रमण पर निकली है और ये हरिद्वार से चली है और पूरे 10,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके 25 तारीख मई को जो गंगा दशहरा है इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि विश्व में शांति कायम, दूसरा उद्देश्य है जो हमारी देव संस्कृति और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में हजार ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं, उन हजार शक्तिपीठों को धाम का स्वरूप मिले। और दूसरा उद्देश्य ये है इसका कि जो हमारा पलायन हो गया है उस पलायन को रोकने के लिए हमारा बंजर खेतों को आबाद करने का संकल्प है।
7: देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज कलेक्ट्रेट स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC कार्यालय के नवीनीकृत परिसर का उद्घाटन किया। कार्यालय को आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप बनाया गया है जिससे कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित, तकनीकी सक्षम और प्रभावी बन सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि NIC शासन और प्रशासन की डिजिटल व्यवस्थाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्यालय के सुदृढ़ीकरण से ई गवर्नेंस से जुड़ी गतिविधियों को नई गति मिलेगी और विभिन्न विभागों के कार्यों का संचालन और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सफल और सुचारू संचालन में ये व्यवस्था अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।
10: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
7: टिहरी जिले में आज चंबा धनौल्टी मोटरमार्ग पर काणाताल के पास प्रशासन ने सरकारी खाद्यान्न से भरे दो वाहनों को सीज कर दिया। अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी के नेतृत्व में क्षेत्र में चल रहे वाहनों के औचक निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित दो वाहनों की जांच की गई। इनमें गेहूं और चावल लदा हुआ था जिसे सरकारी राशन वितरण के लिए ले जाया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान वाहन चालकों और संबंधित कर्मियों से राशन के गंतव्य वितरण क्षेत्र और संबंधित अभिलेखों की जानकारी मांगने पर मौके पर आवश्यक दस्तावेज मौजूद नहीं थे। इसके बाद दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया। अपर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को मामले में लापरवाही बरतने वाले संबंधित कार्मिकों और ठेकेदार के खिलाफ विस्तृत जांच कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में समझौता योग्य मामलों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की गई। चंपावत जिले में आयोजित लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर विभिन्न वादों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों के बाहर विवादों का सुलह समझौते से निपटारा करना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में संपत्ति अधिग्रहण, मोटर वाहन, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों का व्यापक और प्रभावी ढंग से समाधान किया गया।
11: ये माननीय

0: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम जो इसको करते हैं और ये पूरे उत्तराखंड में ही किया जा रहा है, सभी जिलों में जितने भी हमारे न्यायालय हैं। विशेष रूप से अगर हम चंपावत की बात करें तो चंपावत मुख्यालय और टनकपुर बाह्य न्यायालय जो है वहाँ दोनों जगह आयोजित हो रहा है। मुख्य रूप से जो इसमें हमारे शमनीय मामले होते हैं, MACT के मामले होते हैं, चेक के मामले होते हैं, मोटर वाहन के मामले होते हैं, लोगों के विद्युत बिल के मामले हैं, पानी से संबंधित मामले हैं, सभी का मौके पर निस्तारित हो रहा है। और हमने इस बार विशेष रूप से UPCL, जल निगम सभी की ओर से अधीक्षक बुलाए गए हैं। और मैं ये भी आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि जिन लोगों के भी बिजली पानी के बिल हैं वो लोग भविष्य में भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। अगली लोक अदालत हमारी सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी।
1: ऊधम सिंह नगर जिले के सभी न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम और पारिवारिक मामलों सहित बैंकों से लिए गए ऋण के मामले सुलझाए गए। अग्रणी जिला प्रबंधक चिराग पटेल ने बताया कि लोक अदालत में कई लंबित मामलों का निस्तारण किया गया।
2: यहाँ पर आज जो लोक अदालत आयोजित की गई है उसमें जो बैंक से सारे उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और जो बैंक के बाकीदार जो भी है बोरोवर्स जो काफी टाइम से लोन भरने में असक्षम रहे थे उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाकर उनका जो भी बैंक में बाकी था उसमें जो भी बैंक की जो गाइडलाइन मतलब स्कीम्स होती है उसमें छूट छाट दे के बहुत सारे केसेस का यहाँ पर आज निस्तारण किया गया, जिससे फायदा जो है बाकीदार जो लोग है मतलब बोरोवर्स है बैंक है उनको भी इससे हो रहा है फायदा और बैंक को भी इसमें फायदा हो रहा है कि उनके जो लंबी केसी से बहुत उसका भी निस्तारण हुआ है।
1: चारधाम यात्रा को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के उद्देश्य से हरिद्वार जिले में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। पुलिस टीम विभिन्न स्थानों पर चेकिंग कर वाहनों की जांच कर रही है ताकि यात्रा मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वाहनों में काली फिल्म लगाने और नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों के चालान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षित यात्रा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। श्रद्धालुओं से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की खरीद करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने नैनीताल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टिहरी जिले में काणाताल के पास प्रशासन ने आवश्यक दस्तावेज न होने पर सरकारी खाद्यान्न से भरे 2 वाहनों को सीज किया और प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सुलह समझौते के आधार पर कई वादों का निस्तारण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एक दा फिर स्वागत आप सभी सुंदरों को कार्यक्रम ग्राम जगत मां जेथे आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे सुनना छन और मिछो आप दगड़िया शांति बिंजुल। दगड़ियों हर साल मई महीना मां विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाए जान। ये दिवस हम तय ऊँ चखलों का प्रति संवेदनशील बढ़ांद जो हजारों किलोमीटर की यात्रा कैरी की मौसम भोजन और सुरक्षित आवास की तलाश मां एक देश बटे की दूसर देश जनिन। प्रवासी पक्षी ई धरती का सबसे अनुशासित यात्रियों में गणे जनिन। एक अद्भुत बात या च कि ऊ न तो नक्शा दिखत न सीमा पछंद फिर भी हर हाल में अपन अपन गंतव्य तक पहुँच जनिन। खास कह कि साइबेरिया बिटे आने वाला पक्षी भारत की झील नदी और हिमालयी क्षेत्रों में अपन अस्थायी ठिकाण बनेदिन जो कि पर्यटकों से आकर्षित कर देन। प्रकृति को संतुलन बनन दिन कीटों तक नियंत्रण कर दिन और कुछ चकला बीज फैले की बणों को विकास में योगदान दिन। लेकिन आज यूं पक्षियों का समणी कद गए संकट और चुनौती छन। बणों को कटान, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, टावरों को प्रभाव, अवैध शिकार, तो यनमा हम सब को कर्तव्य च कि हम वृक्षारोपण करा, बणों थे बचवा, डाल लगावा, जल जंगल और आगाश तय सुरक्षित करा, प्लास्टिक प्रदूषण से तय रुकण मा योगदान देवा, किले कि जब ई पक्षी छन तभी प्रकृति और मन की बीच तब हरे आजकल रूढ़ियों बगच

अपना घरों में, घरों का चौक पर, दिवाली पर और छतों में यूँ चकलों को पैन जरूर धन। ता खारियों छुई लगे नब तो कार्यक्रम तो अब अग्नि सरका दिनों और सुन दो प्रताप सिंह और दगड़ियों का स्वर मा यो सुंदर सी कुमावनी लोकगीत।

0: प्रताप सिंह अरदगड़ियों का स्वर मा अपन सुनियो पारंपरिक कुमाऊनी लोकगीत। और अब भगत हो गया समाचारों को, तो लिया सुना गढ़वल मा उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बिटिन गढ़वाली मा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी संजना अवस्थी। पहली मुख्य समाचार, केंद्र सरकार ना लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुप्रीमणि ते अगलू सीडीएस और वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ते नौसेना प्रमुख नियुक्त करियाल। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम मा पूजा अर्चना करी और देश प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं का वास्ता 1,096 करोड़ रुपयों से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी और टिहरी जिला का पाली गांव ते अखरोट ग्राम का रूप में विकसित किए जालू। अब समाचार विस्तार से, केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुप्रीमणि ते अगलू प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त करियाल। उन जनरल अनिल चौहान को स्थान लेनी जोंकु कार्यकाल 30 मई को समाप्त होनु छ। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार का रूप में कार्यरत छ। यासी पहली उन सेना का उप प्रमुख और केंद्रीय कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का रूप में कार्य करियाल। सरकार ना वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ते नौसेना प्रमुख नियुक्त करियाल। रक्षा मंत्रालय ने बताई कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद पर कार्यरत छ। उन एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को स्थान लेनी जौन 31 मई को सेवानिवृत्त होनु छ। शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और तृणमूल कांग्रेस को 15 वर्षों को शासन तय अंत करियाल। कोलकाता का ब्रिगेड

0: परेड ग्राउन्डमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा राज्यपाल आर एन रविन श्री अधिकारी तय पद और गोपनीयता की शपथ दिलै। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी भी पश्चिम बंगालमा नवनिर्वाचित सरकारका शपथ ग्रहण समारोहमा सामेल हुए। सोशल मीडिया पर जारी सन्देशमा प्रधानमन्त्री बोल कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़ी रण और उनकी आकांक्षाओं तय समझण वाला जन नेता का रूप में अपनी पहचान बनाई। मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास व्यक्त करी कि श्री अधिकारी का नेतृत्व और दूरदर्शिता पश्चिम बंगाल तय प्रगति सुशासन और विकास की नई ऊंचाइयों तय ली की जालू। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करी तथा देश और प्रदेश की समृद्धि व खुशहाली की कामना करी। ये दौरान उन मंदिर परिसर में तीर्थयात्रियों से मुलाकात करी और यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी भी लेनी। बद्रीनाथ दौरा का दौरान राज्यपाल ने मुख्य विकास अधिकारी सीधधाम में संचालित मास्टर प्लान कार्यों की जानकारी प्राप्त करियाल। ऊन रिवर फ्रंट और मंदिर परिसर में होणो निर्माण और विकास कार्यों को निरीक्षण भी करियाल। साथ ही धाम से जुड़ी विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करी और उनका सुझाव सुनी और आवश्यक कार्रवाई को आश्वासन भी दिनी। दुया धामों की यात्रा का दौरान राज्यपाल ने श्रद्धालुओं से भक्तिभाव और अनुशासन का साथ है दर्शन कन तथा यात्रा व्यवस्थाओं में सहयोग करने की अपील करी। ऊन चार धाम यात्रा पर औण वाला तीर्थयात्रियों से स्थान उत्पादों तय यात्रा की स्मृति का रूप में खरीदण को भी आवाहन करी। ये का अलावा राज्यपाल ने धामों में स्वच्छता बनाए रखना की अपील भी करियाल।
1: हम तो पूरा साल इंतजार करते हैं कि चार धाम यात्रा शुरू होगी, पूरे साल मेहनत करते हैं ताकि एक दिव्यता से भव्यता से बहुत ही सुंदर तरीके से इसका संचालन। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि यहाँ पर लेट्स कीप दिस एरिया क्लीन, क्योंकि प्रभु वहीं बसता है जहाँ पर सफाई और सुंदरता होती है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं बहुत सुंदर तरीके से बढ़ रहे हैं। हर एक प्रोजेक्ट का मकसद है कि किस प्रकार से ये यात्रा सफल हो और प्रभु का आशीर्वाद मिले।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और कुंभ मेला 2027 से संबंधित कार्यों का वास्ता 1,096 करोड़ रुपयों से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी। स्वीकृत योजनाओं में पुल और पार्किंग निर्माण, शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं तय धनराशि जारी करने का साथ ही अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का कार्मिकों तय वेतन भुगतान से जुड़िया काम भी छ। ये का अलावा हरिद्वार में सड़क नवीनीकरण, जंक्शन सुधार और सौंदर्यकरण का साथ है रोड स्वीपिंग मशीनों की आपूर्ति संबंधी कार्यों तय भी मंजूरी दिनी। टिहरी जिला का जाखणीधार विकासखंड स्थित पाली गांव तय अखरोट ग्राम का रूप में विकसित किए जालू। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने गांव का लोगों द्वारा बंजर खेतों में लगाया अखरोट का पौधों और विकसित करिया बगीचों तय गांववासियों तय समर्पित कर दी हुए यह घोषणा करियाल। ये अवसर पर उन बॉयल की यन प्रयासों से लुकारी बंजर होने भूमि तेम फिर से बागवानी और कृषि कार्यों का उपयोग मा लियोणा का वास्ता प्रेरित

0: जिसके माध्यम से हमारी ज़मीन की उर्वरता क्षमता भी बनी रहे और साथ में हमारी जो खेती की लागत है उसमें कमी आए और हमारा उत्पादन और साथ साथ में आर्थिकी बढ़े।
1: चमोली जिल्लामां स्थानीय किसानों की उपज अब सीधी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी तय भेजी जाएली। जिला का काश्तकारों की आय बढ़ाना का उद्देश्य सी उत्तराखंड औद्यानिक परिषद और आईटीबीपी का बीच 1 अप्रैल 2026 को स्थानीय काश्तकारों से सब्जी खरीद का वास्ता अनुबंध किए गए। स्थानीय काश्तकार मोहन सिंह कमदी और सुखदेव सिंह नबॉल की प्रदेश सरकार और औद्यानिक परिषद की यह पहल किसानों की आय मजबूत करना सहायक सिद्ध होली। राजधानी देहरादून का गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय स्थित जिला दिव्यांग और पुनर्वास केंद्र का माध्यम से दिव्यांगजनों ते विभिन्न सुविधाओं को लाभ मिलनो छ। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताई कि केंद्र में अबारी ते 600 से अधिक यूडीआईडी कार्ड बनियाल। ये का अलावा 600 नया दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करियाल, जबकि 250 प्रमाण पत्रों को नवीनीकरण भी हुए।
2: जनपद देहरादून में पहली बार डीएम महोदय के निर्देशों के क्रम में गांधी शताब्दी में हमको 4 कमरे मिले हैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालन के लिए। डीडीआरसी का मुख्य कार्य दिव्यांग लोगों की सहायता करना और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित कराना है। एक वर्ष में जब से हमारा गांधी शताब्दी डीडीआरसी चला है, एक वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 600 नवीन दिव्यांग पत्र और यूडीआईडी कार्ड बने हैं और 250 नवीनीकृत हुए हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र।
1: मौसम विभाग ने राज्य में 13 मई तक बरखा को पूर्वानुमान जारी करी। विभाग के अनुसार अगला 2 दिनों तक पर्वतीय जिलों में कई जगहों में हल्की बरखा होने की संभावना छ, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बन्यो रोलो। वखी 12 मई से प्रदेश का मौसम में बड़ो बदलाव होने को आसार छ। ये दौरान पर्वतीय जिलों में कखी हल्की सी मध्यम त कखी गर्जन का साथ है बरखा हो सकती। मौसम विभाग का निदेशक डॉक्टर सीएस तोमर ने बताई कि पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होने का कारण प्रदेश का अधिकांश जिलों में बरखा आंधी और गर्जन की संभावना बनी छ।
3: हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं हमारे को लगभग जो है सारे पर्वतीय जो हमारे जिले वहाँ देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों में जो है ये जो है हल्की फुल्की कहीं पे हो सकता है। बाकी फिर 12 और 13 तारीख में जो ऊपर के हमारे 5 नॉर्थ के जो जनपद है वहाँ पे हमको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पर देखने को मिल सकती है 12 और 13 तारीख में। बाकी जगह पे जो है कहीं कहीं देखने को मिल सकती है हल्की मध्यम दर्जे की बारिश और 13 और 14 तारीख को भी लगभग सिमिलर सिचुएशन रहेगी, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ते अगलू सीडीएस और वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ते नौसेना प्रमुख नियुक्त करियाल। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करी और देश प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं का वास्ता 1,096 करोड़ रुपयों से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी और टिहरी जिला का पाली गांव ते अखरोट ग्राम का रूप में विकसित किए जलो। ये का साथ है गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
4: और ये कि दगड़ हमारो आज को ग्राम जगत कार्यक्रम में हमें संपन्न होंगे भोल नए अंकल दगड़ फिर हाजिर होला। तब तक वास्ता पर दगड़ शांति बिंजुलता दयानुमति नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

हमारे सभी प्यारे श्रोताओं, आकाशवाणी के अपने प्रिय कार्यक्रम कृषि जगत में मैं शिप्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, मई का महीना चल रहा है और मौसम भी इन दिनों कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। सुबह शाम हल्की ठंडी हवा राहत देती है, लेकिन दोपहर होते होते धूप अपने तेवर दिखाने लगती है। ऐसे में खेतों में काम करते समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना फसलों का। कोशिश कीजिए कि तेज धूप में ज़्यादा देर तक काम ना करें, पानी भरपूर पीते रहें और अपने पशुओं के लिए भी छांव और साफ पानी की व्यवस्था ज़रूर रखें। और साथियों, इस बदलते मौसम के साथ प्रकृति भी जैसे नई हलचल से भर जाती है। कभी पेड़ों पर चहचहाहट सुनाई देती है तो कभी आसमान में उड़ते पक्षियों की कतारें मन को आकर्षित कर लेती हैं। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जा रहा है। ये प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से हमारे देश और हमारे आसपास के इलाकों में आते हैं। ये सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण के संतुलन में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम अपने खेतों, तालाबों और आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखें, ताकि ये मेहमान पक्षी हर साल यूं ही हमारे बीच आते रहें। तो साथियों, आज का कार्यक्रम है खेती किसानी की बातें और हमारी लोक संस्कृति की मिठास से भरपूर, क्योंकि आज लोकमंची कार्यक्रम के लिए हम लेकर आए हैं आपके मनपसंद फरमाइशी लोकगीत, जो आपके दिल को भी छुएंगे और गांव घर की यादों को भी ताज़ा कर देंगे। और इसी क्रम में आज हमें पत्र कुछ प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पत्र है जो हम पढ़ते हैं, और ये पत्र हमें भेजा है ग्राम टिकोला कला उत्तराखंड के हमारे नियमित श्रोतागण द्वारा, जिनके नाम हैं रमेश चंद्र नामदेव, संजय कुमार नामदेव, राजन कुमार नामदेव, श्रीमती ज्योति नामदेव, अंशिका निकुंज और सूर्यकांत नामदेव जी। ये लिखते हैं, आपके नियमित श्रोता हैं, आकाशवाणी देहरादून के प्रत्येक कार्यक्रमों को नियमित सुनते हैं, सभी कार्यक्रम सुनने में अच्छे लगते हैं। 2 मई 2026 शाम 7 बजे कार्यक्रम लोकमंजरी सुना, इस कार्यक्रम में हमारा पत्र शामिल नहीं किया गया, इस विषय में हमारी बड़ी शिकायत है जी। इस पत्र को कार्यक्रम में शामिल करके पसंद की कोई भी रागिनी सुनवाने का कष्ट करें। तो आप सभी से माफ़ी भी चाहते हैं कि पिछले कार्यक्रम में आपका पत्र शामिल नहीं कर पाए, पर इस बार आपके पत्र को हमने बिल्कुल शामिल किया है और अब प्रस्तुत है आपके लिए ये रागिनी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग एक बात अक्सर कहा करते थे, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। उस समय शायद हम इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं समझते थे, लेकिन आज जब जीवन शैली तेजी से बदल रही है तब ये कहावत और भी सटीक लगती है, क्योंकि हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर की ताकत बनता है और उसी का असर हमारे मन, सोच और व्यवहार पर भी दिखाई देता है। आजकल आपने भी देखा होगा कि जल्दी के इस दौर में लोग घर के बने खाने से ज़्यादा बाहर की चीज़ों की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। चमकदार पैकेट, फास्ट फूड और ज़्यादा मसालेदार भोजन अब रोज़मर्रा का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन अगर हम अपने पुराने खान पान की तरफ देखें तो हमारे गाँव का साधारण भोजन ही सबसे ज़्यादा पौष्टिक हुआ करता था। मंडुआ, झंगोरा, बाजरा, जौ, मक्का, दालें, छाछ और घर का ताज़ा घी और मौसमी सब्जियाँ, यही सब तो हमारी असली ताकत थे। किसान भाई दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं, ऐसे में शरीर को सही पोषण मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर भोजन पौष्टिक होगा तो शरीर में ताकत बनी रहेगी, थकान कम होगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। आज डॉक्टर भी यही कहते हैं कि मोटे अनाज यानी मिलेट्स शरीर के लिए बेहद लाभकारी हैं। ये सिर्फ ताकत ही नहीं देते बल्कि कई बीमारियों से बचने में मदद भी करते हैं। और साथियों, भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं होता, यह हमारी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा भी है। गांव के पुराने समय को याद कीजिए, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था, घर के आंगन में चूल्हे की खुशबू होती थी और खाने में अपनापन सा महसूस होता था। वह अपनापन मन को भी खुश रखता था। तो साथियों, कोशिश कीजिए कि अपनी थाली में फिर से पारंपरिक अनाज हो और घर के बने भोजन को जगह दें। अपने बच्चों को भी इन चीज़ों का महत्व बताइए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी स्वस्थ रहें और हमारी खेती किसानी की परंपरा मजबूत बनी रहे। और अब हमारी लोक संस्कृति की मिठास घोलने का समय आ गया, तो आइए लोकमंजरी कार्यक्रम में पढ़ते हैं हमारे श्रोता द्वारा भेजा गया ये अगला पत्र। और हमें पत्र प्राप्त हुआ है ग्राम बुग्गावाला हरिद्वार से मनजीत सिंह द्वारा। वे लिखते हैं, आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ, सभी जानकारियाँ काफ़ी लाभप्रद होती हैं। लोकमंजरी में कृपया मैनपाल सिंह की आवाज़ में कोई लोकगीत सुनवाने की कृपा करें। तो मनजीत जी, लीजिए प्रस्तुत है मैनपाल सिंह जी की आवाज़ में ये रागिनी।

श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे जैसा खाए अन्न वैसा हो मन की। सच कहें तो आज के समय में यह बात सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक ज़रूरी सीख बन गई है, क्योंकि जिस तरह खेत में बोया गया बीज फसल बनकर लौटता है, उसी तरह हम अपने शरीर को जैसा भोजन देते हैं वैसा ही स्वास्थ्य और ऊर्जा हमें वापस मिलती है। आज गाँव में भी धीरे धीरे खाने की आदतें बदल रही हैं। पहले लोग मौसम के हिसाब से भोजन करते थे, गर्मियों में हल्का और ठंडक देने वाला खाना, सर्दियों में ताकत देने वाला भोजन। लेकिन अब कई बार हम मौसम और शरीर की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका असर धीरे धीरे स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगता है। साथियों, किसान तो धरती के सबसे बड़े अन्नदाता हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खेतों में काम करते समय समय समय पर भोजन करना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना और भोजन में दाल, हरी सब्जियां और मोटे अनाज शामिल करना बहुत ज़रूरी है। कई बार किसान भाई काम की व्यस्तता में खाना समय पर नहीं खा पाते, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने पर शरीर कमज़ोर बन सकता है। और एक और बात, अच्छा भोजन सिर्फ शरीर को नहीं मन को भी शांत और सकारात्मक बनाता है। जब घर का भोजन, परिवार का साथ और अपनी मिट्टी की खुशबू साथ हो तो जीवन में संतोष अपने आप ही आ जाता है। शायद यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग इतने स्वस्थ और खुश रहते थे। तो आइए साथियों, हम सब मिलकर फिर से अपने पारंपरिक खान पान की आदतों को अपनाने का प्रयास करें, अपने खेतों में पोषक अनाज उगाएं और अपनी थाली को भी रंग बिरंगा और पौष्टिक बनाएं। और अब इसी खूबसूरत बात के साथ एक बार फिर बढ़ते हैं लोक मंजरी की ओर, जहाँ आपका इंतजार कर रहा है एक और शानदार फरमाइशी लोकगीत। और इस लोकगीत की फरमाइश की है भाद्राबाद के सुशील कुमार व सुनील कुमार जी ने। वे लिखते हैं कि लोक मंजरी कार्यक्रम में हमारा पत्र शामिल करने की कृपा करें और कोई रुहेलखंडी लोकगीत सुनवा दें, आपकी कृपा होगी। तो सुशील जी और सुनील जी, हमने आपका पत्र अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है और लीजिए, प्रस्तुत है आपके लिए ये रुहेलखंडी लोकगीत।

तो इस लोकगीत के साथ अब वक्त हो चला है हमारा आप सभी से विदा लेने का, पर जाने से पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, जो बताने के लिए आप हमें पत्र भेज सकते हैं। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र देहरादून 248001। तो इसी के साथ अपनी दोस्त शिप्रा को आज्ञा दें, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:30 होने को हैं श्रोताओं, और अब वक्त हो चला है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी गीता भंडारी। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगिल CDS और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त करिहाल। राज्यपाल गुरमीत सिंगल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूज अर्चना कर देश प्रदेशक समृद्धि और खुशहाली कामना करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में अलग अलग विकास योजनाओं के लिए 1,096 करोड़ रुपए से ज्यादा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करो, और टिहरी जिला पाली गांव को अखरोट ग्रामक रूप में विकसित करी जल। अब समाचार विस्तारल। केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट NS राजा सुब्रमणि को अगिल रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त करी हाल। ऊ जनरल अनिल चौहानक जागल्याल। जनर कार्यकाल 30 मई को पूर्ण होने। लेफ्टिनेंट जनरल ई वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकारक रूप में कार्यरत छी। इससे पहली उन्होंने उप प्रमुख केंद्रीय कमानक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफक रूप में काम करी। सरकारल वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के नौसेना प्रमुख नियुक्त करी हालो। रक्षा मंत्रालय बता कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन आजकल पश्चिमी नौसेना कमानक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफक पद में काम करना छी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जाग लेला, जो 31 मई को सेवानिवृत्त होना छिन। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगालक मुख्यमंत्री पदक शपथ ली। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी छू। भाजपा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर वे तृणमूल कांग्रेस 15 वर्षों के शासनक अंत करी हालो। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल RN रवील श्री अधिकारी के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले पश्चिम बंगाल या नवनिर्वाचित सरकारक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भई। सोशल मीडिया में जारी संदेश में प्रधानमंत्री कौ कि श्री अधिकारी जनता से गहराई से जुड़ी रही और उनर आकांक्षाओं के समझण वाल जननेता के रूप में अपन पहचान बनाई। मुख्यमंत्री धामिल विश्वास जताई कि श्री अधिकारी के नेतृत्व और दूरदर्शिता पश्चिम बंगाल के प्रगति सुरक्षा और विकासक नई ऊंचाइयों तक पुछाल। राज्यपाल गुरमीत सिंगल आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूज अर्चना कर वीर देश और प्रदेशक सुख समृद्धि और खुशहाली कामना करी। यह बीच उन्होंने मंदिर परिसर में तीर्थ यात्रियों से मुलाकात कर यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी ले ली। बद्रीनाथ घूमण के दौरान राज्यपाल मुख्य विकास अधिकारी थे धाम में संचालित मास्टर प्लान कामों की जानकारी ले। उन्होंने नदी किनार और मंदिर परिसर में करे जाने वाले निर्माण और विकास कामों का निरीक्षण ले करो। दगड़ ही धाम से जुड़ी अलग अलग हितधारकों से मुलाकात कर उनर सुझाव सुनी और जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दे। द्वितीय धामों की यात्रा के दौरान राज्यपाल श्रद्धालुओं थे भक्तिभाव और अनुशासनक दगड़ दर्शन करण और यात्रा व्यवस्थाओं में सहयोग करण अपील करी। उन्होंने चार धाम यात्रा में उन्हीं वाल तीर्थ यात्रियों से स्थानीय सामानों के यात्रा के यादक रूप में खरीदण को ले को। एक अलावा उन्होंने धामों में स्वच्छता बढ़ाई रखने का अनुरोध ले करो।
2: हम तो पूरा साल इंतजार करते हैं कि चार धाम यात्रा शुरू होगी। पूरे साल मेहनत करते हैं ताकि एक दिव्यता से, भव्यता से, बहुत ही सुंदर तरीके से इसका संचालन। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि यहाँ पर लेट्स कीप दिस एरिया क्लीन, क्योंकि प्रभु वहीं बसता है जहाँ पर सफाई और सुंदरता होती है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं बहुत सुंदर तरीके से बढ़ रहे हैं। हर एक प्रोजेक्ट का मकसद है कि किस प्रकार से ये यात्रा सफल हो और प्रभु का आशीर्वाद मिले।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राज्यक अलग अलग विकास योजनाओं और कुंभ मेल 2027 है जुड़ी कामों के लिए 1,096 करोड़ रुपए से ज्यादा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी छू। स्वीकृति योजनाओं में पू और पार्किंग निर्माण शहरी निकायों और पंचायती संस्थाओं के धनराशि जारीकरण दगड़ ही अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों कर्मिकों वेतन भुगतान है जुड़ी कामों को ले शामिल करी छू। यह अलावा हरिद्वार में सड़क नवीनीकरण जंक्शन सुधार और सौंदर्यकरण का दगड़ ही सड़क सफाई मशीनक आपूर्ति संबंधी कामों को ले मंजूरी दिहल।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह का दगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: टिहरी जिलाक जाखणीधार विकास खंड स्थित पालीगों को अखरोट ग्रामक रूप में विकसित करी जाल। टिहरी विधायक किशोर उपाध्यायल मैसों द्वारा बंजर खेतों में लगाई गई अखोड़क पौध और विकसित करी गई बगीचों को गांव वालों को दृढ़ घोषणा करी। यह मौक में उन्होंने कहा कि यश कोशिश मैसों को बंजर होने वाल जमीन को दोबारा बागवानी और खेती कामों में उपयोग करने के लिए प्रेरित करूं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आलोकल बता कि किसानों को अखोड़क अलग अलग जातियों और उर्वरक प्रबंधक की जानकारी ले दी गई छू।
4: कि कौन सी प्रजाति लगानी है, किस तरह से उसका उर्वरक प्रबंधन करना है, उसके संबंधित जानकारी दी गई थी वैज्ञानिक जानकारी। साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सघन उर्वरक इसके संबंध में जागरूकता अभियान में उसमें हमने ये जानकारी दी है कि किसानों को उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारी जमीन की उर्वरता क्षमता भी बनी रहे और साथ में हमारी जो खेती की लागत है उसमें कमी आए और हमारा उत्पादन और साथ साथ में आर्थिकी बढ़े।
1: चमोई जिला में स्थानीय किसानों की उपज अब सिद्ध भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के भेजी जाए। जिला काश्तकारों का आय बढ़ुणक वेल उत्तराखंड औद्योगिक परिषद और ITBP के बीच 1 अप्रैल 2026 स्थानीय बटी काश्तकारों थे सब्जी खरीदक लीजिए अनुबंध करी गए। स्थानीय काश्तकार मोहन सिंह कमदी और सुखदेव सिंहक बोलन छू की प्रदेश सरकार और औद्योगिक परिषदक यह पहल किसानों को आय मजबूत करण में सहायक सिद्ध होल। राजधानी देहरादूनक गांधी शताब्दी जिला अस्पताल स्थित जिला दिव्यांग और पुनर्वास केंद्रक माध्यमक दिव्यांगजनों के अलग अलग सुविधाओं के लाभ मिलण। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिलड़ियाल बता कि केंद्र में अब तक 600 से ज्यादा UDIED कार्ड बने हैं। यह अलावा 600 नई दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी की गई छिन, जबकि 250 प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण ले करी गई छू।
5: जनपद देहरादून में पहली बार DM महोदय के निर्देशों के क्रम में गांधी शताब्दी में हमको 4 कमरे मिले हैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालन के लिए। DDRC का मुख्य कार्य दिव्यांग लोगों की सहायता करना और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित कराना है। एक वर्ष में जब से हमारा गांधी शताब्दी DDRC चला है, एक वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 600 नवीन दिव्यांग प्रमाण पत्र और UDID कार्ड बने हैं और 250 नवीनीकृत हुए हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र।
1: मौसम विभाग राज्य में 13 मई तक बरखाक पूर्वानुमान जारी करी छू। विभागक अनुसार अगिल 2 दिनों तक पहाड़ी जिलों में कैं हल्क दियो हुणक संभावना छू, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बड़ी रोल। वे 12 मई बटी प्रदेश में मौसम में ठुल बदलावक आसार छिन। यह दौरान पर्वतीय जिलों में कैं हल्की से मध्यम दियो गड़गड़ाटक दगड़ है सकल। मौसम विभागक निदेशक डॉ CS तोमरल बता कि पश्चिमी विक्षोभक सक्रिय होना कारण प्रदेश में ज्यादातर जिलों में दियो अंधड़ और गड़गड़ाहटक संभावना बनी छू।
6: हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं हमारे को लगभग जो है सारे पर्वतीय जो हमारे जिले वहाँ देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों में जो है ये जो है हल्की फुल्की कहीं पे हो सकता है। बाकी फिर 12 और 13 तारीख में जो ऊपर के हमारे 5 नॉर्थ के जो जनपद है वहाँ पे हमको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पर देखने को मिल सकती है 12 और 13 तारीख में। बाकी जगह पे जो है कहीं कहीं देखने को मिल सकती है हल्की मध्यम दर्जे की बारिश और 13 और 14 तारीख को भी लगभग सिमिलर सिचुएशन रहेगी, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बारी फिर। केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगिल CDS और YS एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के नौसेना प्रमुख नियुक्त करी। राज्यपाल गुरमीत सिंगल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूज अर्चना कर प्रदेश और देशक समृद्धि खुशहाली कामना करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राज्य में अलग अलग विकास योजनाओं के लिए 1,096 करोड़ डबलों से ज्यादा वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर अरटिहरी जिला पाली गांव के अखरूट ग्रामक रूप में विकसित करी जल। यकदगढ़ ही कुमावनी में प्रादेशिक समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:40 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। श्रोताओं, अभी आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में, और आइए सुनेंगे ये पहला गीत हेमंत कुमार की आवाज़ में फिल्म कोहरा से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने और बोल दिए हैं कैफी आज़मी ने।

0: अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म संगीत के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:50 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आर्यन देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून के विशेष कार्यक्रम योजना संवाद में मैं पंकज सनवाल खुलबे आपका स्वागत करती हूं। योजना संवाद के आज के इस अंक में आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों की, खासतौर पर पर्यटन विभाग की उन योजनाओं पर जो न केवल पहाड़ों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं बल्कि पलायन जैसी गंभीर समस्या को भी कम करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। और ऐसी ही उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। श्रोता, उत्तराखंड देवभूमि अपने प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक स्थलों और साहसिक पर्यटन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ की हिमालय की सुंदर वादियाँ, शांत गांव, पारंपरिक संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य इसे पर्यटन की दृष्टि से बेहद समृद्ध बनाती हैं। लेकिन लंबे समय तक इन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया, जिसके कारण रोजगार के अवसर सीमित रहे और बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों से पलायन कर गए। इन्हीं चुनौतियों के समाधान के लिए उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को रोजगार का प्रमुख साधन बनाने की दिशा में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे प्रमुख है दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना और ट्रैकिंग अट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना। दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को अपने घर से ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवार अपने घरों को पर्यटकों के लिए होमस्टे के रूप में विकसित कर सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे लोग अपने घरों को पर्यटकों के अनुकूल बना सकें। इसके अंतर्गत निर्माण, मरम्मत, फर्नीचर और बुनियादी सुविधाओं के लिए अनुदान दिया जाता है। इससे न केवल ग्रामीणों की आय बढ़ती है बल्कि पर्यटकों को भी स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव मिलता है। इसके साथ ही सरकार ने ट्रैकिंग रूट्स के आसपास रहने वाले लोगों के लिए विशेष योजना शुरू की है। ट्रैकिंग अट्रैक्शन सेंटर होमस्टे अनुदान योजना के तहत स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों को होमस्टे स्थापित करने के लिए ₹60,000 प्रति कमरे के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। अगर आप भी अपने गांव में रहकर कुछ करना चाहते हैं तो सरकार की दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना और ट्रैकिंग अट्रैक्शन सेंटर होमस्टे योजना आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले बात पात्रता की। इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो और जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो। आवेदक के पास अपना मकान या जमीन होनी चाहिए जहां वो होमस्टे विकसित करना चाहता है। खास बात यह है कि ये मकान ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्र में होना चाहिए। अगर आप ट्रैकिंग रूट के पास रहते हैं, यानी लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में, तो आपको इस योजना में प्राथमिकता मिलती है। साथ ही स्थानीय ग्रामीण, बेरोजगार युवा, महिलाएं और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी प्राथमिकता दी जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि एक ही संपत्ति पर एक बार ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की, जिसे समझना बहुत जरूरी है। आवेदन के लिए सबसे पहले आपको अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करना होगा या उत्तराखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते हैं। फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, मकान या जमीन का विवरण और योजना से जुड़ी जानकारी देनी होती है। इसके बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा किया जाता है। आवेदन जमा करने के बाद पर्यटन विभाग की टीम आपके घर या स्थल का निरीक्षण करती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो होम स्टे के लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया जाता है और आप निर्माण या नवीनीकरण का कार्य शुरू कर सकते हैं। काम पूरा होने के बाद दोबारा जांच होती है और फिर अनुदान राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है। आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है उनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होती है। इसके साथ ही भूमि या मकान के स्वामित्व का प्रमाण जैसे खतौनी या रजिस्ट्री देना जरूरी होता है। बैंक पासबुक की कॉपी, स्वयं घोषणा पत्र और कुछ मामलों में ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। यदि आप ट्रैकिंग रूट योजना के तहत आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये भी प्रमाण देना होगा कि आपका घर ट्रैकिंग रूट के पास स्थित है। अब बात करते हैं इस योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक लाभ की। सरकार द्वारा ट्रैकिंग रूट क्षेत्रों में होम स्टे बनाने के लिए प्रति कमरे के हिसाब से 60,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। यदि आपके होम स्टे को मरम्मत या नवीनीकरण की जरूरत है तो इसके लिए 25,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। लेकिन ध्यान रखें, केवल अनुदान लेना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि कुछ मानकों को पूरा करना भी जरूरी है। होम स्टे में साफ सुथरे और हवादार कमरे होने चाहिए, शौचालय और बाथरूम की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और पीने के साफ पानी की सुविधा भी जरूरी है। यदि आप अपने होम स्टे में स्थानीय

0: चुका है। पंचाचूली शिखरों के बेस कैंप के पास बसे इस छोटे से गांव ने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी है। कभी खेती और पारंपरिक व्यापार पर निर्भर रहने वाला ये गांव आज पूरी तरह से होमस्टे आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चुका है। दांतु गांव के लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने घरों को होमस्टे में बदल दिया है। यहाँ के लगभग हर परिवार ने इस पहल में हिस्सा लिया है। पहले जहां सीमित आय के कारण जीवन यापन कठिन था, वहीं अब पर्यटन के माध्यम से अच्छी आमदनी हो रही है। दांतु गांव में अब पर्यटकों के लिए साफ सुथरे कमरे, स्थानीय भोजन, गाइड सेवाएं और ट्रैकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां आने वाले पर्यटक न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाज और पारंपरिक जीवन शैली को भी करीब से देखते हैं। गांव की महिलाएं अब स्वरोजगार में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वे स्थानीय व्यंजन तैयार करती हैं, हस्तशिल्प उत्पाद बेचती हैं और पर्यटकों का स्वागत करती हैं। इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन योजनाओं ने पलायन को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। जो युवा पहले रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहे थे, वे अब अपने गांव में ही काम कर रहे हैं। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि परिवार और समाज के साथ उनका जुड़ाव भी बना हुआ है। होमस्टे मॉडल ने पर्यटन को भी नई दिशा दी है। अब पर्यटक होटल्स की बजाय होमस्टे में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहां उन्हें व्यक्तिगत अनुभव मिलता है। इससे उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में भी पर्यटन का विस्तार हुआ है। सरकार द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें होमस्टे संचालकों को आतिथ्य, स्वच्छता, ऑनलाइन बुकिंग और पर्यटन प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन होमस्टे को प्रमोट भी किया जाता है। उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई ये योजनाएं आज एक सफल मॉडल बन चुकी हैं। दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना और ट्रैकिंग अट्रैक्शन सेंटर योजना ने न केवल आर्थिक विकास को गति दी है, बल्कि सामाजिक बदलाव भी लाया है। दांतु गांव जैसे उदाहरण ये साबित करते हैं कि यदि सही दिशा और सहयोग मिले तो पहाड़ के लोग अपने संसाधनों के बल पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो श्रोताओं, यदि आप भी स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए भी एक अच्छा अवसर हो सकती है। इसी के साथ ही आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बज रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: कार्यक्रम आपका पत्र मिला। मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार और कल्पना जी आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार रमेश चंद्र जी, और कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे श्रोताओं के पत्र मिले हैं, और जल्दी से पढ़ना शुरू करें।
0: क्यों ना उन पत्रों को पढ़ने का सिलसिला शुरू करें आप, क्योंकि हमारे श्रोताओं को भी इंतजार रहता है हमारे पत्रों का।
1: जी, कार्यक्रम में पहला पत्र लिखते हैं रवि कुमार राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होना सच में गर्व और भावनाओं से भरा पल है। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं रेडियो से जुड़ा हूँ। 45 वर्ष होने को है रेडियो से जुड़े हुए। मेरे लिए आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो नहीं बल्कि यादों का खजाना रहा है। बचपन से लेकर आज तक इसके कार्यक्रमों ने मुझे ज्ञान दिया, मनोरंजन दिया और हर परिस्थिति में साथ निभाया। कभी मधुर गीतों ने दिल को सुकून दिया तो कभी जानकारी पूर्ण कार्यक्रमों ने सोच को नई दिशा दी है। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी ने देश की आवाज बनकर हर दिल तक जगह बनाई है। गांव हो या शहर, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देती है। ये केवल खबरें नहीं सुनाता बल्कि भावनाएं जोड़ता है, संस्कृतियों को संजोता है और लोगों को एक साथ लाता है। मेरे अनुभव हमेशा सकारात्मक और

0: प्रेरणादायक रहे हैं। आज भी जब आकाशवाणी सुनता हूँ तो एक अपनापन महसूस होता है। और लिखते हैं कि आकाशवाणी समय के साथ बदलती दुनिया, पर इसकी आवाज आज भी दिल से जुड़ी है। और आप चंद पंक्तियां लिखते हैं, रेडियो के साथ उठता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ। रेडियो के साथ उठता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ। जब सुनता हूँ नाम अपना तो बहुत खुश होता हूँ। कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में आपा खोता हूँ। मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो सुनता हूँ।
1: कल्पना जी, रवि कुमार राहुल जी, कस्बा बराड़, जिला अम्बाला, हरियाणा से, इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा हमें मैसेज लिखा है। और इन्होंने जो शेर हमें लिख भेजा है, रेडियो के साथ उठता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ, जब सुनता हूँ नाम अपना तो बहुत खुश होता हूँ। तो हम यही चाहेंगे रवि कुमार जी, आप रेडियो के साथ ऐसे ही उठते रहें, ऐसे ही रेडियो के साथ सोते रहें, और अपना नाम रेडियो पर फरमाइशी या अन्य कार्यक्रमों में इसी तरह सुनते रहें।
0: जी।
1: और आपने लिखा है, आपा खोता हूँ जब फरमाइश पूरी ना हो, तो आपा मत खोइएगा,
0: जी।
1: हमारे कार्यक्रमों का आनंद लीजिएगा। और कभी कभी अक्सर ऐसा हो सकता है कि हम आपकी फरमाइश पूरी ना कर पाएँ, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी श्रोता हमें अपने मैसेज या पत्र भेजते हैं, हम उनको अपने कार्यक्रमों में शामिल करें।
0: जी
1: और आपने हमारे कार्यक्रमों को लेकर बहुत सारी बातें लिखी हैं, समीक्षात्मक पत्र लिखा है आपने,
0: जी
1: और 90 वर्ष पूर्ण होने पर आपने लिखा है कि ये भावनाओं से भरा पल है। निश्चय ही हमारे लिए भी बहुत ही भावनाओं से भरा पल है। और हम 90 वर्ष पर हमारा जो आकाशवाणी केंद्र देहरादून है, ये भी कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जैसा कि कल हमने वाकेथ का आयोजन किया, इसके अलावा एक कंसर्ट भी आयोजित कर रहे हैं, और बीच बीच में बहुत सारे कार्यक्रमों का प्रसारण हम
0: जी
1: 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कर रहे हैं।
0: जी हमारा प्रोग्राम हो रहा है 90 वर्ष को लेके विचार आपके गीत हमारे, जिसमें एक थीम से संबंधित हमारे श्रोता उस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और अपने विचार हमें प्रेषित करते हैं। और साथ ही जो हमारे रेडियो की पहले प्रोग्रामर रहे हैं, अनुभव हम साझा करते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से। इस तरह से बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं जो रेडियो को लेकर प्रसारित किए जा रहे
1: जी,
0: हैं।
1: और इन्होंने कल्पना जी अपने अनुभव के बारे में भी लिखा है कि इनके अनुभव सकारात्मक और प्रेरणादायक रहे आकाशवाणी सुनने के कारण। तो हम यही चाहेंगे आपका आगे का भी हर अनुभव इसी तरह प्रेरणादायक और सकारात्मक रहे। और हम आपसे यही निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे रवि कुमार जी, कि आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें, उनका आनंद लेते रहें, और अगर कोई शिकायत या सुझाव है तो वो भी हमारे साथ निश्चय शामिल करें। पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं, आप है बलवंत सिंह चौहान, गांव फलसारी, मार्केट गजा, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड से। लिखते हैं कि आकाशवाणी देहरादून के सभी प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं और आपका पत्र मिला कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगता है। सभी कार्यक्रम हम रोज सुनते हैं और सभी अच्छे भी लगते हैं।
1: बलवंत सिंह चौहान जी, आपने गढ़वाल उत्तराखंड से एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमें लिखा कि आपको आकाशवाणी के जो कार्यक्रम हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपने ये भी लिखा है कि आप सभी कार्यक्रम हर रोज़ सुनते हैं, तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप हर कार्यक्रम को इसी तरह सुनते रहें। क्या अच्छा लगता है हमारे कार्यक्रमों में, ये भी आप लिखेंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। और हम यही चाहेंगे कि आगे जब आप हमें पत्र लिखें तो थोड़ा विस्तार से और समीक्षात्मक पत्र लिखें, और अच्छा लगेगा हमें।
0: जी
1: लेकिन भाई
0: बलवंत सिंह जी,
1: बलवंत सिंह जी, आपने ये प्यारा सा मैसेज हमें लिखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी बलवंत सिंह जी हमारे पुराने श्रोता हैं और नियमित श्रोता हैं। जब सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं बलवंत सिंह जी, तो प्लीज आप थोड़ा सा अगर विस्तार से लिखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलिए आपने ये प्रोग्राम सुना और इसमें हमारी प्रस्तुति, जो हमारे उद्घोषक या कंपेयर ने प्रस्तुति दी है, वो आपको अच्छी लगी। अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कमियां उजागर करेंगे, तभी तो हम आगे कुछ नया कर पाएंगे, क्यों
1: जी
0: रमेशचंद्र जी?
1: जी और कल्पना जी, हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में हम बहुत सारे कार्यक्रमों का प्रसारण भी कर रहे हैं,
0: जी
1: और ये कार्यक्रम निसंदेह हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आएंगे। इनके बारे में भी अगर हमें लिखेंगे वो, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और हम यही चाहेंगे कि हमारा प्रत्येक श्रोता जो हमारे कार्यक्रम सुनता है,
0: जी
1: जैसा उसको समझ आ रहा है वैसा हमें आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ लिख भेजें।
0: जी, और इस आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर में हमारे श्रोता भी तो हमारे साथ रहे हैं, तो वो भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में बता सकते हैं कि भाई आपको जो पिछले सालों का जो अनुभव है वो रेडियो का कैसा रहा और रेडियो में और क्या चाहते हैं, इस संबंध में भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आप हैं गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी। आप चंद पंक्तियां लिखते हैं, हर अंधेरे के पीछे उजाला निकला, हर अंधेरे के पीछे उजाला निकला, मेरा महबूब दुनिया से निराला निकला, मैंने चाहा था जिसको जान से ज्यादा, मैंने चाहा था जिसको जान से भी ज्यादा, वो किसी और को चाहने वाला निकला। रमेश चंद्र जी
1: क्या शेर लिखा है इन्होंने।
0: आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कि हमारी तरफ से आपको प्यार भरा आदाब और साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर पूरे स्टाफ को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लिखते हैं कि हमें देहरादून केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रमों को हम पसंद करते हैं। और लिखते हैं कि 4 मई को रात्रि 10 बजे हमने कवि गोष्ठी सुनी, बहुत अच्छी लगी, सभी कवियों की रचनाएं बहुत अच्छी थी। और 5 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम सुना, उसमें गुलशन कुमार के बारे में जानकारी दी गई, हमें बहुत पसंद आई। आपसे जानना चाहते हैं कि रात को जो व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आपने क्या बंद कर दिया है या फिर कम कर दिया है, इसके बारे में जानकारी दें तो मेहरबानी होगी। और गुजारिश है कि महिला जगत कार्यक्रम में आम का अचार बनाने की विधि बताएं तो बहुत मेहरबानी होगी।
1: लाल मोहम्मद अंसारी जी, लालू मिस्त्री अंसारी जी और आपके परिवारी जन हैं, इन्होंने एक प्यारा सा मैसेज हमें लिखा और एक शेर से शुरुआत की, हर अंधेरे के पीछे उजाला निकला। तो हम सबको पता है कि हर रात के बाद सुबह होती है, और आपने इसी शेर में आपने आगे लिखा है कि मैंने चाहा था जिसको जान से ज़्यादा, वो किसी और को चाहने वाला निकला। तो उदास मत होइए लाल मोहम्मद अंसारी जी, दुनिया में बहुत सारी काम ऐसे होते हैं जो हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं हो पाते, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप आकाशवाणी को चाहें और आकाशवाणी कभी बेवफा नहीं होगी
0: जी।
1: आपकी पसंद के अनुसार तमाम कार्यक्रम हैं जो हम प्रसारित करते हैं और आपका मनोरंजन भी करते हैं और आपके सुख के तो साथी हैं ही हम, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तब भी हम आपके साथी हैं। तो आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें। और आपने हमें लिखा है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी स्टाफ को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, तो हमारी ओर से भी आपको, आपके परिवारजनों को और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कार्यक्रमों को लेकर लिखा है कि आपको हमारे कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं, कवि गोष्ठी को लेकर लिखा, नमस्कार देहरादून को लेकर लिखा, आपको बहुत पसंद आई, और आपने महिला जगत कार्यक्रम में आम का अचार बनाने की विधि को लेकर लिखा है। तो निश्चय ही शीघ्र ही किसी कार्यक्रम में आपको आम का अचार बनाने की जो विधि है वो आपको
0: जी
1: बता दी जाएगी। आप उस विधि को सुने और किस तरह से आम का अचार बनाया जाता है उसके अनुसार आप अपने घर आम का अचार बनवाएं।
0: जी,
1: और घर का बनाया हुआ आम का अचार तो बहुत ही अच्छा लगता है, जब हमारी दादी और मम्मी बनाती हैं अचार तो क्या चटकारी ले लेके हम खाते हैं।
0: जी,
1: और आपने व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम को लेकर लिखा है, कल्पना जी आपकी क्या राय है इसको लेकर?
0: ये व्हाट्सएप फरमाइश जो रात्रि को प्रसारित होता है, आपकी फरमाइश उस कार्यक्रम के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम बदस्तूर जारी है और रात्रि 10 बजे से आप सुन पाते हैं, 11 बजे तक कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यानी कि आपकी फरमाइश। लेकिन मुझे लगता है हेलो फरमाइश शायद प्रोग्राम की बात कर रहे होंगी, क्योंकि पिछले दिनों हमारे यहाँ से फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण तो नहीं किया जा रहा है और न ही उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में जल्द ही हेलो फरमाइश कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जाएगा, तब आप उस प्रोग्राम से जुड़ पाएंगे और अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुन पाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप फरमाइश के माध्यम से अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपको फोन नंबर बता देते हैं, जिस नंबर पर आपको अपने मैसेज करने हैं व्हाट्सएप करके और अपनी फरमाइश क्या फिल्मी गीत सुन सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7008800731। इस नंबर पर आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं और अपनी पसंद की फिल्मी गीत सुन सकते हैं। और कार्यक्रम में अगला पत्र लें, कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनेद और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे जो आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर जो कार्यक्रम आता है विचार आपके गीत हमारे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हर दिन

0: नया टॉपिक होता है, और जब हर रविवार को ये कार्यक्रम प्रसारित होता है तो उस कार्यक्रम में हम अवश्य प्रतिभाग करते हैं और अपने विचार भी प्रेषित करते हैं।
1: वहीद रुमानी जी और आपके जो परिवारीजन हैं फोलोंग निजामाबाद तेलंगाना से, आपने एक मैसेज हमें लिखा और आपने लिखा विचार आपके गीत हमारे कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आपने लिखा इसमें हर दिन एक नया टॉपिक होता है, तो निश्चय ही इससे हमारे जो श्रोता हैं उनका ज्ञानवर्धन होगा, उनकी जानकारी में वृद्धि होगी।
0: जी
1: तो इस तरह के कार्यक्रम इसलिए हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। और आपने इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी लिखा है,
0: जी
1: आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हम यही चाहेंगे कि इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते रहें,
0: जी
1: और हमारे कार्यक्रमों में क्या अच्छा लगता है इसके बारे में इसी तरह से लिखते रहें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। भाई वहीद रुमानी जी, मोहम्मद जमीर जी और हसी जी और आपके जो परिवारीजन हैं उन्होंने एक प्यारा सा मैसेज हमें लिखा,
0: जी
1: इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और
0: जी
1: क्यों न कल्पना जी, कार्यक्रम के समापन में आप हमारे श्रोताओं को पत्र और मैसेज भेजने का पता बता
0: जी
1: दीजिए।
0: हमारे श्रोता पता नोट करें। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, और पिन है 2480001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर नोट करें 7088000731। जी एक बार पुनः आपको दोहरा दें, 7088000731। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने मैसेज भेजकर आप आपका पत्र मिला कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जो हमारे रेडियो से कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं उसके संबंध में अपने समीक्षात्मक विचार हमें प्रेषित कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज,
1: और रमेश चंद्रा को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला, प्रस्तुति रमेश चंद्रा और कल्पना पंकज की थी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:15 होने को है श्रोताओं, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसके अंतर्गत आज हम सुनेंगे विविध कलाकारों की आवाज़ में भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों की आवाज में भजन। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में। और ये पहला गीत पेश खिदमत है श्रेया घोषाल की आवाज़ में। फिल्म है सेना।

तो श्रोताओं, सुनेंगे फिल्म संगीत में अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म जुबैदा से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने और बोल है जावेद अख्तर के।

0: अब हमारे श्रोता जहाँ, हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाश।

आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर रात्रि के 8:42 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं FM संगीत। तो श्रोताओं, समय को देखते हुए पेश खिदमत है FM संगीत में ये अंतिम गीत। आर को प्रावो मुखर्जी की आवाज में फिल्म बरेली की बर्फी से इस गीत को संगीत और बोल भी आर को नहीं दिए हैं।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद

0: क्रांति शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोड़ासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही है। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सोमनाथ

0: महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धुंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव

0: अनुभव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे, मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात कर रही हूं, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही है आकाशवाणी की, वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार को सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उस फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात

0: करी। जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं? आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब

0: भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिसेज जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती है, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7-8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यार दोस्तों, मेरा नाम AK जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अलग अलग देशों के दोस्त थे, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और

0: पल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहां अलग अलग संस्कृतियां नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
0: और मैं प्रांजल।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी सौ सौ रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
3: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपस होना चाहिए, इतने इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।
4: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करती थे। तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9-10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे। तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
5: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।

0: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
1: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
0: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
1: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
0: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
2: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
1: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद,
0: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
1: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
0: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों

0: मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़े।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहां था, मैं यहां हूं और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
1: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया, और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
5: अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम वल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
6: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, we bring to you a santoor recital by Rajkumar Majumdar. Rajkumar Majumdar is one of the most versatile santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came

0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के